सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण चरोका के अंतर्गत। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 317। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं भाग 5। कलाकार हैं गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली की। सात बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 से हम है राही प्यार के। पर त्रिवेणी 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार महेश भट्ट पर, आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर। 10 बजे बॉम्बे टॉकीज में पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत सुनिएगा गायिका पूर्णिमा सुषमा श्रेष्ठ से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग, संपादन सहयोग अवंतिका सिंह का, प्रस्तुति है अनुश्री पाठक की। 11 बजे विविधा में प्रस्तुत होगा सत्येन कप्पू दुर्गा खोटे चित्र भारती पर केंद्रित होगा ये कार्यक्रम, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर। 2 बजे त्रिवेणी और 2:30 पर सदाबहार नाग में, 3 बजे मन चाहे गीत, प्रस्तुत करता है तेजस्वी कांबले।

दोपहर 3:30 पर नाट्य तरंग में सुनिए नाटक स्वप्न वासव दत्ता का दूसरा भाग। महाकवि भास के संस्कृत नाटक का रेडियो रूपांतरण। रूपांतरकार हैं कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। शाम 4 बजे पिटारा में उजाले उनकी यादों के। संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत सुनिएगा, इस बातचीत का पहला भाग आज। प्रस्तुति अनुश्री पाठक के। शाम 5 बजे छाया गीत।

शाम 5:30 पर तराने, नए पुराने 6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता। आपको फिर से याद दिला दें, श्रृंखला सुनेगा ख्याल और तरानों की विशेषताएं, भाग 5। कलाकार हैं गायक डॉक्टर पंडित गोकुल उत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली की। शाम 7:00 सैनिकों की शौर्य गाथा। महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल बी संतोष बाबू की शौर्य गाथा सुनेगा सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत। आलेख स्वर संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज। हवा महल में रात 8:00 सुनिए झलकी चिट्ठी, लेखक सुनील हेत्री अब्राहम, निर्देशक गुरमीत रामल मीत। पर चित्रलोक। 9:00 आपके लिए 9:30 पर आज के फनकार केंद्रित होगा फिल्मकार महेश भट्ट पर। 10:00 छाएगी 10:30 पर ढलती जाहिरात और 11:00 सुनेगा विविधा। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान, भाग 317।

लंका की सुरक्षा हेतु चार विशाल द्वार हैं। अतः सुग्रीव, जांबवान, विभीषण आदि से मंत्रणा करके वानर सेना के चार दल बनाए गए। सैन्य दल श्री राम के चरणों में सिर नवाकर पर्वत शिखरों जैसे भीमकाय अस्त्र शस्त्र लेकर चारों दिशाओं से लंका पर चढ़ दौड़ते हैं। लंका में कोहराम मच जाता है, किंतु मदांध रावण ये समाचार सुनकर हंसता है। इस आक्रमण को वानरों की ढिटाई बताकर राक्षसों को आदेश देता है कि विधाता ने घर बैठे वानरों के रूप में जो भोजन भेजा है वे उसका उपभोग करें। राक्षस सेना के योद्धा अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर वानर सेना पर टूट पड़ते हैं। परकोटे पर वे बादलों की तरह छा जाते हैं। वातावरण में नफीरी, भेरी और रणवाद्यों का निनाद गूंज उठता है।

0: सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान भाग 317, आज आपने सुना।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: ख्याल और तराने की विशेषताएं। आज संगीत सरिता में जाने माने गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा प्रस्तुत इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी सुनिए।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का बहुत बहुत प्यार। प्रत्येक राग को गाने के लिए उसका वादी संवादी न्यास और चलन पर ध्यान देना होता है। यदि राग की प्रकृति चपल है तो उसका विस्तार उसके अनुसार करना होगा। यदि राग गंभीर है तो उसका विस्तार जल्दबाजी से नहीं होना चाहिए, अपितु बहुत धैर्यपूर्वक उसकी बढ़त करनी चाहिए। अगर राग गंभीर होने के साथ करुण रस प्रधान है तो उसकी बढ़त का ढंग अलग होता है। इसमें मैं बड़े ख्याल की बंदिश प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कि झूमरा ताल में निबद्ध है।

अब मैं द्रुत ख्याल की बंदिश प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि तीन ताल में निबद्ध है। इसमें कूट तान, पेंच, बल, छूट, जरब और गमक तानों का प्रयोग है। यह क्लिष्ट जरूर है, किंतु श्रवण करने में बड़ा ही मधुर है। तो करुण रस प्रधान इस बंदिश को आप सुनिए।

0: এতক্ষণ রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে শুনছিলেন স্বপ্না ঘোষালের পরিবেশনায় রবীন্দ্রসঙ্গীত, আকাশবাণী কৈলাসহর। এখন দিল্লি কেন্দ্রের সমাচার প্রভাত এবং মর্নিং নিউজ, এরপরে শিলং কেন্দ্রের ইংরেজি সংবাদ রিলে করে শোনানো হচ্ছে।
1: আকাশবাণী সে সমাচার প্রভাত কে সাথ মে ফরহত নাজ। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देशभर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक आधार प्रमाण सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल है। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने इसकी शुरुआत 18 सितंबर को पठानकोट से की थी। ये अभियान 4 चरणों का है। एक रिपोर्ट।
3: यह 13 दिन की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पंजाब के सामने मौजूदा 3 बड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। ये चुनौतियां हैं नशों का बढ़ता खतरा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार। यह यात्रा राज्य में 4000 किलोमीटर का सफर तय करके सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को नशों के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट करेगी। तीसरी यात्रा आज केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फाजिल्का के सादिकी बॉर्डर से शुरू करेंगे।

0: और कल चौथे फेज को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बठिंडा के तलवंडी साबो से हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल में लाया गया।
2: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण बटे हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया, जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। GST दरों में हाल के सुधारों का उद्योग और आम लोगों दोनों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कलंत्री ने कहा,
3: जो हाल ही में GST का जो रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने, वो जो कमी की है उससे रेशनलाइज किया है टैक्स स्ट्रक्चर। कई चीजों पे बहुत ज्यादा था, कई चीजों पे पर नहीं था, तो रेशनलाइज करने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और ऐसे जहां जहां गवर्नमेंट को उचित है कि यहाँ ज्यादा है या जरूरी है कम करना, तो यहाँ उम्मीद है कि यहाँ बढ़ाए तो फर्क नहीं पड़ेगा जो लग्जरी और गुड्स में या लग्जरी आइटम्स में, तो वो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी कॉमन मैन के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए।
2: मुंबई की नेहा कुलकर्णी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर GST कम होने से उनके परिवार का मासिक खर्च घटा है और बचत भी काफी बढ़ी है।
4: हमारे घर का महीने का बजट जो है वो बनाते समय रोजमर्रा की चीजों पर काफी खर्च हो जाता था, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट और दूसरी हाउस होल्ड आइटम्स। इन चीजों पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध और कई डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी GST कम हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ी राहत मिल रही है।
2: पिछले 9 वर्षों में GST सुधारों के कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABBP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABBP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए ABBP की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
6: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को DOB में मिसमैच है तो उसके सामने भी ग्राम लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टैगर्ड मैनर में जाएगी क्योंकि वो हियरिंग होनी है, तो हियरिंग ERO के यहाँ पे होनी है, उसमें प्लेस लिखा होता है। एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से स्टैगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे, उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
1: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए

0: विशेष अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियम अनुसार कार्रवाई करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं।
1: We have to continuously be watchful of the
2: भारत चिप्स डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रतिभागी इसे एक चुनौती के तौर पर देखेंगे, हमें दूसरे प्रतिभागियों को लेकर भी सावधान रहना होगा। इसलिए मैंने उद्योग जगत से साफ साफ कहा है, साइबर हमलों और किसी भी तरह के व्यवधान के लिए तैयार रहें।
1: थ्रेट्स एनी अदर काइंड्स ऑफ डिसरप्शंस।
0: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं मछुआरों को कल तक अंडमान सागर तथा अगले दो दिन तक पूर्वी मध्य और उससे लगे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये नौवां विमान था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
3: चेस ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डी गोकेश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सिस शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं आर प्रणानंद का डेविड एंटोन गुइजारो के साथ और निहाल सरीन का जेमे सैंटोस लाटासा के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। महिला वर्ग में भारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का 5वां राउंड खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। 20वें एशियाई खेलों में आज भारत की टैकबॉल खिलाड़ी क्यूमसी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे पश्चिम एशिया की यात्रा बहुत सोच समझ कर ही करें। अमेरिकी प्रशासन ने यह चेतावनी क्षेत्र में बढ़ते तनाव, तेजी से स्थिति बिगड़ने की संभावना, उड़ानों में रुकावट और अमेरिकी ठिकानों पर हमले की आशंका को देखते हुए जारी किया है। यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब की तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की चेतावनी में पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई मार्ग बंद हो सकते हैं और यात्रा संबंधी अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
5: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने दिया है। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं। विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन भारत से 6 गुना अधिक। राष्ट्र ने COP21 के सभी जलवायु लक्ष्य समय से पहले पूरे किए। हिन्दुस्तान लिखता है, दुनिया को जलवायु चुनौतियों का समाधान दे रहा भारत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 17 साल बाद किसी निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने का समाचार सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। जनसत्ता लिखता है, करीब 1.5 दशक से डूसू के चारों पदों पर एबीवीपी और एनएसयूआई का रहा है कब्जा। अमर उजाला की सुर्खी है, डूसू में फिर भगवा, एबीवीपी ने 3 सीटें जीती। जापान के नागोया शहर में 20वें एशियन गेम्स के भव्य उद्घाटन समारोह की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है।

0: पंजाब केसरी लिखता है, नागोया में एशियाड का आगाज, मनुभाकर और पवन सहरावत ने फहराया तिरंगा। मयूर विहार से सराय का लिखा, 5 मिनट में 3.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार, 29 सितंबर को होगा शुरू। दैनिक भास्कर की खबर है, राजस्थान पत्रिका ने ईरान में हिजाब कानून को लेकर सख्ती के बीच राजधानी तेहरान में महिलाओं के रनिंग इवेंट के ध्यान खींचने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, बिना हिजाब के तेहरान की सड़कों पर 10 किलोमीटर दौड़ी सैकड़ों महिलाएं। ग्रीनलैंड पर कब्जे के बजाय अमेरिका करेगा इसकी चौकीदारी, ग्रीनलैंड और अमेरिका में हुआ करार, आर्कटिक में थमा तनाव, दैनिक जागरण की सुर्खी है। पत्र लिखता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हस्ताक्षर की संभावना।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। गवर्नमेंट मेक्स आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी फॉर सब्सिडाइज्ड रिफिल्स ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स फ्रॉम 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ। Rashtriya Sankalp Samaroh being organized at 1,067 locations across the country today as part of 100 weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan. Election Commission to hold special camps in all polling stations in Delhi today to assist citizens regarding inclusion and deletion of names in electoral rolls. IMD forecasts heavy rainfall in coastal Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Keralam, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands today. And Indian men score resounding 3-1 victory over Spain at Chess Olympiad in Samarkand. Women's team beat Mongolia 3-1. And now the news in detail. Government has said that biometric Aadhaar authentication is mandatory for subsidized domestic LPG refills from 1st October this year. Domestic LPG consumers will need to have completed biometric Aadhaar authentication to book refills at the regulated retail selling price with applicable subsidy. More from our correspondent.
3: Biometric Aadhaar authentication ensures that subsidized LPG reaches only genuine and deserving households. Linking each connection to the Aadhaar authenticated consumer will help prevent diversion of subsidized domestic cylinders for commercial and industrial use. It will remove duplicate and ineligible connections and make subsidy delivery transparent and targeted. The Petroleum and Natural Gas Ministry said that the process is not meant to deny LPG to any genuine household, and every eligible consumer has several easy ways to complete it. It said 27.43 crore consumers have already completed authentication and do not need to do anything further. Authentication can be completed at the time of delivery, at the distributor's showroom, or an oil marketing company mobile app. The Petroleum and Natural Gas Ministry has urged consumers who have not yet completed biometric Aadhaar authentication to do that before 1st October 2026. With Suparna Saikia, Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
2: The Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat 100 Weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan will witness a major nationwide youth mobilization today. The Ministry of Youth Affairs and Sports said that Rashtriya Sankalp Samaroh is being organized across 1,067 locations in the country. It added that this program will be organized across 471 district My Bharat offices along with 596 locations of partner organizations. The Samaroh will bring the campaign's message directly to young people through Nasha Mukt Pledge, signature campaign, thematic street plays, slogan writing, and youth-led discussions.

0: আকাশবাণী কৈলাসহর। এখন দিল্লি কেন্দ্রের হিন্দি এবং ইংরেজি সংবাদ এবং এর পরে মুম্বাই কেন্দ্রের বিবিধ ভারতীয় অনুষ্ঠান রিলে করে শোনানো হচ্ছে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মাই বৈষ্ণবী। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के माध्यम से अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल है। ये आयोजन स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे, किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABVP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के प्रति ABVP की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। चेस ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डी गोकेश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं महिला वर्ग में भारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया।

0: to thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Madhya Maharashtra, Odisha, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. In chess Olympiad, Indian men's team defeated Spain 3-1 with world champion D. Gukesh leading the way with a clean victory over former world championship challenger Alexei Shvedov in Samarkand yesterday. In the women's section, India recorded a 3-1 victory over Mongolia. B. Savita Shree continued her impressive run with a fourth consecutive win, defeating seasoned player Mungunthul Buthuyag. In Asian Games 2026, Indian tech ball player Quimsy D'Souza missed out on a women's single bronze medal, suffering a 2-0 defeat to home favorite Yukina Sakamoto in a closely contested match. And that is the end of this.
1: विश्वविद्यालय में खेलों का महत्व सिर्फ प्रतियोगिताओं और पदक प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। खेल के माध्यम से विद्यार्थियों को टीम भावना, आत्मविश्वास, समय प्रबंधन और जिम्मेदारी का प्रशिक्षण देते हैं। विद्यार्थी प्रतियोगिताओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री को भी बढ़ावा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का संदेश स्पष्ट है कि शिक्षा और खेल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए विश्वविद्यालयों को खेल के मैदान, प्रशिक्षित प्रशिक्षक और विद्यार्थियों की नियमित भागीदारी के लिए आवश्यक अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। इस दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालयों में खेल प्रतियोगिताओं, फिटनेस गतिविधियों और विभिन्न प्रकार के शारीरिक गतिविधियों का आयोजन किया जा सकता है। इससे विद्यार्थियों में खेलों के प्रति उत्साह और रुचि पैदा होने के साथ साथ संतुलित और अनुशासित जीवन शैली अपनाने की भी प्रेरणा मिलती है। चक दे इंडिया फिल्म का ये गीत आपको

चकते इंडिया फिल्म का गीत हेमा सरदेसाई की आवाज में आप सुन रहे थे। जयदीप साहनी के बोल थे, सलीम सुलेमान की तर्ज थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पर सुन रहे हैं। चित्रलोक कार्यक्रम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।

आर राजकुमार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। नक्श अजीज अंतरा मित्रा की आवाजें थी, मयूरपुरी के बोल थे, प्रीतम का संगीत था। आई हेट लव स्टोरीज फिल्म का यह गीत श्रेया घोषाल, सोना

श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा की आवाजों में आई हेट लव स्टोरीज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। कुमार के बोल थे और विशाल शेखर का संगीत था। आज फिल्मकार महेश भट्ट का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। आपको बता दें कि आज के फनकार कार्यक्रम सुबह 9:30 और रात 9:30 पर केंद्रित होगा। फिल्मकार महेश भट्ट पर आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुत करता है विजय दीपक छिब्बर। सुनना ना भूलिएगा।

लक्ष्मी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें थी शशि डीजे खुशी की, गीतकार थे गगन आहूजा और संगीतकार शशि डीजे खुशी। इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार

राजेश भट्ट। फिल्म जगत की एक ऐसी शख्सियत जिनकी प्रतिभा के कई आयाम हैं। महेश भट्ट एक नामचीन निर्माता निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन फिल्म क्राफ्ट के दूसरे पहलुओं पर भी उनकी मजबूत पकड़ है। महेश भट्ट ने कथा, पटकथा लिखी, संवाद लिखे और कार्यकारी निर्माता की भूमिका भी निभाई।

0: भट्ट 1949 में मुंबई में जन्मे और मुंबई में ही पले बढ़े। यहीं उन्होंने पढ़ाई की। महेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट का शुमार फिल्म जगत के नामचीन फिल्मकारों में होता है।
1: इस बात का एहसास हो गया था कि पिताजी का वक्त जो है ठीक नहीं चल रहा है, हालात ठीक नहीं है, तो एक जिम्मेदार बेटे होने के नाते मैंने काम काज करने की कोशिश की। कहीं पर एक जिद थी अपनी एक पहचान क्रिएट करने की, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी मेरे लिए वो था कि पैसा कमाऊं किसी तरह। मैं पढ़ाई लिखाई में इतना ब्राइट था नहीं, तो काम वहां मिला नहीं ज्यादा, तो क्योंकि फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ था तो फिल्म लाइन में नौकरी मिल गई, और वहां पर बड़ी मेहनत से काम की किया, शिद्दत से बहुत अपने आप को पेश किया हर डिपार्टमेंट में। वहां पर मेरे भाग्य ठीक थे। जॉनी बख्शी साहब ने मुझे एक दिन आके कहा, मैं दो चोर एक फिल्म थी उसके सेट पर क्लैप दे रहा था, तो उसने कहा कि ये सीन खत्म हो जाए तो बाहर आके जरा मिलने मुझसे। तो मैं बाहर गया तो वहां एक व्यक्ति थे, श्री कुलदीप तलवार साहब उनका नाम था। उन्हें कहा ये फिल्म प्रोड्यूसर हैं, ये फिल्म बनाना चाहते हैं, तो मुझे समझ नहीं आई मेरा इससे क्या लेना देना। तो जॉनी साहब ने कहा कि भाई मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, क्या तुम फिल्म डायरेक्ट कर लोगे? तो मैंने बिल्कुल पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो कोई नहीं कर सकता दुनिया में फिल्म डायरेक्ट। और मुझे लकीली ब्रेक मिल गया। फिल्म नहीं बनी, उसका नाम था मुक्ति, उसके दो दिन की शूटिंग हुई थी। विनोद खन्ना साहब थे उसमें और श्री शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे, मगर फिल्म दो दिन की शूटिंग के बाद बंद हो गई। धक्के खाए यहाँ वहाँ, और लकीली एक हमको एक बिल्डर मिल गए, मिस्टर आर एच जैन उनका नाम था, और उन्होंने जॉनी साहब को कुछ पैसे वैसे दिए फिल्म बनाने के लिए। मंजिलें और भी शुरू हुई, फ्लॉप हो गई, विश्वासघात बनाई, फ्लॉप हो गई। नया दौर एक फिल्म थी जिसमें ऋषि कपूर थे, वो भी फ्लॉप हो गई। लहू के दौरान मैं बहुत काम किया, वो फिल्म के गाने वाले अच्छे थे, बहुत बड़ी मेकिंग थी उसकी। विनोद खन्ना साहब की एक स्टारडम में एक डे बाय डे एक राइज आ रहा था, मगर वो फिल्म भी नहीं चली, और लगा कि भैया कि अब हमारा जो है रिटर्न बैक टू पवेलियन है, पैकअप है। उम्र थी मेरी 28-29-30 साल के आसपास ही, 8 years वेस्टेड। उस वक्त एक इंटरेस्टिंग दौर से गुजरा था, रजनीश एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक फिल्म एक्ट्रेस के साथ में, वो सारे अनुभव कहीं पर मैंने उसको निचोड़ कर एक फिल्म बनाई अर्थ।

एक नई शुरुआत हुई अर्थ से। अर्थ जब कामयाब हुई तो यह आदमी जिसकी ऑब्चुरी लिख दी गई थी उसका एक पूर्ण जन्म हुआ। रेस्ट इज हिस्ट्री।

अर्थ जैसी गंभीर फिल्म से बतौर फिल्मकार महेश भट्ट ने फिल्म समीक्षकों और दर्शकों के एक खास वर्ग से शाबाशी पाई और ये साबित किया कि महेश भट्ट कलात्मक सिनेमा की भी गहरी समझ रखते हैं। ये विश्वास और पुख्ता हुआ उनकी एक और मर्मस्पर्शी फिल्म से। ये थी सारांश।

एक शेर है कि फैज साहब का मेरे ख्याल में है कि एक कड़ा दर्द जो गीत में ढलता ही नहीं, दिल की तारीकियों से उतरता ही नहीं, वो लगता है कि एक सैमुअल बेकेट साहब थे, वो कहते थे कि इवन बिफोर द इंक हैज ड्राइड ऑन द पेपर आई एम फिल्ड विद दिस फीलिंग ऑफ रिवल्शन, कि स्याही के सूखने से पहले एक फीलिंग आती है लेखक में कि जो मैं कहने निकला था कहीं मैं वो कह नहीं पाया हूं, तो वो तकलीफ, वो सारी जो एक जो एक इम्पल्स जो आपको मजबूर करता है एक लेख लिखने के लिए या कविता लिखने के लिए या फिल्म बनाने के लिए, वो आपसे वो काम तो करवा लेता है मगर वो जो सेंसेशन, वो इम्पल्स जो है जिसको लोगों ने अक्सर कहा कि एक कैथारसिस होती है, वो पूरी तरह कहीं पर फिल्म मेकर या राइटर शायद महसूस कर ही नहीं पाता। हाँ, ये लगता है कि कहीं पर आप अपनी केओस को, आप सारे कंफ्यूजन को एक स्टोरी के फॉर्म में डाल लें तो लगता है कहीं पर जिंदगी पर एक कंट्रोल सा आपको आ गया, वो एक इल्यूजन होता है। और एक तरकीब है जो मैंने 25 साल में बड़े मुश्किल से हासिल की है कि आप किसी भी तकलीफ वाले दौर से गुजरिए उसको आप अगर किससे कहानी में बांध लें तो कहीं पर वो उसको आप झेल सकते हैं आसानी से। स्टोरी टेलिंग प्रोवाइड्स यू विद सोलेस। शायद किस्से और कहानी कहने की ये परंपरा इसलिए चलती रहेगी और क्योंकि आदमी पीड़ा से बचने के लिए अपनी तकलीफों को एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में रिड्यूस करता है।

0: संवेदना को गहरे तक छूने वाली अर्थ सारांश और कास्ट जैसी फिल्में देने वाले महेश भट्ट ने व्यावसायिक समझौतों के तहत वो फिल्में भी बनाई जो लोकप्रिय सिनेमा के लटके झटकों से भरी होती हैं।
1: देखिए, जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह एक फिल्म मेकर या एक लेखक या एक आर्टिस्ट उन सारे सीजन से गुजरता है। कभी भी लगता है कि जैसे एक रेगिस्तान से अंदर है जिसमें से कुछ निकलता ही नहीं, और इस रेगिस्तान से गुजरते वक्त फिल्म मेकर को बड़ी तकलीफ होती है, राइटर को बड़ी तकलीफ होती है, और फिर अचानक वो फेस खत्म होता है और लगता है कि जैसे हरियाली फिर से वापस आ रही है। तो ये हालांकि ये फेज मेरी जिंदगी में ज्यादा लंबा नहीं था। 94 में मैंने लास्ट फिल्म बनाई थी सर और हमें राही प्यार के, जो कामयाब फिल्में थी, मगर ये जब पीछे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हूँ, किसी फिल्म ने अपार्ट फ्रॉम तमन्ना जिसने एक नेशनल अवार्ड जीता था कुछ अपना असर छोड़ा नहीं, और इसलिए जब जख्म कहीं पर वापस उसने मेरे अंदर कहीं पर दबे कदमों आना शुरू किया जख्म की कहानी ने और मैंने उसको फिल्माया, तो कहीं लगा कि हाँ अपना कंट्रोल अब तक कायम है, कहीं पर वो फीलिंग्स वो इमोशंस जिसके लिए मैं मेरी एक इसके कारण मेरी एक पहचान बनी थी वो अब भी मेरे अंदर जिंदा है, और कहीं पर लोगों ने दोबारा दाद दी। मगर ये कहना कि ऐसा क्यों हुआ, ये एक्सेसिव वर्क के साथ हुआ या एक इनडिफरेंट फेस था, एक इरेस्पॉन्सिबल फेस था, उसको सिंप्लीफाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं उस कंफ्यूजन का एक हिस्सा रहा हूं। तो ये तो कोई बाहर वाला ही देख के बता सकता है कि एक्चुअली क्या हुआ मेरे साथ।

0: पूर्ण जख्म महेश भट्ट की प्रिय फिल्मों में से है। अपनी इसी फिल्म के बारे में बोलते हुए महेश भट्ट,
1: इसमें मेरी जिंदगी की गूंज है, जो झेला है, जो जिया है, कुछ जग बीती, कुछ आप बीती का एक मिश्रण है। ऑफ कोर्स ड्रामेटाइज्ड फॉर्मेट में, हिंदी सिनेमा के ईडियम में ये अनुभव मैंने पेश किए हैं, क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा इस मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा का ही एक हिस्सा समझता रहा हूं, मानता रहा हूं, और ये मेरी जबान है, मैंने अपनी बात अपनी जबान में कही है। और ये फिल्म बनाते वक्त मुझे बड़ा सुकून मिला, कहीं लगा कि एक तार जो छूट गया था हाथ से, जैसे वो हाथ में आ गया। और इसको जब हमारे स्क्रीन के अवार्ड फंक्शन पे 5 अवार्ड मिले, तो लगा कि कहीं पर इस फिल्म का मेरी फिल्म इंडस्ट्री के भाई लोगों ने भी सम्मान किया है, इसको इज्जत दी है। एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा है मेकिंग ऑफ।

0: यार का।
1: महेश भट्ट ने कई फिल्मों की कथा लिखी तो कई फिल्मों की पटकथा। इनके नाम हैं सारांश, जन्म, काश, हक, तमन्ना, जख्म, संघर्ष, कसूर, ये जिंदगी का सफर, राज, गुनाह, जिस्म, फुटपाथ, इंतहा, पाप, रोग, कलयुग, हॉलिडे और गैंगस्टर।

दत्त द्वारा निर्देशित एक यादगार फिल्म है सर। फिल्म सर अपनी कथावस्तु और कलाकारों के अभिनय और निर्देशन के लिए हमेशा याद की जाएगी। महेश भट्ट अपनी फिल्मों के लिए तो जाने जाते ही हैं, अपनी जीवन शैली, अपने दार्शनिक अंदाज और अपनी टिप्पणियों के लिए भी। विवादों से उनका पुराना रिश्ता है, लेकिन अपनी बातें बिना लाग लपेट के पूरी ईमानदारी से कह देना उनकी आदत है। बदलते सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पर, हालात पर भी उनकी नजर रहती है। वक्त पड़ने पर वो खरा खरा कहने से पीछे नहीं हटते। महेश भट्ट प्रगतिशील सोच के फिल्मकार हैं, हालांकि ओशो और यूजी कृष्णमूर्ति के विचारों से बहुत प्रभावित रहे हैं। महेश भट्ट ने टेलीविजन के लिए एंकरिंग भी की और इस माध्यम के लिए फिल्में भी बनाई। टीवी के लिए बनाई गई उनकी ऐसी दो फिल्में हैं डैडी और फिर तेरी कहानी याद आई।

2012 में महेश भट्ट की फिल्म आई रास 3। लेखन, निर्माण और निर्देशन का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने फिल्मकार महेश भट्ट पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने। विविध भारती की ओर से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया विजय दीपक छब्बर ने।

0: संगीतकार उत्तम सिंह,
1: मुझको हुई ना खबर,
0: एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गड्डिले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: बॉम्बे टॉकीज
1: सर्वेंट्स लाइट साउंड कैमरा एक्शन।
2: दोस्तों नमस्कार। एक गायिका जिनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ, उन्होंने बाद में अपना नाम बदल लिया और रखा पूर्णिमा। पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
3: आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसी कलाकार को आमंत्रित किया है जिन्हें आप उनके बचपन से सुनते आए हैं और आज भी जब आप उनके गाए गीत सुनते हैं तो आपके और हमारे पैर थिरकने लग जाते हैं। जी हाँ, आज बॉम्बे टॉकीज में हमारी मेहमान है मधुर और दमदार आवाज की धनी गायिका पूर्णिमा। जी हाँ, वही पूर्णिमा जिन्हें बचपन में हम सुषमा श्रेष्ठ के नाम से जानते हैं। तो विविध भारती के स्टूडियो में पूर्णिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: नमस्कार आप सबको और मेरे सुनने वाले श्रोताओं को भी।
3: जी, हर आकाशवाणी से पूर्णिमा के गाए गीत न जाने कितने बजते रहे और आज आपको सामने पाकर मुझे लगता है हम धन्य हो गए हैं।
4: धन्य तो मैं हो गई, आप लोगों ने जिस तरह से मेरा इस्तकबाल किया
3: जी,
4: जो प्यार जो मान मुझे आप लोगों ने दिया
3: जी,
4: बहुत कम मिलता है आजकल, तो मिलता ही नहीं
3: जी।
4: पर मैंने मतलब सोचा नहीं था कि इस तरह से आप मुझे वेलकम करेंगे
3: जी,
4: तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं धन्य हो गई आज।
3: ये आपका बड़प्पन है,
4: मतलब अगर मैं नहीं आती ना तो मुझे दुख होता। मतलब मुझे शायद इस बात का एहसास भी नहीं होता
3: जी
4: कि मेरे ना आने से मैं क्या क्या खो रही हूँ
3: जी। जी,
4: तो मैं आई इसके लिए मैं खुद की बहुत शुक्रगुजार हूँ।
3: तो पूर्णिमा जी, आज का जो ये सफर है जो आपके साथ हम तय करने वाले हैं, ये सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने का सफर है
4: जी। जी,
3: वहाँ तक हम बातचीत करने वाले हैं कि किस तरह से एक प्यारी सी नन्ही सी गायिका किस तरह से एक बड़ी गायिका में तब्दील हो गई, और वहाँ पर भी वो हमेशा टॉप में रही और अपने गानों से हम लोगों को हमेशा बांधे रखा। तो पूर्णिमा जी, आप नेपाली हैं और आपके पिता भोलेनाथ श्रेष्ठ एक बहुत जाने माने संगीतकार रहे हैं, तो मुंबई आना कैसे हुआ? क्योंकि आपके पिता मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों के संगीत निर्देशकों के साथ काम करते थे।
4: जी जी, एक्चुअली हुआ यूं कि डैडी का जो परिवार था नेपाल से, वो लोग कोलकाता चले गए।
3: अच्छा।
4: और कोलकाता में जाकर बस गए। तो डैडी का जन्म जो है वो कोलकाता में हुआ।
3: अच्छा।
4: और पढ़ाई लिखाई संगीत की तालीम सब कुछ डैडी ने वहीं से हासिल की, कोलकाता से
3: जी।
4: फिर मुझे लगता है अगर मुझे ठीक से याद है तो लेट 40s में डैडी मुंबई आ गए। आए किसके साथ? मन्ना दा के साथ, मन्ना दा जी के साथ।
3: अच्छा।
4: आए मन्ना डे जी के साथ
3: जी।
4: और उनके चाचा हुआ करते थे केसी डे जी। उन दोनों के साथ डैडी मुंबई आए। फिर मुंबई में स्ट्रगल शुरू हुआ, तो डैडी ने पहले तो एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे बुलो सिरानी जी
3: जी,
4: उनको असिस्ट किया।
3: उनके गाने हम यहाँ के भूले बिस्तरे गीत कार्यक्रम में
4: है
3: जाते हैं।
4: हाँ। तो उसके बाद उनको असिस्ट करते करते फिर डैडी ने रंजीत स्टूडियो ज्वाइन किया, तो वहां पे डैडी फिर खेमचंद प्रकाश जी को असिस्ट करने लगे।
3: अरे क्या बात।
4: मैं गलत नहीं हूं अगर मैं कहूं कि फिल्म महल के गाने जब बन रहे थे तो खेमचंद जी तब तक काफी बीमार हो चुके थे, काफी बीमार रहते थे। तो वो गाना खास तौर पर आएगा आने वाला, उसको कंपोज करने में डैडी का

0: बहुत सहयोग रहा है।
1: अच्छा,
0: बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन डैडी की रही है।
1: जी जी,
0: बस फिर डैडी ने बहुत अपने खुद से भी कोशिश की, कुछ इंडिविजुअल फिल्म्स में भी उन्होंने ये बस्ती ये लोग वगैरह। लेकिन यहाँ क्या होता है ना मंदाकिनी जी की, सिर्फ आज मुझे इस बात का यकीन होते जा रहा है कि सिर्फ टैलेंट से नहीं चलता।
1: जी जी,
0: किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है और सही वक्त, और सही वक्त पे सही लोग मिलना। वक्त तो बादशाह है, पर उस सही वक्त के साथ सही लोगों का मिलना बहुत जरूरी होता है। तो हो सकता है डैडी कहीं वहां पीछे रह गए। बस यही कहानी मेरे डैडी भोलानाथ श्रेष्ठ की है।
1: जी जी जी,
0: तो असफल रहे, बदकिस्मत रहे, सही वक्त पे नहीं आए, जो भी आप कहें, लेकिन प्रतिभाशाली बहुत थे।
1: जी,
0: बहुत ज्यादा टैलेंटेड, इसके बारे में कोई शक नहीं। वो सिर्फ एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर नहीं, तो बहुत ही बेहतरीन तबला वादक भी थे।
1: अच्छा,
0: बहुत बेहतरीन। फिर उन्होंने कुछ साल किशोर कुमार जी के साथ भी काम किया। उनके फिल्मों में भी उन्होंने उनको असिस्ट किया। बल्कि आज अगर मुझे, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, माफ करें अगर मैं कहूं कि किशोर अंकल के फिल्मों के गानों को कंपोज करने में काफी कुछ सहयोग, नहीं बोलूंगी मैं, कंट्रीब्यूशन डैडी का रहा।
1: जी जी
0: जी,
1: आप ही ने उनके बारे में बताया ना कि उन्होंने कितना काम किया है।
0: जी,
1: और जो संगीत प्रेमी हैं, जो संगीत के रसिक हैं, वो जानते हैं आपके पिता भोलेनाथ श्रेष्ठ एक कितने महान संगीतकार रहे होंगे।
0: बिल्कुल, मुझे आज भी मंदाकिनी जी कितने लोग डैडी के गाने भेजते हैं, मुझे तो मालूम भी नहीं था। कल ही मैं किसी से मिली और उन्होंने कहा कि एक शख्स है यहाँ मुंबई में, मरीन ड्राइव में रहते हैं, बहुत संगीत प्रेमी है, लेकिन उनके पास मेरे पिताजी के बहुत सारे गानों के, बहुत नहीं, सारे गानों के कलेक्शन है।
1: अच्छा,
0: तो उन्होंने मुझे बुलाया भी है मिलने के लिए, जाऊंगी मैं। तो इससे मालूम होता है कि बदकिस्मत ही सही, नहीं वो मतलब नाकामयाब ही सही, असफल ही सही, पर कहीं एक मुख्तसर सा सेक्शन है
1: जी,
0: जो आज भी उनको और उनके गीतों को जानता है और पसंद करता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि आज भी उन्हें लोग याद करते हैं किसी न किसी।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल, बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

0: आपका जो गायन का सफर है वो कैसे शुरू हुआ? आप हिंदी फिल्मों की पहली सफल बाल गायिका रही हैं। महज 9 साल की उम्र में आपने अपनी गायकी शुरू कर दी थी
1: जी।
0: ये सफर कैसे शुरू हुआ?
1: असल में मैंने शुरुआत तो की बहुत बचपन में।
0: अच्छा, क्योंकि पहले
1: जी क्योंकि देखिए संगीत में एक मुझे वातावरण घर में मिला
0: जी,
1: विरासत में ही संगीत मिल गया तो। और मेरे मायके की तरफ की मतलब मेरी माँ, मेरी मौसियाँ बहुत सुंदर गाती हैं। माँ तो खैर अभी जिंदा नहीं है
0: जी,
1: आई कहती थी मैं माँ को
0: जी,
1: आई जिंदा नहीं, मेरी एक दो मौसियों की भी का भी इंतकाल हो गया, लेकिन जब वो थी और जो भी अभी मौसी जिंदा है, बहुत सुंदर गला। तो हो सकता है आवाज मुझे शायद विरासत में उस तरफ से मिली हो। और क्या मैं थोड़ा सा अगर अपना बैकग्राउंड बताऊं?
0: जी बिल्कुल।
1: तो उस वक्त क्या, क्योंकि डैडी असिस्ट करते थे खेमचंद प्रकाश जी को, बुलो सिरानी जी को, तो घर में काफी प्रख्यात लोगों का आना जाना, एक जैसे ना रोजाना ही वो चलता रहता,
0: बड़े बड़े संगीतकार
1: है ना,
0: संगीतकारों का
1: और सिंगर्स भी, गायक गायिकाएं, उनमें से बहुत करीब जो थी डैडी के और आई के वो थी आशा जी।
0: अच्छा।
1: मैं आज भी उन्हें आशा काकी ही कहती हूँ, है ना। तो आशा काकी का आना जाना, तो आई मेरी जो थी वो आशा काकी की जबरदस्त फैन मतलब कहते हैं ना एक दीवानों सा एक प्यार उनकी गायकी से, उनसे एक पर्सनालिटी जो उनकी थी
0: जी,
1: उस पर्सनालिटी से आई इतना प्यार करती थी कि मैं जब आई मुझे लेकर जब गर्भवती हुई तो आई हमेशा ये कहती थी, ये प्रार्थना करती थी
0: जी
1: कि मुझे बेटी हो, और वो आशा
0: जैसी हो। अरे क्या बात है,
1: ये बिल्कुल फैक्ट है। और हो सकता है शायद इसीलिए मेरे गानों में उनकी छवि आपको थोड़ी बहुत,
0: बिल्कुल
1: थोड़ी बहुत
0: और
1: नजर,
0: आप उनसे प्रभावित भी रही हैं।
1: बिल्कुल एक बाल बराबर उनकी छवि शायद नजर आती होगी।
0: नहीं, होता है कलाकार के साथ, जब हम अपना किसी को आइडल मानते हैं तो कहीं ना कहीं वो छवि हमारे अंदर होती है।
1: और आइडल तो आई मानती थी, उसके बाद

0: जब मैं 6-7 महीने की थी, आई ने बताया सब कुछ। एक गाना बहुत चला था सुमन कल्याणपुर जी का, वो छोड़ो छोड़ो मोरी बैया, सावरे छोड़ो छोड़ो मोरी बैया, ठीक से याद नहीं मुझे।
1: बहुत सुंदर।
0: तो आई, मैं बैठने लगी थी और ये आशा काकी जब घर में आती थी तो ये गाना वो गुनगुनाती थी कि वो सिर्फ मुझे ठुमके लगाते हुए देखना चाहती थी।
1: अच्छा।
0: तो मैं बैठे बैठे ठुमके लगाती,

0: और इतना हंसती थी, वो इतना एंजॉय करती थी। उन्होंने वो हमेशा कहती थी, भैया इसे ना आप डांस सिखाइए, ये बहुत अच्छी डांसर बनेगी। और मंदाकिनी जी, मैं बचपन में डांस बहुत अच्छा करती थी
1: जी,
0: ये अलग बात है कि आज मैं लोगों को नचाती हूँ लेकिन तब मैं नाचती बहुत अच्छा थी
1: जी।
0: तो मतलब ऐसा था कि अब थोड़ा और, मैं जब बड़ी हो गई तो जो गाने आते थे, अब घर में जब कोई फंक्शन है, कुछ भी, दशहरा दिवाली सब मिलते थे, क्योंकि आई सबसे बड़ी थी, डैडी सबसे बड़े थे, तो हमारे घर में ही वो हुजूम लगता था। तो बस, तो एंटरटेनर एक ही थी, मुझे घर में सब गुड्डी कहते हैं, तो एक ही थी एंटरटेनर
1: जी,
0: गुड्डी
1: जी।
0: तो पहले तो ये कि डांस तो डांस भी ऐसे नहीं, मैं बाकायदा एंट्री लेती थी।
1: अच्छा।
0: हाँ, दूसरे कमरे से वो दो कमरों के बीच का जो पर्दा है वो बंद करके,
1: हाँ,
0: फिर वो पर्दा हटा के, मतलब मैं क्या 5-6 साल की थी
1: जी,
0: और सारा म्यूजिक अपने में जुबानी मुझे याद रहता था, तो वो

0: पहले तो ये कि डांस डांस तो डांस भी ऐसे नहीं, मैं बाकायदा एंट्री लेती थी।
1: अच्छा।
0: हाँ, दूसरे कमरे से वो दो कमरों के बीच का जो पर्दा है वो बंद करके,
1: हाँ,
0: फिर वो पर्दा हटा के, मतलब मैं क्या 5-6 साल की थी
1: जी,
0: और सारा म्यूजिक अपने में जुबानी मुझे याद रहता था। तो वो जो गाना चला था ना, उड़ के पवन के संग चलूंगी, तो उसका बिगनिंग म्यूजिक वो सब मुंह से बजा के फिर मैं एंट्री लेती थी।
1: अच्छा।
0: तो बहुत मजे लेते थे सब लोग और यही लगा था सबको कि ये डांसर बनेगी। लेकिन अभी हुआ यूं कि करते करते जब 7 साल की हो गई, गाती भी थी, तो एक मेरे मामा जी कृष्ण कुमार राणा जी उनका नाम था, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे
1: जी,
0: तो वो और मेरी सबसे छोटी मौसी रेखा राणा उनका नाम है, वो अभी जिंदा है, भोपाल में है
1: जी,
0: तो वो दोनों इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ थे कि मैं गाती भी हूँ थोड़ा बहुत घर में, मतलब ऐसे गवा देते थे, लेकिन उनको बहुत बहुत पता नहीं मुझ पे बहुत एतबार था कि ये डांस से ज्यादा गाना अच्छा गाती है। तो मामा जी मेरे मुंबई में लायंस क्लब के मेंबर हुआ करते थे और एक शो था मुंबई के तेजपाल ऑडिटोरियम में। हाँ, मैं तारीख भी आपको बता सकती हूँ, 17 जनवरी 1967
1: जी।
0: तो ये शो अब मामा जी को ही ऑर्गेनाइज करना था, तो ये तय हुआ कि भाई तुम एक जो तुम्हारे एक दो डांसेस है वो करोगी। लेकिन बाद में जैसे जैसे शो की तारीख करीब आती गई, तो मामा जी और मौसी ने मुझे बोला कि देखो डांस तो फिर भी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन गाना, उस वक्त की बात मैं करूं 1967,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन इतनी छोटी उम्र में गाना गाना बहुत बड़ी बात होगी, तो तुम ना गाना गाओ, बाद में डांस भी रखेंगे
1: जी,
0: पर तुम गाना गाओ।
1: अरे वाह,
0: तो ये बहुत नयापन होगा ऑडियंस के लिए। और मैं भी मान गई, उस वक्त ना बच्चे मान लिया करते थे,
1: बिल्कुल,
0: ना ज्यादा हुज्जड़बाजी नहीं करते
1: जी,
0: थे।
1: और आपको बनना था एक महान गायिका,
0: हो सकता है, तो कुदरत ने शायद हो सकता है कि दिमाग भी की बत्ती भी उसी तरह खोल दी।
1: बिल्कुल।
0: अब वो दिन आया तो एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा था, मुझे ना उस ऑर्केस्ट्रा का नाम याद नहीं, बाद में जहाँ गाने लगी उसका नाम था रॉयल म्यूजिक सर्कल। तो वहां उनके साथ रिहर्सल्स हुई और मैं गई गाने, पहला गाना मैंने जब गाया वो तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोले है, प्यारी प्यारी है, तो वो पहला आलाप जो लिया ना मैंने, ओ माँ, वहीं पे लोग उठकर खड़े हो,
1: अरे वाह अरे वाह,
0: और इतनी तालियां कि उसके बाद गाना उठाने के लिए मुझे 5-7 मिनट रुकना पड़ा।
1: अच्छा।
0: अब ऐसा हुआ कि दो ही गाने रिहर्स हुए थे, अब मामा जी को भी क्या ही पता कि भाई ऐसा रिस्पांस मिलेगा
1: जी,
0: अब लोग ना छोड़े कि नहीं एक और एक और। और पता है मंदाकिनी जी, वो एक कहावत है ना कि होनहार बिरहा के होत चिकले पात, तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना मंदाकिनी जी, वो पहले से, ये मेरा मानना है
1: जी, बिल्कुल सही कह रही
0: है ना, वो उस बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में
1: ढाल देती है,
0: ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी देता है।
1: बिल्कुल सही
0: है ना
1: जी जी।
0: तो मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई, जैसे घर में गाती थी, जिस गाने की जो लाइन मुझे याद है, दो लाइंस, चार लाइंस तो चार लाइंस, छोड़े ही ना पब्लिक। फिर हुआ कि भाई और भी लोग हैं कलाकार और भी परफॉर्मेंसेज हैं, तो फिर बस उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं मंदाकिनी जी, बस वहां से मैं 7 साल की थी तब,
1: जी,
0: और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया
1: जी, जी,
0: कि डांस तो रहने ही दो तुम,
1: बिल्कुल,
0: तुम गाना ही गाओ,
1: आप लोगों को नचाएंगी, ये था खुद नहीं नाचेंगी लेकिन दुनिया को नचाएंगी, और आपने नचाया भी। बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

0: जो है फिल्म अंदाज के लिए आपने गाया था, शंकर जयकिशन का संगीत था
1: बिल्कुल,
0: और रफी साहब और सुमन कल्याणपुर के साथ आपने गाया, इतने बड़े बड़े लोग और आप एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची, ये अनुभव कैसा रहा और ये गीत कैसे मिला आपको?
1: ये शो मैंने जो किया ना मंदाकिनी जी, तो मेरे परिवार के तो सारे सदस्य आए थे, तो हमारे एक बहुत करीब के फैमिली फ्रेंड हुआ करते थे चंद्रकांत भोसले जी,
0: जी,
1: और वो मेरे नैनीहाल के, मतलब जहाँ मेरी नानी रहती थी, समझिए कि उनके बिल्कुल चाली में रहती थी नानी, नाना चौक, हरिनिवास चाल, बड़ी बड़ी बड़ी चौल, वहां समझिए नेक्स्ट रूम उनका, तो

0: वो भी जानते थे, बचपन से उन्होंने देखा है। वो आए थे शो देखने, और उस वक्त देखिए, अब ये तो मैं जो कहती हूँ ना, किस्मत सही वक्त
1: जी,
0: उसी टाइम में ये फिल्म बनने जा रही थी अंदाज, और शंकर जी, जय किशन जी नहीं,
1: अच्छा
0: शंकर जी ने ये गाना कंपोज किया था। तब तक शायद वो अलग हो चुके थे,
1: अच्छा
0: छोटा मुंह बड़ी बात, पर वो अलग हो चुके थे। तो शंकर जी ने अपने सारे, उस वक्त क्या होता था मंदाकिनी जी, अभी होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर जब तक मैंने पंचम दा के साथ भी काम किया, कुछ कुछ एक हद तक आनंद मिलिंद जी के साथ भी, हम सिटिंग्स करते थे, सिटिंग मतलब रिहर्सल, गाने पहले हमें सिखाए जाते थे। तो उस वक्त जो मैं कहूंगी म्यूजिशियंस हमारे साथ बजाते थे सिटिंग में, रिहर्सल्स में, उन्हें सिटिंग मेंबर्स कहा जाता था। तो जब शंकर जी ने अपने सारे सिटिंग मेंबर्स को ये बोला कि ये गाने का एक सिचुएशन आया है, अब उस वक्त तो सीनियर सिंगर्स गाया करते थे, है ना, बच्चों के गाने भी, सिर्फ एक बच्ची ने तब तक गाया था, रानू दीदी ने, हेमंत काका की जो सुपुत्री हैं रानू मुखर्जी, उन्होंने वो गाना गाया था, नानी तेरी मोरनी को,
1: मोरली
0: है ना
1: जी जी,
0: पर पता नहीं क्यों उसके बाद उनके कुछ गाने नहीं आए, तो उसके बाद बस मैं ही आई। तो उन्होंने कहा कि कोई बच्चा अगर नजर में है तो मुझे बताना जरूर। उन्होंने ना ये चैलेंज दिया था सबको कि ये गाना जो है मैं बच्चों से ही गवाऊंगा। अब सब लोग तो डरे हुए थे कि ऐसा बच्चा तुम्हें मिलेगा कहाँ, सिप्पी साहब, जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस, रमेश सिप्पी जी की पहली फिल्म बतौर डायरेक्टर, कितने लोगों की वो पहली फिल्म रही मंदाकिनी जी, सलीम जावेद जी पहली फिल्म,
1: अच्छा
0: बतौर स्क्रिप्ट राइटर,
1: जी बिल्कुल,
0: गुलजार अंकल के तो डायलॉग्स,
1: हाँ,
0: और रमेश सिप्पी जी बतौर एक डायरेक्टर, तो वो रिस्क कैसे लेंगे ना,
1: और सुपर डुपर हिट,
0: सुपर डुपर हिट, वो रिस्क कैसे लेंगे। तो वो तो बिल्कुल नाराज थे इस उनके इस फैसले से, पर शंकर जी बहुत जिद्दी थे, वो माने ही नहीं, बोले मुझ पर छोड़ दो, मैं गवाऊंगा बच्चों को
1: जी।
0: तो ये भोसले जी ने, भोसले अंकल ने शंकर जी को बोला कि एक बच्ची है भोला जी की बेटी, बहुत अच्छा गाती है। अब जाहिर बात है मंदाकिनी जी, वो बड़े पेड़ के नीचे तो छाया ही मिलती है, है ना,
1: पारिवारिक जो संगीत की पृष्ठभूमि थी वो आपके गायन कौशल को निखारने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई उसने।
0: तो डैडी का नाम सुनते ही बोले भोला जी की बेटी है, तो लेके आओ, पूछते क्या हो। अब मुझे लेके गए मौसी और मामा उनके सिटिंग रूम पे, सिटिंग रूम हुआ करता था फेमस महालक्ष्मी
1: जी,
0: टॉप फ्लोर पे। तो जब मैं वहां गई, देखा इतना बड़ा हॉल उनका, और सारे म्यूजिशियंस बैठे थे, शंकर जी ऐसे एक स्टेज जैसा बना था, शंकर जी वहां थे, हसरत जयपुरी जी थे, और सबास्टियन अंकल उनके अरेंजर थे, जिन्होंने मेरे डैडी के भी कुछ गाने अरेंज किए
1: जी।
0: तो वहां गई मैं, शंकर जी ने बिठाया और पूछा, गाती हो तुम, सीखती हो? तब तक डैडी से सीखने लगी थी थोड़ा बहुत, तो बोली हाँ। मैंने कहा अच्छा, तो क्या क्या गाती हो? मैंने सारे गम, अच्छा अच्छा किस सुर से गाती हो? मैंने कहा काली एक, अच्छा तो जरा सुनाओ सारे गम सुनाओ। तो उन्होंने सारे गम पंचम तक लेके गए, बोले बस, बोले भोसले किसको लेके आए तुम? अरे ये तो चलेगी नहीं, दौड़ेगी।
1: अरे
0: और बोले मौसी और मामा को, बोले इसको ना कल आप फिल्म सेंटर लेकर आइए
1: जी,
0: साहब के साथ और सुमन जी के साथ गाना है। तो मौसी ने पूछा रिहर्सल? अरे कोई रिहर्सल नहीं, वहीं सिखा देंगे गाना।
1: अरे वाह।
0: तो दूसरे दिन, वो तारीख थी 7 नवंबर 1969
1: जी,
0: फिल्म सेंटर में हमारी बारात गई, मेरे साथ एक और बच्ची भी, उसने भी गाया है, प्रतिभा बोर्डे का, वो भी भोसले काका की ही कोई जान पहचान की थी,
1: पर आगे उन्होंने फिर ज्यादा नहीं गाया,
0: उनको ना इंटरेस्ट, प्रतिभा को ना ज्यादा एक्टिंग में इंटरेस्ट था, जहां तक मैं मुझे याद है, ज्यादा गाने में उसको रुचि नहीं थी, वो एक ही गाना उसने गाया बस वहां।

0: जय मंदाकिनी जी उन्होंने गाना सिखाया
1: जी
0: और मुझे बोला तुम हंसती हो, मैंने बोला हाँ गाने में हंसोगी मुझे तुम्हारी हंसी डालनी है।
1: बहुत सुंदर हंसी थी आपकी वो।
0: मैंने बोला हाँ तो मुझे बताओ कैसे हंसोगी। तो मैंने कहा पापा मम्मी मिलते हैं चुपके चुपके हंसते हैं। बोले बस इसको पकड़ के रखना।
1: बहुत सुंदर।
0: बस उसके बाद फिर थोड़ी देर में रफी साहब आए, बहुत बाद में, मैं उनको साहब अंकल कहती थी। हाँ और सुमन जी आए
1: जी,
0: सब आए थे
1: जी,
0: रमेश सिप्पी जी सब आए। मुझे हमको ना बाहर खड़ा किया था, वह सिंगर्स कैबिन नया नया बना था फिल्म सेंटर में। तो शंकर जी ने कहा कि अगर बच्चों को अंदर खड़ा करेंगे तो हो सकता है हेडफोन लगाकर थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, डर जाएंगे, तो इनको बाहर खड़ा करो। तो हमको बाहर हॉल में सारा जो वायलिन सेक्शन म्यूजिशियंस सारे म्यूजिशियंस के साथ ही हमको खड़ा किया था और रफी साहब और सुमन जी सिंगर्स कैबिन। फर्स्ट टेक ओके
1: जी जी,
0: उन्होंने रिपीट ही नहीं करवाया।
1: बहुत सुंदर।
0: बाद में फिर साहब अंकल से मुलाकात हुई, मौसी ने बताया। उस वक्त ना बंदा के नीचे एक गाना चला था ना रफी साहब का, अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया
1: जी।
0: ये मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर जिसने दस्तूर बनाया।
1: बिल्कुल।
0: ये गा के मैं डांस करती थी और इसके पीछे किशोर काका पागल, क्योंकि किशोर काका और डैडी की बिल्कुल ऐसी दोस्ती जैसे आप समझिए एक माल के मणि
1: जी।
0: तो घर में आते थे और जब आते थे अमिता के साथ यही गाने में मुझे डांस करवाते
1: जी।
0: तो मौसी ने बोला तुम वो गाना गाती हो ना, ये वही है, जाओ पैर छुए।
1: अच्छा।
0: तो उस वक्त वो ना धनतेरस का दिन था मंदाकिनी जी। तो साहब अंकल ने वो बड़े बड़े 100 रुपए के नोट चलते थे उसको, तो मुझे और प्रतिभा को 100 रुपए बख्शीश दिए।
1: क्या बात,
0: नजराना।
1: वाह वाह।
0: ये एक हमारे गाने बजाने में एक ये एक तहजीब होती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: हम जब अपने छोटों को सुनते हैं
1: तो उसको
0: तो नजराना हाँ, एक नजराना
1: ये
0: देते
1: प्यार
0: हैं
1: का प्रतीक।
0: बिल्कुल। और उनको एक प्रोत्साहन देने
1: जी,
0: के लिए
1: जी।
0: तो उन्होंने वो दिया और बोला जाओ मिठाई खाओ।
1: अरे वाह।
0: फिर मौसी से पूछा कि भोला जी की बेटी है ना, तो मौसी ने कहा इसको ना बहुत प्यार दीजिएगा, बहुत अच्छे से सिखाइएगा, ये बहुत नाम करेगी।
1: क्या बात है। यानी आप भाग्यशाली थी कि आपकी शुरुआत रफी साहब और सुमन कल्याणपुर के साथ,
0: ये आज महसूस होता है,
1: शंकर जी के साथ हुई और इतनी बड़ी फिल्म में आपने गाया। तो वो गीत की दो लाइनें हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे और उसके बाद शायद यही हम सुने आपकी पसंद का।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और पता है मैं एक छोटी सी बात बताऊं मंदाकिनी जी, अभी एक 10 है ना बुलबुलो तररा, है ना बुलबुलो तर पा पा पा बापा बुलबुलो।

0: अभी तो हम आपको सुषमा जी भी कह लेंगे तो कोई अति नहीं होगी, क्योंकि अभी हम सुषमा श्रेष्ठ को ही सामने बैठा देख रहे हैं। तो आपने राहुल देव बर्मन के साथ भी कई गीत गाए, यादों की बारात और तेरी है जमीन, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई,
1: क्या हुआ तेरा वादा
0: है ना, क्या हुआ तेरा वादा, ये सब गाते गाते सिर्फ 11 साल की उम्र में आपको फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के रूप में नामांकित किया गया।
1: काश मिलता वो अवार्ड
0: लेकिन नामांकन भी बहुत बड़ी चीज थी।
1: बड़ी चीज़।
0: तो ये अनुभव कैसा रहा और पंचमदा के साथ काम करने का जो संगीत की आपकी समझ पर क्या प्रभाव पड़ा होगा?
1: मैं जो कुछ भी गाती हूँ आज, जो कुछ भी थोड़ी बहुत अगर मैं समझती हूँ कि डायनामिक्स हम जिसे गाने में कहते हैं, उतार चढ़ाव और बहुत कुछ मैंने पंचम दादा से सीखा, क्योंकि उनके साथ बहुत उठना बैठना होता था। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ
0: जी।
1: एक तो क्या हुआ ना कि बर्मन चाचा मतलब एसडी बर्मन जी और डैडी, मैंने जो बताया आपको कि डैडी का जन्म कोलकाता में हुआ, तो वो पूरी तरह से अपने आप को वो बंगाली बाबू ही समझते थे अपने आखिरी सांस तक
0: जी।
1: और उनका सर्कल भी पूरा बंगाल
0: वैसे ही था
1: बिल्कुल। उस कारण भी मुझे ये सब बहुत प्यार करते थे, जैसे बर्मन चाचा, शक्ति सामन जी, प्रमोद चक्रवर्ती जी, इतना प्यार करते थे कि डैडी के जाने के बाद भी कोशिश यही उनकी रहती थी कि उनके फिल्मों में कहीं ना कहीं मुझे एक लाइन ही मिल जाए। तो पंचम दास से फिर वही एक वही था कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही। तो वो एक रिश्ता आप समझिए ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे चलता आ रहा, एक अनोखा वो

0: मंदा के नहीं जी, क्या होता है ना, बड़ी देर के बाद जैसे जैसे बड़ी हुई, ये एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते जो होते हैं ना, अपने होने का ना एहसास नहीं दिलाते। वैसा रिश्ता मेरा पंचमदा के साथ रहा
1: जी,
0: है और मेरे मरते दम तक रहेगा
1: जी, बहुत सुंदर।
0: मैं हमेशा उनसे कहती थी, मंदाकिनी जी, मैं इतना प्यार करती थी उनसे, करती हूँ, करती रहूंगी, कि मैं हमेशा पंचमदा से कहती थी, मैं अगर बड़ी होती मैं आपसे शादी करती। और
1: क्या बात
0: इतने,
1: है
0: इतने क्यूटली वो हंसते थे।
1: जी,
0: तो मुझे लगता मेरे गाने में बहुत सारी छवि उनकी आती है, और बाल बराबर आशा काके की उन वो तो आ ही नहीं सकती, कोशिश बहुत की दादा ने, पर हाँ मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ और हुई उनसे, बहुत सीखा। वो बुलाते थे सिटिंग्स में, रिकॉर्डिंग्स में, सिर्फ सुनने के लिए कि सुनो कैसी गाती हैं वो, मतलब खास तौर पर आशा काकी की रिकॉर्डिंग्स, कि सिर्फ सुनो सुनो और देखो। मैंने पहला गाना जो दादा के लिए गाया वो परिचय फिल्म, फिर गुलजार अंकल देखिए,
1: अरे वाह,
0: ये मैं कह रही हूँ वक्त कैसे एक खेल रचता है। मंदाकिनी जी, यहाँ एक छोटी सी बात मैं जरूर आपको और मेरे श्रोताओं को बताना चाहूंगी
1: जी,
0: कि ये वक्त और कुदरत का जो खेला होता है ना, मैंने अंदाज में गाया, जीपीसीपी प्रोडक्शंस
1: जी,
0: शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी जी,
1: जी,
0: सुमन कल्याणपुर जी, रफी साहब, शमी कपूर जी, सही
1: बिल्कुल,
0: है
1: बिल्कुल।
0: मैंने जब स्टेज पर गाना शुरू किया था 7 साल की उम्र से, तो मेरा सबसे पहला जो डुएट गाना था स्टेज पर, जो मैंने डुएट गाना गाया
1: जी,
0: वो फिल्म ब्रह्मचारी का गाना था,
1: हाँ,
0: आजकल तेरे मेरे
1: प्यार
0: के चर्चे,
1: हर जबान,
0: और यही पूरा था ना,
1: हाँ,
0: जीपी सिप्पी प्रोडक्शंस,
1: हाँ,
0: शमी कपूर जी, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी जी, रफी साहब, सुमन कल्याण
1: जी,
0: वही पूरा देखे खेला,
1: बिल्कुल।
0: मुझे नहीं पता
1: हाँ,
0: था तब कि कुछ साल बाद मैं इसी इसी सर्कल, इसी ग्रुप का एक हिस्सा बनूंगी,
1: अभिन्न हिस्सा बनेंगे,
0: और अपनी जिंदगी का सबसे कामयाब, पहला और सबसे कामयाब गाना मैं इन्हीं लोगों के साथ जुड़कर शुरू करूंगी।
1: जी जी,
0: देखिए
1: जी,
0: ये वक्त का खेला है।
1: जी, बिल्कुल सही कहा आपने,
0: तो
1: कि वक्त ही है जो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हमारी पहचान बनाता है
0: उसके आगे
1: या हमारी
0: कुछ
1: पहचान मिटा देता है।
0: एकदम।
1: बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले सुनते हैं ये गीत।

सुषमा जी ही कहूंगी मैं फिर आपको अभी, क्योंकि मैं सुषमा जी को जी रही हूँ इस वक्त थोड़ी देर बाद मैं पूर्णिमा जी को जीना शुरू करूंगी। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी तब कि जब सुषमा जी पूर्णिमा जी आपस में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, लेकिन ये सवाल थोड़ी देर में होगा। अभी मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप सुषमा श्रेष्ठ के नाम से गा रही थी तो आपने उस समय के सभी दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया था, मसलन शंकर जयकिशन में आप बताई रही हैं, मदन मोहन साहब के साथ।

0: सलील चौधरी, एस डी बर्मन काका जो आप कह रही है, नौशाद साहब के साथ
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बप्पी लाहिड़ी, रविंद्र जैन, राजेश रोशन, कल्याण जी, आनंद जी और चित्रगुप्त साहब के साथ भी आप
1: बिल्कुल बिल्कुल। चित्रगुप्त अंकल के साथ मैंने काफी भोजपुरी गाने गाए।
0: अच्छा,
1: और उस वक्त आनंद मिलिंद उनको असिस्ट करते थे
0: जी, और बाद में आपने उन्हीं के सुपुत्र आनंद मिलिंद साहब के साथ बहुत गाने गाए।
1: अच्छा मंदाकिनी जी, देखो मुझे आज कैसी कैसी बातें याद आ रही हैं
0: जी।
1: जो मैंने पहला शो अपना किया ना, पता है आपको, एक फिल्म आई थी औलाद
0: जी,
1: उससे पहले एक फिल्म आई थी शायद वो फिल्म का नाम भी लाडला था,
0: लाडला,
1: उसमें निरुपा रॉय जी थी शायद, एक गाना था उसका

0: रे, ये मैं इतना गाती थी सालों बाद। ये चित्रगुप्त अंकल का म्यूजिक है अगर मैं गलत नहीं
1: हूं। बिल्कुल
0: सालों बाद मैंने आनंद मिलिंद के लिए लाडला फिल्म में ही गाना गाया। देखिए आप देख रही हैं, मैं
1: समय खुद को दोहराता है किस रूप में।
0: एक गाना आया था कब तक हुजूर रूठे रहोगे औलाद फिल्म का, वो मैं इतना गाती थी। ये नहीं पता था कि ये जो मैं इतना गाती हूँ गाना, जिन म्यूजिक डायरेक्टर का ये गाना मैं गा रही हूँ, उन्हीं के बेटों के साथ सालों बाद मैं एक टीम बनाऊंगी, एक बहुत ही सफल टीम।
1: बहुत बहुत
0: ये वक्त का खेला ये होता है।
1: और ये आपसे बात करके हम भी महसूस कर रहे हैं कि देखिए वक्त आपको किस तरह से कहां कहां जोड़ता है
0: ना।
1: बिल्कुल।
2: बॉम्बे टॉकीज इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। ये बातचीत यही खत्म नहीं हुई, अगले हफ्ते इस बातचीत का दूसरा भाग लेकर हाजिर होंगे। तब तक इंतजार कीजिएगा अगले हफ्ते का। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
3: बॉम्बे टॉकीज
4: साइंस लाइट साउंड कैमरा एक्शन।

0: हैं संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ

0: दुविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का नमस्कार। आज एक और नए संस्करण के साथ हम उपस्थित हैं और लेकर आए हैं अपने खजाने से कुछ खास रिकॉर्डिंग्स।
0: जी बिल्कुल, और ये पहली रिकॉर्डिंग हमारे सामने जो है मनीषा जी,
1: उसको शाया कर रहे हैं आप या उसके पहले कुछ और सुनाएंगे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, उसके पहले बात तो उसी के बारे में करनी है। हम इस रिकॉर्डिंग के जरिए पुराने जमाने में इतिहास में जाने वाले हैं।
1: हाँ, ये तो विविधा जो है ना कार्यक्रम, उसके बारे में अब हमारे श्रोता भी बहुत स्नेह से ये कहते हैं कि ये कार्यक्रम ऐसा लगता है जैसे अतीत में खींच के ले जाता है।
0: जी, बिल्कुल।
1: और ऐसे कलाकारों को हम याद करते हैं जो हमारे लिए माइलस्टोन साबित हुए, जिन्होंने शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष किया और बाद में बहुत सफल हुए।
0: ऐसे कलाकारों में एक बहुत ही सम्माननीय नाम है दुर्गा खोटे जी का।
1: क्या बात है, एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही गौरवमयी अभिनेत्री, व्यक्तित्व ही उनका इतना गौरवशाली था।
0: बहुत ही ग्रेसफुल एक्ट्रेस ये थी। और दुर्गा खोटे जी के बारे में बता दूं कि उनका मूल नाम था वीता लाड़।
1: अच्छा
0: जी,
1: महाराष्ट्र
0: आपका,
1: से थी?
0: जी हाँ, हाँ। आपका जन्म 15 जनवरी 1905 में हुआ था और मुंबई के गिरगांव इलाके में जो कांदेवाड़ी नाम की बस्ती है वहाँ उनके पिता रहा करते थे।
1: और बहुत ही संघर्ष भरा जीवन दुर्गा खोटे जी का रहा। ऐसा है जयंत जी कि दुर्गा खोटे जी के लिए बहुत सारी बातें हैं हमारे पास करने को, लेकिन उसके पहले हम एक गीत सुनवाएंगे जो एक जमाने के बहुत ही अजीमुशान शाहकार, जिसे कहते हैं ना पृथ्वी वल्लभ, उस फिल्म में दुर्गा खोटे जी ने अभिनय किया था। वैसे तो दुर्गा खोटे जी हमें याद आती हैं सलीम की माँ के रूप में।
0: जी, जो दवाई का अभिनय उन्होंने फिल्म मुगले आजम में किया था।
1: जी हाँ, लेकिन पृथ्वी वल्लभ इस फिल्म में उन पर फिल्माया गया एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जिसमें वो साज सिंगार कर रही है। तो इस गीत को सुनाते हैं, उसके बाद हम दुर्गा खोटे जी के बारे में कुछ और बातें करेंगे।

0: क्या बात है, पृथ्वी वल्लभ फिल्म की सुंदर से रचना से वो जमाना आंखों के सामने तैर गया। मनीषा जी, वास्तव में दुर्गा खुटी जी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि 26 वर्ष की उम्र में ही उनके पति गुजर गए। तब से उनका जो संघर्ष शुरू हुआ और उन्होंने धीरे धीरे अभिनय करना शुरू किया। 1931 में पहली फिल्म उन्हें मिली
1: फरेबी जान
0: जी, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ा। 1932 में उनकी फिल्म आई माया मच्छिंद्र, और ये वो जमाना था जब पुरुष जो है स्त्री भूमिकाएं

0: करते थे।
1: यानी उस समय बहुत संघर्ष था एक अभिनेत्री के लिए अपनी जगह बनाना।
0: बिल्कुल, और ये संघर्ष उनके लिए कई मामलों में आगे जारी रहा। उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भी बनाई आगे जाकर के।
1: क्या बात,
0: फिल्म
1: है?
0: का निर्देशन भी किया
1: जी।
0: मगर उससे पहले बता दें श्रोताओं को कि 1932 में एक फिल्म आई थी जो हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में बनी थी, अयोध्या राजा, यानी अयोध्या का राजा। और इस फिल्म में वो हमें सीता के रूप में दिखाई दी।
1: एक बात हम अपने श्रोताओं को जरूर बताएंगे कि प्रभात कंपनी से जुड़ी रही बहुत दिनों तक दुर्गा खोटे जी, लेकिन जैसा कि नाम है ना, उसी में ही शक्ति छुपी हुई है।
0: जी, जी,
1: और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं संघर्ष की, तो जो संघर्ष करने वाली स्त्री होती है ना, वो मूलतः कई मामलों में बहुत एंटरप्रेन्योरशिप भी होती है। यानी उनके अंदर बहुत नया कुछ करने का जज्बा था, इसलिए उन्होंने प्रभात कंपनी को बाद में छोड़ दिया और फ्रीलांसिंग करने लगी। और तो और उन्होंने बाद में अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी स्थापित की थी।
0: जी बिल्कुल, ये जो व्यक्तित्व उनका था एक बिजली की तरह था।
1: हाँ।
0: मेरा इशारा है उनकी एक फिल्म की तरफ जिसका नाम था सौदा मिली।
1: जी हाँ।
0: आगे उन्होंने जो पहली फिल्म बनाई और उसका निर्देशन भी किया, उस फिल्म का नाम है साथी, जो बनी 1937 में।
1: उसके बाद आती है चरणों की दासी और भरत मिलाप 1947 में। इसके अलावा हम अपने श्रोताओं को और बताना चाहेंगे कि आप इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर्स एसोसिएशन से जुड़ी रही।
0: जी, साथ ही आप मुंबई मराठी साहित्य संघ की भी एक क्रियाशील एक्टिव मेंबर थी।
1: देखिए, ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी दुर्गा खोटे जी को हम बहुत श्रद्धा से स्मरण कर रहे हैं। 22 सितंबर उनका स्मृति दिवस है
0: जी।
1: तो एक विशेष रिकॉर्डिंग अब हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं जो हमारे संग्रहालय से हम चुन कर लाए हैं।
0: अवश्य, और इस साक्षात्कार में दुर्गा जी से बातचीत की है मधुप शर्मा जी ने।
2: दुर्गा जी, आपकी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी?
3: फिल्म के हिसाब से देखा जाए तो प्रभात की हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, ये मेरी पहली फिल्म थी। लेकिन उससे पहले मैंने श्री भवनानी के एक पिक्चर में छोटा सा एक काम किया था।
2: जी, तो ये टॉकी पिक्चर थी?
3: हाँ, वो टॉकी के शुरू शुरू का जमाना था और 1930 की बात है ये।
2: अच्छा, उस जमाने में तो कलाकार अपने अपने गीत भी गाया करते थे, आशा है आप भी गाती होंगी जरूर।
3: हाँ, मैं गाने से बहुत शौक रखती थी। असल में मैंने विलास खान साहब से तालीम भी ली थी 3-4 साल।
2: जी,
3: और उस जमाने में आर्टिस्ट अपने अपने गाने गाया करते थे, प्लेबैक का तो कोई सिलसिला था ही नहीं उस पर, और आर्टिस्टों को काफी मेहनत करनी पड़ती थी। जैसे ड्रामा में अपने गाने का रिहर्सल करते हैं, उसी हिसाब से फिल्मों के गाने रिहर्स करते थे और वो गाया जाते थे डायरेक्टली।
2: तो इस लंबे अरसे में आपने हर तरह के अभिनय किए होंगे।
3: हाँ।
2: लेकिन फिर भी कुछ खास पसंद है आपकी?
3: मेरी ये खुशनसीबी है कि मुझे हर किस्म के रोल्स करने मिले।
2: जी।
3: असल में मैंने जो रोल्स किए वो मैंने इसलिए किए क्योंकि मुझे वो स्टोरी पसंद थी, वो रोल पसंद था। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि मुझे कौन सा रोल ज्यादा पसंद था। मैं कहीं परमानेंट आर्टिस्ट तो रही नहीं, और अगर मुझे कोई स्टोरी पसंद नहीं आई तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि भाई ये काम मुझसे नहीं होगा। इसलिए मुझे इत्तेफाक से हर किस्म के रोल्स मिले, कुछ कॉमेडी के मिले, कुछ ट्रेजेडी के मिले, कुछ वीरता के मिले, कुछ जैसे घरेलू मिले। कुछ लोग कहते हैं कि चन्नों की दासी में जो सास का पार्ट मैंने किया था वो तो बिल्कुल ही कमाल था, हालांकि मैं वैसी नहीं हूँ, बिल्कुल झगड़ेलू नहीं। मैं आपको ओफ बहुत ही इतना था कि जब मेरी बहू आई, मेरे लड़के की शादी हुई, मेरी बहू जब आई और उन्होंने पिक्चर देखी तो वो कहने लगी, हे भगवान, अगर ये पिक्चर मैं पहले देखती तो मैं कभी आगे लड़के से शादी नहीं करती।
2: अच्छा, अभिनय से फुर्सत होती है तो आप अपना समय किस तरह बिताना पसंद करती हैं ज्यादातर?
3: जब मुझे कुछ थोड़ी सी फुर्सत मिल जाती थी उस वक्त मैं अपना वो समय घर में बिताती थी। मुझे घर रखने का बड़ा शौक है और मेरे बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे। मैं अपना कर्तव्य समझती थी कि उनको उनकी पढ़ाई देखना, उनको अच्छी तरह से तालीम लेना, और जो मुझे तालीम मिली थी वो बच्चों को मिलनी चाहिए। इस हिसाब से मैं काफी समय उनके साथ बिताती थी।
2: रसोई वगैरह का भी शौक है?
3: हाँ, मुझे बहुत शौक है, महाराष्ट्र पद्धति का, और पद्धति मैं नहीं जानती लेकिन और लोग कहते भी हैं कि मैं अच्छी रसोई बनाती हूँ, मालूम नहीं।
2: अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या शौक रहे हैं आपके?
3: मुझे गाने का शौक था ही
2: जी,
3: और फिर मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक रखा।
2: अच्छा, विदेश भी गई हूँ?
3: हाँ, मैं 2-3 दफे विलायत गई थी, यूरोप गई थी, और जगह भी हुआई, और हर जगह से कुछ न कुछ नायाब चीज इकट्ठा करना घर के लिए। वैसे देखिए तो मेरा घर की तरफ ज्यादा मेरी खींच है, मेरे दिल की, और मैंने काफी समय भी इसमें डाला।
2: तो विदेशों में आप फिल्म उद्योग के भी कुछ लोगों से मिली होंगी जरूर?
3: हाँ, मैं काफी लोगों से मिली।
2: और तो आपके विचार में वहाँ का ये फिल्म उद्योग ज्यादा तरक्की पर है भारत?

0: ہیں سر؟
1: ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ہم سے آگے بڑھے ہیں، حالانکہ ٹیکنیکلی میں سمجھتی ہوں کہ ان کو کافی موقع ملتا ہے ایکسپیریمنٹ کرنے کا.
0: جی ہاں جی،
1: ایکسپیریمنٹ سے لوگ تو بڑھ ہی جاتے ہیں آگے، ہمارے یہاں ایکسپیریمنٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا.
0: اچھا ابھینے کی دشٹی سے؟
1: ابھینے کی دشٹی سے میرا خیال ہے ہمارے یہاں واقعی بہت اچھے اور بہت انسٹنکٹیولی جو لوگ ہیں آرٹسٹ، وہ میرے خیال سے ہمارے یہاں زیادہ آرٹسٹک ہے. ایک تو ہم زیادہ سینٹیمنٹل بھی لوگ ہیں، بھاونا پردھان ہم لوگ ہیں، اور وہ بھاونا ہم کبھی دبا کے نہیں رکھتے، بتاتے ہیں.
0: اچھا اپنے جیون کی کوئی ایسی گھٹنا آپ کو یاد ہے کہ جس کو آپ کو یاد کر کے ہنسی آ جاتی ہو ابھی؟
1: مجھے تو ابھی بھی اس بات کی ہنسی آتی ہے جب میں نے پہلے بھوانی صاحب کی پکچر میں کام کیا تھا. تو میں نے سمجھا نہ جانے میں نے کون سا بڑا کام کیا، اور بڑے شوق سے امید سے میں وہ پکچر دیکھنے گئی. جب دیکھا وہ اتنا بھیانک تھا میں واقعی بہت ڈر گئی. نہ میں نے میک اپ کیا تھا، نہ میں نے کچھ اس کے بارے میں سوچا تھا. جس امید سے میں گئی تھی اور جو میں نے دیکھا، اس کی جب یاد میں کرتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ واقعی لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں جب دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں. کاش کے لوگ اپنے آپ کو ایسے دیکھ سکے.
0: اچھا درگا جی بہت بہت دھنیواد وویدھ بھارتی کی طرف سے اور وویدھ بھارتی کے سننے والوں کی طرف سے بھی.
1: نہیں شرما جی، بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں کچھ چند لفظ کہہ سکی. نمستے.
0: نمستے.
2: श्रोताओं, संग्रहालय से प्राप्त इस विशेष रिकॉर्डिंग को हमने आपकी सेवा में प्रसारित किया. सुप्रसिद्ध अभिनेत्री दुर्गा खोटे से बातचीत की थी मधुप शर्मा जी ने. ये हमारी एक खास धरोहर है. और अब आगे बढ़े हमारी बातचीत में, हमने इप्टा की बात की थी जब हम दुर्गा खोटे जी को याद कर रहे थे. इप्टा से ही जुड़े एक और कलाकार हैं जो हमें कई फिल्मों में दिखे हैं और बहुत ही उन्होंने अविस्मरणीय भूमिकाएं की हैं. उनके बारे में बहुत कम बात होती है लेकिन उस कलाकार की प्रतिभा के हम सभी कायल हैं.
3: और इस कलाकार को हम उनके शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं. उनका नाम असल में है सत्येंद्र कपूर और सब उन्हें पहचानते हैं सत्येन कप्पू के नाम से.
2: जी,
3: और सत्येन कप्पू साहब की शुरुआत असल में मराठी नाटक से हुई थी. पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे जी का लिखा हुआ नाटक था, वही नाटक हिंदी में भी खेला गया.
2: हम अपने श्रोताओं को बता दें, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, जी हाँ, पुल देशपांडे, मराठी के महान नाटककार और लेखक.
3: जी हाँ, और इस नाटक को देखने के लिए फिल्म जगत के बहुत से महनीय कलाकार, निर्माता, निर्देशक उपस्थित थे.
2: जी.
3: और वहीं उन्हें एक निर्देशक ने चुन लिया अपनी फिल्म के लिए.
2: क्या बात है.
3: उनका नाम था नरेंद्र बेदी साहब और उनकी फिल्म जवानी दीवानी में सत्येन कप्पू को पहला मौका मिला, पहला ब्रेक मिला.
2: और उसके बाद बड़े बड़े फिल्मकारों ने उन्हें ऐसे मौके दिए जिसकी वजह से वो आज भी हमारी स्मृतियों में जिंदा है. शक्ति सामंत जी की फिल्म कटी पतंग में वो दिखते हैं,
3: रमेश सिप्पी साहब की फिल्म सीता और गीता, और आगे संतान में हमने उन्हें देखा, दीवार फिल्म में हमने उन्हें देखा, बहुत सी फिल्में हैं. और सत्येन कप्पू साहब जिनके अभिनय से प्रभावित रहे, जिन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते रहे, उन कलाकारों के बारे में भी बताते हैं कि बलराज साहनी साहब हो या दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन जी या प्राण साहब है या कमल हासन, नए जमाने के कलाकारों तक ने उन्हें प्रभावित किया और वो उनके साथ अभिनय का मौका उन्हें मिला.
2: तो सत्येन कप्पू जी को भी हम आज याद कर रहे हैं श्रोताओं, और इनकी एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है जो हम आज खास तौर पर आपके लिए लेकर आए हैं. उनकी आवाज सुनिए और आइए स्मरण करते हैं फिल्मी पर्दे पर चरित्र भूमिकाओं में अपनी छाप छोड़ देने वाले सत्येन कप्पू जी को.
4: मेरा यानी सत्येन कप्पू का बहुत बहुत नमस्कार. मैं आपको कुछ लाइनें सुनाने जा रहा हूं जिन लाइनों से मुझे प्रेरणा मिली है और जिनकी वजह से मैं हमेशा आगे ही बढ़ता रहा. वो लाइनें लिखी हुई हैं हमारे फिराक गोरुपुरी साहब की. लाइनें हैं, उठो भी के अब दिन हैं बदलने वाले, उठो भी के अब दिन हैं बदलने वाले, मंजिल पे पहुंच जाएंगे चलने वाले, दीपक के लिए हट है पतंगे न कर, बे आग भी जल जाते हैं जलने वाले. ये लाइनें आपने, मैं समझता हूं कि जरूर बड़े ध्यान से सुनी होंगी और इन लाइनों में जो छुपी हुई बात है उसको भी आपने जरूर समझा होगा, क्योंकि ये लाइनें मैं समझता हूं कि मेरे जीवन को बदलने में बहुत ही मेरा साथ दिया. मैं आपको एक बात बताता हूं, जबकि मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पढ़ता था और जब कोई 6-7 साल का था तब मैंने वहां से नाटकों में काम करना शुरू किया, और जब बंबई आया तो यहां मैंने श्री बल्लाज साहनी की फिल्म देखी धोबी का जमीन, जिसे स्वर्गीय बिमल राय जी ने डायरेक्ट किया था. उस फिल्म में जो मैं देखने गया उसमें जो गाना था उसने मुझे बहुत प्रेरणा दी, जिसके बोल हैं कुछ तो निशानी छोड़ जा.

0: बेसिकली मैं थिएटर का आर्टिस्ट हूँ और थिएटर में मुझे कुछ खट्टे मीठे अनुभव हुए जिनमें से मैं एक छोटा सा अनुभव आपको बताता हूँ। हुआ यूं कि मैं अपनी पत्नी को नाटक दिखाने ले गया और नाटक में मैं हीरो था जिसमें मेरी पत्नी होती है, एक बच्चा होता है जिसका नाम विनोद होता है और कुछ ऐसे सीन थे उसके अंदर कि जहाँ रोमांटिक सीन, मेरी बीवी रोती है धोती है और मैंने वो किरदार वो रोल इतनी ईमानदारी से निभाया कि शायद मेरी पत्नी को इस बात का बुरा लगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे मैं घर पहुंचा और मैंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई मुझे एक गिलास पानी दीजिए तो मेरी पत्नी बहुत जोर से चिल्लाई और एकदम गुस्से में कहा कि जाइए पानी विनोद की माँ से ले लीजिए। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने उठाकर बहुत गहरे समंदर में फेंक दिया हो और मैं चिल्ला रहा हूँ कि अरे मुझे बचाओ, मुझे निकालो इससे, लेकिन कोई मल्ला कोई माझी मुझे निकालने वाला नहीं आया और मैं अब यकीन मानिए एक महीना तक उस घर के झगड़े में पड़ा रहा जिससे कि मैं समझता हूँ कि काफी मेंटली मुझे परेशानी हुई।
1: अरे माझी

मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ अपनी एक फिल्म की। फिल्म का नाम था कुली, मनमोहन देसाई जी उसके डायरेक्टर थे। तो एक सीन आता है कि हमारी पिक्चर का विलन हमारे डैम को जहाँ मैं काम कर रहा होता हूँ उसका कुछ पुर्जा ऐसा खोलता है कि तेज बहाव में पानी बहता है और जिसमें हमारा गाँव भी बह जाता है और मैं भी बह जाता हूँ। तो मनमोहन जी को शॉट लेना था कि मैं नदी में मेरी लाश बहती हुई आ रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं, उन दिनों बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और नदी का जो बहाव था बहुत ही जोरों पर था। तो मनमोहन जी मुझे बता ले कि भाई सत्येन कपूर जी आपको वहां से कूदना है और यहां से आपकी लाश गुजरेगी और हम बीच में जहां कैमरा हमें जूम करना हम कर लेंगे। मैंने कहा जी बेहतर है। तो मुझे कहा रेडी? मैंने कहा जी हां रेडी। तो जैसे उन्होंने एक्शन कहा तो इतने में वहां गांव की एक औरत बैठी हुई थी, मुझे कहने लगी ना ना ना साहब इधर मत कूदिए, यहां हर साल हमारी देवी बलि लेती है। खैर मुझे उस वक्त कुछ सोचने का मेरे पास टाइम ही नहीं था क्योंकि एक्शन बोल चुके थे मनमोहन जी और मैं भगवान का नाम लेकर नदी में थर से कूद पड़ा और बिल्कुल मैं तो हाथ पैर भी नहीं हिला सकता था, बिल्कुल लाश की तरह पड़ा हुआ था। एक जगह आकर के, एक मकान पे आकर के मेरी लाश रुकी और अपने आप उस जगह पे घूम

तो जैसे उन्होंने एक्शन कहा तो इतने में वहां गांव की एक औरत बैठी हुई थी, मुझे कहने लगी ना ना ना साहब इधर मत कूदिए, यहां हर साल हमारी देवी बलि लेती है। खैर मुझे उस वक्त कुछ सोचने का मेरे पास टाइम ही नहीं था क्योंकि एक्शन बोल चुके थे मनमोहन जी और मैं भगवान का नाम लेकर नदी में थर से कूद पड़ा और बिल्कुल मैं तो हाथ पैर भी नहीं हिला सकता था, बिल्कुल लाश की तरह पड़ा हुआ था। एक जगह आकर के, एक मकान पे आकर के मेरी लाश रुकी और अपने आप उस जगह पे घूमी, उसने पूरा एक चक्कर लगाया और चक्कर लगाने के बाद में वो नदी के बहाव में आगे निकल गई। इतने में हमारे डायरेक्टर साहब ने बोला कट, शॉट ओके हो गया, मैं बाहर आया तो गांव के एक आदमी ने कहा कि भाई साहब एक मिनट सुनिए, बोले जहां आपकी लाश घूमी थी ना वहां पर एक भंवर है, कुआ है, आप बच गए। अब यकीन मानिए मेरे पांव के नीचे से धरती निकल गई। वो जो जितने भी सेकंड गुजरे मुझ पे वो मैं जानता हूं कि किस तरह गुजरे होंगे और मुझे अभी एहसास हुआ कि एक नई जिंदगी मिली थी मुझे। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं थिएटर से वास्ता रखता हूं और हम थिएटर के कलाकारों की जिंदगी बड़ी अजीब सी होती है, एक्टिंग के साथ साथ कुछ घर की परेशानियां भी होती हैं, उलझने भी होती हैं। मुझे एक अपनी जिंदगी का एक हादसा याद आ रहा है जो मैं आपको सुनाता हूं। हम जो हिंदी थिएटर करते थे, घर घर जाके टिकट बेचना, तीन तीन महीने एक ड्रामे की रिहर्सल करना, उसके बाद शो करना, तो ये काम बहुत ही मुश्किल था। एक प्ले था जिसकी मैं रिहर्सल कर रहा था दो या तीन महीने से और रिहर्सल करके एक दिन जब मैं घर पहुंचा तो भाई साहब ने कहा कि भाई पानीपत से टेलीग्राम आया है, तुम्हारे छोटे बच्चे का स्वर्गवास हो गया है और तुम पानीपत चले जाओ। मैंने कहा नहीं भाई साहब, बड़ी मेहनत करके हमने ड्रामा तैयार किया है और कल उसका शो होने वाला है, सो मैं शो छोड़ के नहीं जा सकता, कि शो मस्ट गो ऑन, ड्रामा नहीं रुकेगा। खैर मेरे घर पे जो बीती, मेरे परिवार पे जो बीती वो मैं जानता हूं और हमने शो किया और इसी पर मुझे स्वर्गीय नरगिस भाभी की फिल्म मदर इंडिया का एक गाना याद आ रहा है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा।

या करेक्टर हो या गंभीर करेक्टर हो, वो जितने सोबर थे अपनी जिंदगी में उतने मजाया भी थे। मुझे एक हादसा याद है, जब हम स्ट्रगल कर रहे थे जिंदगी की, तो मैंने उनसे 3 रुपए उधार लिए थे। मैंने कहा भाई मुझे 3 रुपए दे दो, तो कहने लगे भाई कब लौटाओगे। मैंने कहा कल लौटा देंगे। हुआ ये कि पैसे साहब वो मैं उनको नहीं लौटा सका। वक्त गुजरता गया, संजीव कुमार साहब बहुत बड़े हीरो बन गए और मैं भी छोटी छोटी फिल्में करने लगा। एक दिन मालूम हुआ कि उनकी और मेरी शूटिंग एक साथ एक ही फिल्म में है, तो मुझे उन्होंने कहा भाई तुम मेरे घर पे आ जाओ, हम चले चलेंगे साथ में। तो मैं उनके घर पहुंचा, उनकी गाड़ी में जा रहा था, तो मैंने कहा संजीव आपने वो पहली गाड़ी जो ली थी कितने की ली थी। कहने लगे भाई वो पुरानी गाड़ी थी, मैंने सेकंड हैंड गाड़ी 6,000 में ले ली थी। तो मैंने कहा संजीव काम करो भाई, तुम वो गाड़ी तुम मुझे भेज दो। देखो भाई मैं नया नया आर्टिस्ट बनने जा रहा हूँ और इतना पैसा मेरे पास है नहीं, मैं तुम्हें 2,000 रुपए दे देता हूँ अभी और बाकी 3,000 मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा। अच्छा भाई जब स्टूडियो पहुंचने को हम आ गए यानी स्टूडियो नजदीक आ गया, तो मैंने उनसे कहा कि भाई संजीव वो तुमने गाड़ी के बारे में कुछ जिक्र नहीं किया, 2,000 मैं तुम्हें दे रहा हूँ, 3,000 तुम्हें धीरे धीरे चुका दूंगा। तो फौरन बोले कि भाई 3 रुपए तुमने लिए थे आज से 15 साल पहले, अब तक नहीं चुकाए, ये 3,000 रुपए तो शायद तुम मेरी साजनम भी नहीं चुका पाओगे। वो कलाकार, वो महान कलाकार आज हमारे बीच नहीं है, तो उन्हीं की याद में मैं आपको उन्हीं की एक पिक्चर खिलौना का गीत सुनाता हूँ।

0: तो तीन कप्पू जी की आवाज हमने सुनी और एक बार फिर जो हमारी स्मृतियां हैं वो उन्हीं गलियारों में घूम गई जब 80 के दशक तक वो बहुत सक्रिय रहे और उनकी आवाज सुनकर बड़ा अच्छा भी लगा। उनके द्वारा ये जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था जिसमें उन्होंने अपने पसंद के गीत भी सुनवाए थे।
1: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।

राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग, और स्मृति शेष में नमन निर्देशक कुकू कोहली को। तो सबसे पहले संपादकीय 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सरकार द्वारा दिए जाने वाले देश के सबसे बड़े अवार्ड हैं। इनकी शुरुआत हुई थी सन 1954 में। ये पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किए जाते हैं। समय के साथ इन पुरस्कारों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती चली गई।

0: ये पुरस्कार तीन वर्गों में दिए जाते हैं, फीचर फिल्में, गैर फीचर फिल्में और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन। फीचर और गैर फीचर वर्ग में उत्कृष्ट सिनेमा को पुरस्कृत किया जाता है, जबकि सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन खंड में सिनेमा के अध्ययन और उसके विश्लेषण पर केंद्रित कृतियों को सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का मकसद है बेहतर सिनेमा को प्रोत्साहित करना। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 22 सितंबर को एकता नगर गुजरात में प्रदान किए जाएंगे। इससे पहले केवड़िया के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि ये पुरस्कार साल 2024 के लिए दिए जा रहे हैं। इन पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार आर्टिकल 370 को दिया जा रहा है। इसके निर्देशक हैं आदित्य सुहास जांभले। इसी फिल्म के लिए अभिनेत्री यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जा रहा है। बेहतरीन मनोरंजन देने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए पुरस्कार इस बरस दिया जाएगा नाग अश्विन सिंह रेड्डी की फिल्म कल्कि 2898 AD को।
1: ये 6000 सालों पहले देखा था,
2: वो शक्ति वापस आ गई।
0: किसी नए निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर को दिया जाएगा। इसे बनाया है जाने माने अभिनेता रणदीप हुडा ने। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल फिल्म कैप्टन मिलर को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं अरुण माथेश्वरन। जबकि सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना काथा कादू को दिया जाएगा। इसके निर्देशक हैं नंदकिशोर ईमानी। साल 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार राजकुमार पेरियसामी को दिया जाएगा, उनकी तमिल फिल्म अमरन के लिए। ये फिल्म शिव अरूर की पुस्तक इंडियाज मोस्ट फियरलेस ट्रू स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मिलिट्री हीरोज पर आधारित थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा संयुक्त रूप से अभिनेता ममूटी और कार्तिक आर्यन को। ममूटी को मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम में उनके अभिनय के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जबकि कार्तिक आर्यन को कबीर खान निर्देशित फिल्म चंदू चैंपियन के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार संजय मिश्रा को हिंदी फिल्म भक्षक के लिए मिल रहा है, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार तमिल फिल्म महाराजा के लिए सचना नामिदास को दिया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार अभिनेत्री रूपाश्री वरकाडी के साथ संयुक्त रूप से दिया जाएगा, जिन्होंने कन्नड़ फिल्म मिथ्या के लिए यह पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार दिया जा रहा है अभय जोधपुरकर को मराठी फिल्म घरात गणपति के इस गाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार वाइकोम विजयालक्ष्मी को मलयालम फिल्म ARM के इस गाने के लिए दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ छायाकार का पुरस्कार दिया जा रहा है शहनाज जलाल को तमिल फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए। सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार संयुक्त रूप से तीन लोगों को दिया जा रहा है। ये हैं तेलुगु फिल्म पुष्पा द रूल पार्ट टू के लेखक बांडरेड्डी सुकुमार, मराठी फिल्म स्वर गंधर्व सुधीर फड़के के पटकथा लेखक योगेश देशपांडे और तेलुगु फिल्म लखी बस्कार के लेखक वेंकी अटुलुरी। बेस्ट साउंड डिजाइन का पुरस्कार फिल्म भूल भुलैया 3 के लिए मानस चौधरी को दिया जाएगा और बेस्ट एडिटिंग का पुरस्कार दिया जाएगा तमिल फिल्म अमरन के लिए आर कलाई वन्नन को। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार भी संयुक्त रूप से दिया जा रहा है हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 के गानों के लिए शाश्वत सचदेव को और तमिल फिल्म अमरन के बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए GV प्रकाश कुमार को। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मनोज मुंतशिर को फिल्म मैदान के इस गाने के लिए दिया जाएगा।

71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्मों को भी पुरस्कार दिया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार सुमीरा राय की फिल्म भंगार को दिया जाएगा। रविराज मुर्मू को किसी निर्देशक की पहली नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा उनकी संथाली फिल्म अंगेन के लिए। नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आनंद एल राय को दिया जा रहा है।

0: है उनकी फिल्म स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए। आपको एक बार फिर बता दें कि इस बार पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में न होकर एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दिए जा रहे हैं। ये समारोह 22 सितंबर को आयोजित किया जाएगा, जहां भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का ऐलान हुआ है। अनंत नाग का नाम उन कलाकारों में शामिल है जिन्होंने अपने अभिनय का जलवा न सिर्फ कन्नड़ सिनेमा में दिखाया बल्कि हिंदी में भी वो नजर आए और कई अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अनूठी पहचान बनाई।
1: ಅದಕ್ಕೆ ಬೈತೀನಿ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಅಯೋಗ್ಯ.
0: ಆಪ್ಕೋ ಬತಾ ದೇ ಅನಂತ ನಾಗ್ ಕಾ ಜನ್ಮ 4 ಸಿತಂಬರ್ 1948 ಕೋ ಹುವಾ ಥಾ. ಉನ್ಕಾ ಪೂರಾ ನಾಮ್ ಹೈ ಅನಂತ ನಾಗರ್ ಕಟ್ಟೆ. यूं तो अनंत नाग कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं, पर जानकारी के लिए ये बता देना चाहिए कि वो हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी और अंग्रेजी फिल्मों में नजर आ चुके हैं।
2: सरकार को कुछ होने क्या
1: पता चल गया तुझे? वो कहाँ है?
2: नहीं मालूम कहाँ गया, माटी मिला
1: मालूम नहीं, वापिस आएगा भी या नहीं।
0: उन्होंने अपने लंबे करियर में तकरीबन 200 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें 250 से ज्यादा फिल्में कन्नड़ रही हैं। वैसे अनंत नाग ने अभिनय के सारे आयामों को अपनाया है, चाहे वो रंगमंच हो, सिनेमा हो या टेलीविजन। चूंकि टेलीविजन का जिक्र चला है तो ये बता देना बहुत जरूरी है कि अनंत नाग आर के नारायण की कहानियों पर आधारित दूरदर्शन के बेहद लोकप्रिय सीरियल मालगुड़ी डेज में नजर आए थे और तब उन्हें घर घर पहचान मिली थी। अनंतनाग के लंबे करियर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने अपने किरदारों में बहुत ज्यादा विविधता रखी है। हर तरह के किरदार उन्होंने निभाए हैं। अनंतनाग की शुरुआत कन्नड़ सिनेमा से हुई थी। फिल्म संकल्प में वो बतौर लीड एक्टर नजर आए थे। हाल ही में फिल्म केजीएफ में वो नजर आए और नई पीढ़ी ने उन्हें पहचाना।
3: गरुड़न नोड़दागा रॉकेट कंफर्म आयतु। हियर इज अ मैन हु कम्स फ्रॉम दैट पावरफुल प्लेस। ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೂ ಅವನನ್ನು ಮುಗಿಸಾಕ್ಲಿಲ್ಲ.
0: ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಮೇ ವರಿಷ್ಠ ಪತ್ರಕಾರ ಔರ್ ಲೇಖಕ್ ಆನಂದ್ ಇಂಗ್ಲಾಗಿ ಕಾ ಕಿರ್ದಾರ್ ನಿಭಾಯಾ ಥಾ. ದರಸಲ್ ಯೇ ಕಿರ್ದಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾ ಸೂತ್ರಧಾರ್ ಭೀ ಹೈ. हिंदी में अनंतनाग अंकुर, भूमिका, कालीचरण और जुर्म जैसी फिल्मों में नजर आए हैं। सिनेमा और कला के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने साल 2025 में अनंतनाग को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा था। अनंतनाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने के लिए ढेर सारी बधाइयां। ये था संपादकीय, अब विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा।
4: हम अपने दोस्त और नवाब बुरहान उल मुल्क के रिश्तेदार के नगर पोते मीर रोशन अली।
5: जरा होश में आइए हुजूर, जरा। हाँ
6: सुनिए मेरी बात, सुनिए
0: सिनेमा और साहित्य दो अलग अलग धाराएं हैं, लेकिन दोनों का आपसी रिश्ता बड़ा गहरा है। जब कहानी पर आधारित फिल्में बननी शुरू हुईं, तो इसका आधार साहित्य बना। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दादा साहेब फाल्के ने भारत की जो पहली फीचर फिल्म बनाई थी वो भारतेंदु हरीशचंद्र के नाटक हरीशचंद्र से प्रेरित और उस पर आधारित थी। साहित्यिक कृतियों पर समय समय पर फिल्में बनती रहती हैं, लेकिन ज्यादातर ये कहा जा सकता है कि मुंबई के फिल्मकार साहित्यिक कृतियों पर फिल्में बनाने से बचते हैं। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि मुंबई की अजंता मूवी टोन कंपनी ने सन 1933 के आसपास प्रेमचंद को मुंबई आमंत्रित किया था फिल्मों में लिखने के लिए। प्रेमचंद की कहानी पर मोहन भावनानी ने फिल्म बनाई मिल मजदूर।

निर्देशक ने मूल कहानी में थोड़े बदलाव किए जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आए। इस फिल्म में मजदूरों की क्रांति की बात की गई थी, कराची में कोई घटना हो गई और फिर फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सन 1934 में प्रेमचंद की कृतियों नवजीवन और सेवा सदन पर फिल्में बनी और ये फ्लॉप हो गईं। सन 1941 में भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा पर केदार शर्मा ने इसी नाम से एक फिल्म बनाई, ये फिल्म कामयाब रही। इसके बाद सन 1964 में केदार शर्मा ने इस फिल्म को दोबारा बनाया। इस बार फिल्म में रोशन का संगीत था। इस फिल्म को एक उत्कृष्ट कृति पर बनी एक उत्कृष्ट फिल्म के रूप में याद किया जाता है।

0: सन 1960 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी पर बनी फिल्म उसने कहा था। निर्देशक थे मोनी भट्टाचार्य, कलाकार थे सुनील दत्त और नंदा।
1: चला है तेरा कमली, कमली बड़ा प्यारा नाम है। मेरा नाम नंदू है। अच्छा नाम है ना?
2: और भाड़ा पत्रा दें?
3: तू इधर रोज आती है?
1: हाँ।
3: कलाना मैं तुझे बड़े बड़े अमरूद दूंगा।
1: अच्छा मैं जाऊँ? बड़ी देर हो गई है, मामा बिगड़ेंगे।
3: संभल के जाना। कमली गर्लफ्रेंड
1: क्या
3: तेरी कुमाई हो गई?
0: आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास धर्मपुत्र पर बीआर चोपड़ा ने फिल्म बनाई। सन 1961 में आई इस फिल्म धर्मपुत्र के निर्देशक थे यश चोपड़ा, कलाकार थे माला सिन्हा और शशि कपूर और इस फिल्म ने 9वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था।

मुंशी प्रेमचंद भले ही सिनेमा से निराश होकर लौट गए, लेकिन उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1963 में त्रिलोक जेटली लेकर आए फिल्म गोदान, जिसमें संगीत पंडित रविशंकर का था।

0: सन 1966 में ऋषिकेश मुखर्जी लेकर आए फिल्म गबन, फणीश्वरनाथ रेणु की मशहूर कहानी मारे गए गुलफाम पर फिल्म तीसरी कसम बनी। इसे प्रोड्यूस किया जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने और इसके निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य, कलाकार थे राज कपूर और वहीदा रहमान। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही कामयाब न रही हो लेकिन 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
1: इस बात का गुस्सा तो नहीं कीजिएगा।
2: बोलो।
1: बात यह है, मेले में चोर पाकेटमार बहुत आते हैं।
2: सो तो आते हैं फिर?
1: और देखिए मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, 1600 रुपया है, आप संभाल के रख लीजिए। तो
2: अगर मैं मार लूँ तो?
0: फिल्मों के लिए कई कहानियां लिख चुके और कई फिल्में बना चुके राजेंद्र सिंह बेदी की कृति एक चादर मैली सी पर बनी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। प्रेमचंद की कहानी पर सत्यजीत रे ने अपनी हिंदी फिल्म बनाई शतरंज के खिलाड़ी। ये फिल्म साल 1977 में आई थी।
3: गजब हो गया।
1: क्या हो?
3: आज वो घर पर ही है, दीवान खाने में बैठे खेल रहे हैं।
1: खेल रहे
3: शतरंज मिर्जा साहब के साथ? इससे पहले कभी घर पर तो नहीं खेली। अल्लाह मेरा तो जी होला जाता है, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया?
1: तो माओ जान शतरंज खेल रहे हैं,
3: कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो?
1: हो ही नहीं सकती, जब खुली बिसात सामने हो तो सिवाय मोहरों के और कुछ दिखाई नहीं देता।
3: अरे हाँ, ये तो वो भी कह रहे थे।
0: दरअसल हिंदी की साहित्यिक कृतियों पर सफल फिल्म न बनने के कई कारण हैं। सिनेमा का अपना व्याकरण, अपना ढांचा है और सिनेमा एक पेशेवर इलाका है। जाहिर है कि फिल्में बनाने में पैसे लगते हैं और फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए साहित्यिक कृतियों में बदलाव किए जाते हैं जो

0: साहित्यकार को मंजूर नहीं होते। फिर भी दुनिया भर में साहित्यिक कृतियों पर अच्छी फिल्में बनाने का सिलसिला जारी रहा है। राजेंद्र यादव के उपन्यास सारा आकाश पर बासु चटर्जी ने 1969 में फिल्म बनाई थी। मनु भंडारी की कहानी यही सच है पर उन्होंने बनाई रजनीगंधा। साल था 1974। ईश्वर की लंबी कहानी आगामी अतीत पर गुलजार ने बनाई मौसम। 1975 में कमलेश्वर के उपन्यास काली आंधी पर बनी फिल्म आंधी।
1: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है।
0: इन दिनों सिनेमा किताबों को अपना तो रहा है, ये किताबें अंग्रेजी की होती हैं या अन्य भाषाओं की और उन पर पेशेवर फिल्में बनाई जाती हैं, जैसे थ्री इडियट्स बनी थी चेतन भगत के उपन्यास पर। हिंदी कृतियों पर अच्छे सिनेमा का इंतजार दर्शकों को हमेशा रहता है। विशेष रूपक हिंदी साहित्य और सिनेमा, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं गायिका आशा भोसले की एक अनमोल रिकॉर्डिंग। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को सांगली में हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1943 में फिल्म माजाबाड़ के एक गाने के जरिए शुरू किया था। संगीत दत्ता दावजेकर का था। हिंदी में उनका पहला गीत था फिल्म चुनरिया के लिए। संगीतकार थे हंस राज बहल। आशा भोसले ने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर से अलग अपनी अनूठी छवि बनाई और हर तरह के गीत गाए।

सात बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। दो बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिल्म उमराव जान के लिए

0: फिल्म इजाजत के लिए। साल 2000 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो सुनते हैं आशा भोसले की ये अनमोल रिकॉर्डिंग।
1: आकाशवाणी एक ऐसा नाम है जो बचपन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जब छोटे थे हम लोग और जब रेडियो चालू हुआ था, वो जमाना अंग्रेजों का था और उस समय छोटे छोटे रेडियो सबके घर में होते थे। रिकॉर्ड तो कम होते थे, बहुत बड़े लोगों के पास होते, लेकिन शाम होती थी और हम कुछ भी काम हो छोड़ के, दौड़ना हो सब छोड़ के जाके गाना सुनते थे। और हेमंत कुमार, जगमोहन, पंकज मलिक, नूरजहान, ये तो लोग याद हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं तब से हेमंत जी के बिल्कुल जबरदस्त फैन, के मेरे बेटे का नाम भी हेमंत रखा मैंने। उनका गाना बताती हूँ आपको, बहुत चलता था उस वक्त। आंचल से क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार, ये गाना तब मैं सुना करती थी और मैं बिल्कुल उनके प्यार में थी, छोटी सी थी प्यार में, कि कभी हेमंत कुमार जी का आवाज मैं सुनती हूँ। ये आकाशवाणी नहीं होती तो कभी दुनिया को पता नहीं लगता कि कौन सिंगर अच्छा है, कौन सिंगर बढ़िया है और किसके गाने अच्छे हैं, कौन म्यूजिक डायरेक्टर है, मतलब म्यूजिक किसी को पता ही नहीं लगता। ये पूरा काम जो है हमारी आकाशवाणी ने चालू किया, उस आकाशवाणी पे गाने आते थे, उससे लोगों को पता लगता था कि ये सिंगर बढ़िया है या कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे सब, या सिर्फ प्लेबैक सिंगर ही नहीं, क्लासिकल सिंगर, उनके शो होते थे यहाँ पर, एक एक घंटा रात को वो लोग गाते थे, बड़े गुलाम अली हो, आमिर खान साहब हो, और ये सब गाते थे और लोग सुनते थे। तो ये आकाशवाणी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मेरा पहला जो कदम था गाने की तरफ जाने का, वो रेडियो में हुआ। रेडियो में मुझे बुलाया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जाओ, पास हो गई तो घर आना, नहीं तो आना ही नहीं घर। मैंने जाके अपने पिताजी के गाने गाए, वो गाने क्लासिकल ढंग के गाने, तो तब दिनकर अमेम्बल करके उनके स्टेशन डायरेक्टर थे, वो आए, उन्होंने गाना सुना और कहा, अरे ये दिना

0: की लड़की है, ज्यादा सुना ही नहीं, मेरे सर पे हाथ रखा और कहा इस महीने में वो शो देते हैं ना सुबह 7 बजे आके गाओ, दोपहर को 2 बजे गाओ, रात को कुछ 4 बजे गाओ, ऐसे शो दे दिए। और मैं कांपते कांपते घर गई कि मैं कहीं गाऊंगी कैसे, छोटी थी। और रेडियो, और रेडियो का जो सब लाइट लगता था लाल लाइट के, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई मतलब लाइव, तो वो लाइट देखते ही तो पसीने पसीने हो जाता इंसान। लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, यहाँ तक लाना था, पिताजी का आशीर्वाद, मंगेश शिव का आशीर्वाद है कि आज मैं उसी आकाशवाणी में बैठी हूँ। तब मैं 14-15 की थी, अभी भी मैं गा रही हूँ, स्टेज पे जाती हूँ, 3 घंटे खड़े होकर गाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, अब ऐसा सीधा सीधा रफी साहब गा रहे थे, तो मैंने बोला ऐसे नहीं, अगर ऐसे गए तो इशारों इशारों में दिल लेने, इशारों इशारों हरकत दे दे के उसको ऊपर ले जाना। तो ये हमने काम किया। मैं जब गाना सुनती हूँ तो वो वक्त वो सामने रिकॉर्डिंग थिएटर सब आ जाता है, तो मुझे जब आप कोई पूछता है कि आपको वो वक्त याद आता है तो आपको कौन म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है, ऐसे अगर देखा जाए तो मुझे पहला म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है मदन मोहन जी के, जिसको लैंग्वेज की तमीज, उर्दू आना, उर्दू जिसको आता हो वो बोल भी अच्छे लेते हैं, फिर वो ऐसे आदमी को साथ में रखते जिसको बहुत अच्छी उर्दू हो, साहिर साहब हुए या राजेंद्र कृष्ण, राजा मेहंदी अली, मजरू साहब, बहुत अच्छे अच्छे लोग साथ में रहते थे, तो उनके गाने का स्टाइल, सिखाने का स्टाइल, और वो उस वक्त के लोग इतने अच्छे थे। आपको बताऊं, मैं जाती थी बेटे गाना गाओ, ये ऐसा होता था बेटे खाना खा के फिर गाना गाओ, किस तरह म्यूजिक डायरेक्टर थे, दीदी को भी बेटे बुलाते थे, बेटे गाना गाओ, तो ऐसे इतने बड़े नहीं थे हमसे, बड़े तो थे उम्र में लेकिन इतने बड़े नहीं थे, लेकिन वो बेटे बुलाते थे। जब पहला गाना गाया था तो डर डर के गाया था, बच्चे का गाना था पहला रिकॉर्डिंग, और बड़े बड़े थिएटर जो जहाँ शूटिंग होता है उनमें गाना रिकॉर्ड होता था। बॉम्बे में आने के बाद भी गाने वैसे ही रिकॉर्ड होते थे, बड़ा स्टूडियो है वहाँ, सेट लगा हुआ है और उस सेट में खड़े होके गाना गाना, कभी पेड़ है, कभी मंदिर है, कभी तालाब बना हुआ है छोटा सा, गंदा सा छोटा सा तालाब को बड़ा दिखाते थे, तो ऐसे ऐसी जगह खड़े होके गाना गाते थे, पूरी रात गाना चलता था, पूरे दिन गाना चलता था। एक ही मन में था कि जो इंसान मेहनत करेगा उसी को भगवान यश भी देगा। असल में देखा जाए तो पिताजी जब गुजर गए 42, उसके बाद टाइम थोड़ा खराब आया, काम करने की आदत थी, शायद मेरे अंदर ये है वो कि काम करते रहो, सफाई होनी चाहिए, वर्गो हूँ, वर्गो को बहुत सफाई की जरूरत होती है 8 सितंबर। तो क्या होता है कि काम करना मीन्स पूरा जोर लगा के वो काम करना। आशा भोसले जब बोरेली में रहती थी, दादर में रहती थी, और आशा भोसले में कोई फर्क नहीं आया, ना खाने पीने में, ना पहनने में, ना ही बातचीत में, ना ही गाने में, गाना अच्छा करने की कोशिश की। संसार बढ़ता गया, बच्चे बड़े हो गए तो घर चेंज करने पड़े, वरना वही रहती
1: जी।
0: मुझे इन चीजों से कोई प्यार नहीं है, मैं मटेरियल चीजों से बहुत दूर हूँ। मुझे चाहिए, इंसान को एक रूम की जरूरत होती है जिसमें एक टीवी हो, एक रेडियो हो, एक बाथरूम हो, पलंग हो, इंसान को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक खाना बनाने का घर हो। तो मैं ऐसी औरत हूँ, मुझे जहाँ आप रखे, महलों में रखिए चाहे कहीं पर, मैं सब जगह पे खुश रहती, क्योंकि इंसान जो सपनों पे भी जीता है उसको कोई भी जगह चल। मैं सपने में जीने वाली औरत, मैं हर में बैठी हूँ, मैं अपने सपनों में रहती हूँ, अपने ख्वाब में रहती हूँ, कोई भी ख्वाब मेरे को चलता है उसी में मैं बहती जाती हूँ, कैसे निकल गया दिन मुझे पता नहीं लगता, फिर मैं खुद ही सोचती और भासती हूँ पागल नहीं हूँ मैं, कितनी देर

0: कोहली का असली नाम था अवतार कोहली। उनका जन्म 4 जून 1949 को पेशावर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की राज कपूर के साथ बतौर सहायक। कई बरस तक राज कपूर के साथ उन्होंने फिल्म निर्माण के गुर सीखे। सनी देओल की फिल्म बेताब में वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। फिल्म अर्जुन में भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। इसके बाद उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा और बनाई धर्मेंद्र अभिनीत फिल्म कोहराम। सन 1991 में उन्होंने फिल्म फूल और कांटे का निर्देशन किया। इस फिल्म के जरिए अभिनेता अजय देवगन ने रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रखा।
1: मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है।
0: इसके बाद उन्होंने फिल्म सुहाग बनाई, जिसके सितारे थे अजय देवगन, अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर और नगमा।
1: गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा।
0: इसके बाद आई हकीकत, जो अजय देवगन और तब्बू के अभिनय से सजी थी। उनकी अगली फिल्म थी अनाड़ी नंबर 1, जिसमें गोविंदा डबल रोल में थे। इसके बाद कुकू कोहली ने फिल्म जुल्मी बनाई, जिसमें अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने अभिनय किया था। इसके बाद उनकी फिल्म आई ये दिल आशिकाना। संगीतकार नदीम श्रवण ने इस फिल्म से संगीत जगत में वापसी की थी। कुकू कोहली की आखिरी फिल्म थी वो तेरा नाम था, जिसमें अर्जुन बाजवा और कंची कौल ने अभिनय किया था। विनम्र नमन। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का सितंबर महीने का अंक। शोध आलेख स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया।

कहानी शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जाने माने निर्देशक कुकू कोहली को। कुकू कोहली का 25 अगस्त को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 77 साल के थे। कुकू

0: अब हमारे पास वक्त नहीं है जयंत जी कि आज हम विविधा में कुछ और सुनवाएं, समय की सीमा है, हम अपने श्रोताओं से अब अनुमति ले लें।
1: बिल्कुल श्रोताओं, अगले संस्करण तक हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
0: और मनीषा जैन का नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्यप्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय संकल्प समारोह आज देश भर में 1067 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत युवा एकजुट हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुँचाया जा रहा है। इस अवसर पर पंजाब में केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है।
2: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास

0: तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
1: पंजाब पुलिस ने इस सप्ताह सीमा पार से हीरोइन तस्करी के खिलाफ विभिन्न अभियानों में 101 किलोग्राम हीरोइन जब्त की है। ये कार्रवाई अमृतसर और फरीदकोट के सीमावर्ती जिलों में की गई। आज सुबह मुंबई के कालाचौकी इलाके में गणेश उत्सव पंडाल के पास पीने के पानी के अस्थायी स्टॉल पर बिजली का करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। घायलों में 1 की हालत गंभीर है जबकि 3 अन्य की हालत स्थिर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई के ही कोस्टल रोड पर आज सुबह एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 1 व्यक्ति घायल हो गया। कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जा रही थी। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को साइबर हमलों और अन्य बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ देश भारत को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि चिप डिजाइन और विनिर्माण में सक्षम देश के रूप में उभरने के कारण भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा। बांग्लादेश के ढाका में आज कई देसी बम फटे। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में 1 रिक्शा चालक घायल हो गया है। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में 3 बसों में आग लगा दी गई। इन घटनाओं के मद्देनजर ढाका पुलिस ने पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी है तथा पुलिस की गश्त और तेज कर दी गई है। जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेनिल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद व्यक्तिगत रजत पदक जीता। इससे पहले भारत की एला वेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का रजत पदक जीतकर देश को पहला पदक दिलाया। एशियाई खेलों के महिला T20 क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 196 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई हैं। ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 12वें ओवर में 7 विकेट पर 58 रन बना लिए थे। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय तैराक ऋषभ दास ने पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। फाइनल आज दोपहर खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली केंद्र থেকে হিন্দি সংবাদ রিলে করে শোনানো হলো। আকাশবাণী কৈলাস সহজ ফিরে এসছি শ্রোতা বন্ধুদের পছন্দের লাইভ ফোন ইন অনুষ্ঠান হ্যালো অনুরোধে। ফোন করেছিলেন চণ্ডীপুর থেকে আশুতোষ দেবনাথ। আপনার পছন্দের গান হেনা ছবির গান পাঠাচ্ছি, এবারে শুনে দেখুন।

0: সমীর চক্রবর্তীর কণ্ঠে শুনলেন নজরুল গীতি। নজরুল গীতির অনুষ্ঠান আজ এই পর্যন্তই। আকাশবাণী কৈলাসহর, এবারে আকাশবাণীর দিল্লি কেন্দ্র থেকে হিন্দি এবং ইংরেজি সংবাদ রিলে করে শোনানো।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে মুকেশ কুমার। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस दो दिन के सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
2: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूलन जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधान प्रदर्शित किए जाएंगे। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा भाग ले रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। ईरान ने कहा है कि हुरमुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक उनकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमरीका अपनी प्रतिबद्धताएं लागू नहीं करता। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कलीबाफ ने ये टिप्पणी की है। एक रिपोर्ट।
3: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुरमुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। हुरमुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद। वहीं हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए
1: जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेनिल वेलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। इससे पहले भारत की एला वेनिल वेलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को महिलाओं की 10 मीटर

0: राइफल टीम स्पर्धा का पहला रजत पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता, जापान को कांस्य पदक मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस सराहनीय उपलब्धि के साथ भारत का एशियाई खेलों में पदकों का खाता खुल गया है। देश को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। डॉक्टर मांडविया ने भारतीय दल के लिए भविष्य में गौरवशाली क्षणों की कामना की। भारत एशियाई खेलों के महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से हराया। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। भारत के 196 रन के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 16वें ओवर में 81 रन पर सिमट गई। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई हैं। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सुजी बेट्स के 4758 रनों के रिकॉर्ड के पीछे छोड़ा है। फाइनल मैच मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में भी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. President Draupadi Murmu will address valedictory session of the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening. The two-day conference has been organized by the National Green Tribunal, NGT. During the session in the midst of Pawan Manohar Lal, Supreme Court Judge Justice B.V. Nagaratna, Chairperson of the NGT Justice Prakash Srivastav, and Solicitor General of India Tushar Mehta are likely to be present. The Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics provided a platform for the exchange of judicial approaches, scientific knowledge, environmental governance, practices and institutional experiences across jurisdictions. Rashtriya Sankalp Samaroh has been organized at various locations in the country to eradicate drug abuse among youth as part of Nasha Mukt Yuva Abhiyan. The Minister of Youth Affairs and Sports has said that Rashtriya Sankalp Samaroh has been organized across 1,067 locations in the country. The Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat 100 Weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan is witnessing nationwide youth mobilization. The Samaroh aims to bring the campaign's message directly to young people through Nasha Mukt Pledge, signature campaign, thematic street plays, slogan writing and youth-led discussions. The Indian Air Force is conducting bilateral air exercise Veer Guardian 2026 with the Japan Air Self-Defense Force to bolster defense collaboration at the Air Force Station in Jodhpur. We have a report.
2: The 14-day exercise, which will be concluded on Tuesday, focuses on advanced operational missions and extensive professional interactions between the two air forces. The IAF is participating with a diverse mix of frontline combat aircraft, including the indigenous light combat aircraft Tejas, Sukhoi 30 MKI and Rafale, while Japan is participating with F-2A fighter aircraft. Exercise Veer Guardian 2026 reflects the deepening strategic partnership between India and Japan by enhancing tactical proficiency and aerospace operational synergy. The exercise also reaffirms the long-standing bonds of friendship and strategic cooperation between the two countries. Payal Sharma, Akashvani News, Delhi.
1: In Mumbai, two people were killed and four others injured after an electric shock at a temporary drinking water stall near Ganesh Utsav Mandal and Kala Choki early this morning. The injured was taken to a nearby hospital. One of the injured is reported to be in critical condition, while three others are reported to be stable. In another incident in the state, three people were killed and one injured after a BMW car met with an accident on Mumbai's coastal road early this morning. The injured person has been admitted to hospital. Tensions have escalated in West Asia after Yemen's Houthi fighters launched missiles.

मन्नाडे की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे। श्री 420 फिल्म का नाम शैलेंद्र ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज। इसे सुनना चाहा था गणेशपुर गंज डूंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले, शेख शमा परवीन, अलकमर बेगम, अफसाना बेगम, महजवी शेख और मिर्जा नसरीन बेगम ने। साथ ही ताज मंजिल लकड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी पवार और मोहम्मद हसनैन ने इसे सुना चाहा था। बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनीता, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका ने। ग्राम छह गांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना, भूपेंद्र, झवर।

अनुश्री आरोही और कान्हा वागेने से सुनना चाहा था। साथ ही सेक्टर 9 पंचकुला से रमेश गुलाटी, स्नेह हिमांशु और देवांशु गुलाटी ने से सुनना चाहा था। और वरुण जवुलका से महेंद्र सरकटे, विजया और मिलिंद ने इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी।

साथ ही नरोत्तम गौड़, लेक सिटी, उदयपुर राजस्थान से इसी गीत की फरमाइश लिख भेजी। हटौद बाजार लाहौद से कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर और राजकुमारी पटेल ने। गुजरात मादनगर से राहुल ओझा, प्रतीक ने इसी गीत की, और साथ ही दीप्ति, उन्होंने इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी। मुक्तसर पंजाब से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत, निशु और भूपेंद्र, और शीतलानगर दुर्ग से शिव चंद्राकर, भगवान चंद्राकर, अर्पा, पैरी, पार्वती और राधा ने इसी गीत को सुनना चाहा था।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। पगला कहीं का फिल्म का नाम हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और इसे सुनने के लिए हमें पत्र मिले छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो के।

लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये गीत राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, रविंद्र जैन का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहा था मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गुगलानी, मीनाक्षी तिवारी और नरेंद्र

लता मंगेशकर और सखियों की आवाजों में ये गीत राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, रविंद्र जैन का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहा था मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप गुगलानी, मीनाक्षी तिवारी और नरेंद्र तनेजा ने। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या सुच्चा सिंह पाठक ने। रिधोरा से बाबूलाल बोराखेड़े, गोकुला और मंगेश बोराखड़े ने। साथ ही इस गीत को सुनना चाहा था बाजार चौक पुलगांव से अब्दुल कलाम और नाजिमा अंजुम ने। इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक और मयंक ने, साथ ही चेतन नाहटा ने। और इसी गीत को सुनना चाहा था जसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश निवृत्ति और संजय चौहान ने।

0: यात्रा मोहाली से जयवीर सिंह ठाकुर ने और साथ ही शीतल पार्क राजकोट से कासिम संगवाणी, इकबाल और अनवर ने, शहर अंबिका चौक भीड़ से जनार्दन वेद पाठक, भाग्यश्री चीयू माऊ बिट्टू और आरवी ने, मोलनपुर मंडी से कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, अंश बिट्टू और दीपक जैन ने, चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद ने इस गीत को सुनना चाहा था और साथ ही साथ जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन और महेंद्र जैन ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मनचाहे गीत यहीं संपन्न करते हैं।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत। यह है विविध भारती।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवाते हैं नाटक स्वप्न वासव दत्ता का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में धरती फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन की तर्ज थी, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और इसे सुनना चाहा था कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा, टी डी

0: ये हमारे राजगृह का प्रमदवन कैसा है?
1: अद्भुत है, सुंदर है राजकुमारी।
2: राजकुमारी पद्मावती, देखिए देखिए मेरे अंजुरी की ये शेफालिका फूल रक्त संख्या के टुकड़ों से चमक रहे हैं।
0: हाँ चीटी, अद्भुत है ये फूल, है ना अवंती के?
1: बहुत ही सुंदर है।
0: और तोड़ू?
1: नहीं नहीं, और न तोड़ू। क्यों रोकती है?
0: जब आर्यपुत्र यहाँ प्रमदवन में आकर इन फूलों का विस्तार देखेंगे तब मैं उसे अपना सम्मान मानूंगी।
1: सखी, आर्यपुत्र तुम्हें बहुत प्रिय हैं।
0: नहीं जानती अवंती के, लेकिन आर्यपुत्र के बिना मैं अत्यंत उत्कंठित हो जाती हूँ। बस मुझे एक संदेह है।
1: क्या?
0: जैसे आर्यपुत्र मेरे हैं अवंती के, क्या वैसे ही वासुदत्ता के भी थे?
1: उससे भी बढ़कर।
0: तुमने कैसे जाना?
1: हाँ, यदि उनका प्रेम कम होता तो वासवदत्ता अपने आत्मियों परिजनों को यूं सहज छोड़ पाती?
0: हाँ संभव है।
2: राजकुमारी, आप महाराज उदय से कहती क्यों नहीं कि आप भी वीणा सीखेंगे?
0: मैंने कहा था जीती।
1: फिर क्या कहा उन्होंने?
0: कुछ नहीं, केवल दीर्घ निश्वास छोड़ वे चुप रहे।
1: ओह,
0: उस समय शायद आर्या वासुदत्ता के गुणों का स्मरण हो आया हो उन्हें।
1: हाय आर्यपुत्र, ये कैसी व्यथा।
3: गिरे हुए बंधु जीव कुसुमों और अविरल पवन से ये प्रमदवन कैसा रमणीय हो रहा है, है? अरे इधर नहीं, इधर नहीं, उधर चले श्रीमान वत्सराज।
4: मैं आ गया मित्र वसंतक। मैंने उज्जैनी में राज कन्या वासवदत्ता को जब देखा तब मेरी अवस्था अकथनीय हो गई थी। काम के पांचों बाण मुझ पर पड़े, हृदय आज भी उस चोट से व्यथित है। और मित्र, अब प्रहार पर प्रहार हुआ है। यदि मदन शरों की संख्या 5 ही है तो ये छठा कहां से आ गया?
3: देवी पद्मावती, देवी पद्मावती कहां गई? देवी पद्मावती लता मंडप में तो नहीं गई? व्याघ्र चर्म से दिख

0: वाले असन कुसुमों से ढके पर्वत तिलक शिलापट पर तो नहीं जा बैठी, तीव्र गंध वाले सप्त छन वन में तो नहीं गई? अरे अरे कहीं हिरणों और पक्षियों की अनुकृति से चित्रित दारू पर्वत पर तो नहीं चली गई देवी?
1: देखिए राजकुमारी पद्मावती, सामने से महाराज उदयन चले आ रहे हैं।
2: हाँ हाँ वही तो है चेटी अवंती की, तुम पर पुरुष का दर्शन नहीं करती ना, तुम्हारी इसी चरित्र रक्षा के कारण मैं आर्य पुत्र का दर्शन त्याग रही हूँ। वे हमें नहीं देखे इसलिए इस माधवी लता मंडप में चले।
1: आओ यही करें राजकुमारी।
0: अरे लगता है श्रीमती पद्मावती यहाँ आकर लौट गई।
3: कैसे जाना वसंतक?
0: अरे इस शैफाली का गुच्छ को देखे जिसके कि फूल तोड़ लिए गए।
3: वसंतक इसी शिलातल पर बैठ हम पद्मावती की प्रतीक्षा करें।
0: बहुत अच्छा प्रभु बहुत अच्छा, पर शरद काल की ये तीखी धूप बड़ी असह्य है प्रभु। क्यों ना हम इस माधवी लता मंडप में चले।
3: अच्छा आओ चलो।
1: ये वसंतक मूर्ता में सारा काम चौपट कर देगा, भला आप क्या करें चेटी? कहीं तो इस लता से लटके मधु छत्ते को हिलाकर आर्य पुत्र को मार्ग विरत कर दूं।
2: हाँ हाँ ऐसे ही करो।
0: अरे बचाओ बचाओ इन मधुकरों से, इन भ्रमों से मेरी रक्षा करो। अरे श्रीमान आप वहीं रुके।
3: अरे अरे अरे मधुकरों को भया तो न करो वसंतक, हमारी पच्चापों से उद्विग्न हो, वे भी हमारी तरह अपनी प्रियाओं से विरहित हो जाएंगे। अतः यही बैठो।
0: जी
1: राजकुमारी पद्मावती, हम तो यहाँ बंदी हो गए।
2: लेकिन प्रसन्नता है सामने ही आर्य पुत्र बैठे हैं।
4: आर्य पुत्र स्वस्थ हैं, प्रसन्न है, भाग्य की कृपा।
1: अरे आर्य अवंतिका के आंखों में ये आंसू कैसे?
4: नहीं नहीं कुछ नहीं चेटी, आंखों में काश फूलों के धूलिकण गिर पड़े इससे आंखों में आंसू आ गए।
5: स्वामी वत्सराज उदयन, ये प्रमद वन एकदम सूना है, इसी से कुछ पूछना चाहता हूं।
3: पूछो वसंतक।
5: आपको प्रियतर कौन, पहले की वासवदत्ता या आज की पद्मावती?
3: क्यों मुझे महासंकट में डालते हो वसंतक? मैं कुछ नहीं कह सकता।
5: मैं सौगंध खाकर कहता हूं मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, अब तो सच सच बता दें प्रभु।
3: रूपशील माधुर्य के कारण पद्मावती मुझे प्रिय है, लेकिन वासवदत्ता में मेरी आसक्ति के कारण वो मन को हार नहीं पाती। अब तुम कहो तुम्हें कौन प्रिय है?
5: मेरे लिए तो दोनों समान हैं प्रभु। देवी वासवदत्ता आदरणीय थी और देवी पद्मावती तरुणी दर्शनीय क्रोध अहंकार रहित मृदुभाषिणी और उदार हैं। हाँ उनमें एक गुण और अधिक है प्रभु, वे मीठे मीठे पकवान लिए पूछती रहती हैं आर्य वसंतक कहाँ गए, आर्य वसंतक कहाँ हैं।
3: मित्र वसंतक मैं ये सारी बातें वासवदत्ता से कह दूंगा।
5: अब देवी वासवदत्ता कहाँ हैं, वे तो कभी की परलोक सिधारी।
3: हाँ मित्र तुमने अपने इस परिहास से मेरा मन विक्षिप्त कर दिया, अपनी पुरानी आदत से ही ऐसी बात मुंह से निकल पड़ी। वसंतक तुम मेरी दशा नहीं जानते, वासवदत्ता का अमूल्य अनुराग भुलाया नहीं जा सकता, उसकी याद से मेरा परिताप नित नया होता जाता है।
5: अरे अरे आपका मुख आंसुओं से भीग गया, चलो मुंह धोने के लिए पानी लाऊं।
2: अवंती के आर्य का मुख आंसुओं से जाने क्यों भीग गया? सुनो यही समय है हम यहाँ से निकल चले।
4: नहीं राजकुमारी व्यथित पति को यूं छोड़ जाना उचित नहीं, आप यहीं ठहरे मैं ही यहाँ से चली जा

0: सकती हूँ।
1: हाँ यही उचित है, देवी पद्मावती हमारी के पास चले।
0: सच में जाऊं?
2: हाँ जाओ पद्मावती जाओ, वे दुखी हैं उन्हें सांत्वना दो।
3: आर्य की जय हो।
4: पद्मावती बैठो, जल्दी आए वसंत।
5: जी
4: काश रज आंखों में पड़ जाने से मुंह आंसुओं से भीग गया।
3: अथवा किसी दुख से?
4: नहीं पद्मावती नहीं।
6: महाराज उदयन, अपराह्न वेला हो रही है, अब आप पधारें और अपने सुहृदजनों को दर्शन दें।
4: ठीक कहा वसंतक, आओ चलें।

0: मधुरिके, ओ मधुरिके, जल्दी इधर आ।
1: आई।
0: मधुरिका, राजकुमारी पद्मावती सिर पीड़ा से व्याकुल है। तू जा और आर्या अवंतिका को बुला ला।
1: राजकुमारी कहाँ है?
0: उद्यान वाले समुद्र गृह में। मैं आर्य वसंता को खोजती हूँ, वे भी स्वामी को ये संदेश दे दे।

0: पद्मावती से विवाह के बाद भी मुझे वासव दत्ता की याद सताती है। वासव दत्ता मेरी प्रिया, मेरी शिष्या, जिसके वीणा स्वरों को सुन कैसा विमोहित हो जाता था मैं। क्यों हुआ ऐसा वासव दत्ता?
1: कुमारी पद्मावती सिर पीड़ा से व्याकुल है और उनके शैया समुद्र ग्रह में है।
2: अरे चलो वसंतक, समुद्र ग्रह की राह दिखाओ मुझे।
1: जी, ये रहा समुद्र ग्रह, आर्य पधारे।
2: पहले तुम चलो वसंतक।
1: जी। ठहरिए ठहरिए श्रीमान, अरे इस भूमि पर तो सर्प लेट रहा है।
2: मूर्ख, ये पुष्पमाला है।
1: पुष्पमाला?
2: सर्प नहीं, ये माला तोरण द्वार पर लटक रही थी और अब भूमि पर गिरी, वायु झोंकों से हिल रही है।
1: हाँ, ये तो सर्प नहीं है। देव, यहां शैया है, दीपक जल रहा है, एकदम शांति है। लगता है राजकुमारी यहां आई और चली गई।
2: नहीं वसंतक, देवी यहां नहीं आई। देखो, ये शैया वैसी ही है, सिकुड़न तक नहीं, औषध लेपन से सिरहाना भी मैला नहीं हुआ, न मन बहलाव के लिए यहां कोई शोभा रची गई।
1: तो देव, उनके यहां आने की प्रतीक्षा करें?
2: हां, यही ठीक है। मित्र वसंतक
1: जी,
2: मुझे नींद आ रही है, कोई कथा कह।
1: जी ठीक है, तो देव सैया पर लेट हुंकारे भरते जाए और सुने। हाँ तो राजन, उज्जैनी नामक एक रमणीय नगरी है।
2: क्या कहा, उज्जैनी?
1: ये कथा पसंद नहीं तो दूसरी कहूं।
2: है। लेकिन इसके साथ मुझे अवंतीनाथ की कन्या वासव दत्ता की याद आ रही है, जिसने उज्जैनी से प्रस्थान के समय बंधुजनों का स्मरण कर अपने आंसू मेरे हृदय देश पर बरसाए थे। वासव दत्ता, वासव दत्ता।
1: राजन, दूसरी कथा है, ब्रह्मदत्त नाम का नगर है।
2: मूर्ख, ब्रह्मदत्त राजा का नाम था।
1: हाँ।
2: नगर कांपिल्य था।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहले इसे याद कर लूं मैं। राजन, राजा ब्रह्मदत्त था नगर कांपिल्य, राजा ब्रह्मदत्त था नगर कांपिल्य, कांपिल्य राजा था नगर ब्रह्मदत्त, नगर कांपिल्य। अरे देव को तो नींद आ गई, चलो अच्छा हुआ, बड़ी सर्दी है, चलो कुछ ओढ़ने को ही ले आऊं, वरना अपने राम टिर बोल जाएंगे।

निठुर है। ये पद्मावती जो आर्य का विरह दुख दूर करने में सहायक होती, अस्वस्थ हो गई। अरे, यहाँ के सेवक कैसे असावधान हैं? पद्मावती के पास केवल जलता दीप छोड़ चले गए। अच्छा, तो इसी शैया पर पद्मावती सो रही है। चलो उसी के शैया पर बैठो।

0: बिल्कुल ठीक चल रही है, लगता है स्वस्थ हो गई। ये तो आर्यपुत्र है, यहाँ कैसे?
1: प्रिय,
0: अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो आर्य योगेंद्रायण और मेरी दोनों की प्रतिज्ञा निष्फल होगी। वत्स देश की राज्य प्राप्ति का स्वप्न अधूरा रह जाएगा।
1: अवंती राजपुत्री,
0: लगता है आर्यपुत्र स्वप्न में बातें कर रहे हैं। भला है यहाँ कोई नहीं। एक क्षण रुक, इन्हें देख हृदय और दृष्टि को संतुष्ट तो कर लो।
1: प्रिय आशीष,
0: बोल रही हूँ स्वामी, बोल रही हूँ।
1: क्या तुम कुपित हो?
0: नहीं, दुखी हूँ।
1: तो अलंकार क्यों उतार दिए?
0: अलंकार पहनने से भी क्या भला होता?
1: प्रिय
0: आर्य की स्वप्नावस्था है, यहाँ देर से बैठी हूँ, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा?
1: प्रिय
0: चलो, चलने से पहले सोए आर्य पुत्र के इन पहले हाथों को ठीक कर दो।
1: ठहरो वासुदेव, ये क्या? ये मेरा मनोभाव सत्य है या स्वप्न?
2: राजन जाग गए आप?
3: हाँ वसंतक, मित्र एक सुसंवाद।
2: क्या
3: वासव दत्ता जीवित है?
2: हाँ, वासव दत्ता कहाँ, वे तो कभी के परलोक से हार गए।
3: नहीं, मुझे शैया पर सोता देख चली गई।
2: समझा राजन, जब से मैंने उनकी बात कही तभी से आप देवी वासव दत्ता के विषय में सोच रहे थे, इसी से उन्हें स्वप्न में देखा होगा।
3: वसंतक, अगर वो स्वप्न था तो ना जागना ही धन्य होता, यदि ये भ्रम है तो वह सदा बना रहे।
2: समझा राजन समझा, इस राजगृह नगरी में अवंती सुंदरी नामक यक्षिणी रहती है, कहीं वो तो दिखाई नहीं दे गई?
3: नहीं नहीं नहीं, नींद से जाग मैंने उसके मुख को देखा, मुख पर बिखरी लंबी हल्के अंजन रहित नेत्र। देखो मित्र, देखो मेरी इस भुजा को देखो, स्वप्न में ही वासव दत्ता ने जिसे स्पर्श किया वहां भी रोमांच है।
2: राजन व्यर्थ चिंतन छोड़े, आइए चतुर्शाला चलें।
4: चलिए राजन चलिए।

0: वत्सराज उदयन की जय हो।
1: आइए कंचुकी।
2: हमारे महाराज दर्शक ने आपके लिए संदेश दिया है कि आपके शत्रु आरुणी पर आक्रमण के लिए आपके आमात्य रुमणवान बड़ी सेना लेकर उपस्थित हैं। इसी तरह हमारा विजयनी राजदल

0: युद्ध के लिए सन्नद्ध है। आपके शत्रु विभाजित कर दिए गए हैं। आपके गुणों से अनुरक्त आपकी प्रजा आश्वस्त है। प्रयाण के लिए सेना के पृष्ठभाग की रक्षा का प्रबंध कर दिया गया है। शत्रु पराजय के सब करणी उपस्थित हैं। सेना गंगा पार कर चुकी है। वत्सों का देश प्राय आपके हाथों में है महाराज।
1: ये सुसंवाद है कंचुकी। अब मैं भयानक कर्मों में दक्ष उस आरुणी को तैरते गजाश्व और तरंग बाण वाले महासमुद्र में पकड़कर नष्ट कर दूंगा।
2: कौशाम्बी राजमहल के इस सुनहरी तोरण द्वार पर कौन प्रतिहारी नियुक्त है?
3: आर्य, मैं हूँ विजया।
2: विजया, महाराज उदयन से निवेदन कर, अवंती राज महासेन के यहाँ से राभ्य गौत्र कंचुकी और देवी वासा दत्ता की धाय आर्य वसुधारा आए हैं।
3: आर्य कंचुकी, इस संदेश के लिए न ये उपयुक्त स्थान है न समय।
2: क्यों?
3: आज स्वामी के पूर्व प्रासाद में कुल वीणा बजा रहा था,

0: सरस्वती, घोषवती का स्वर, ये तो वासवदत्ता की वीणा घोषवती का स्वर लगता है। ये वीणा कहाँ भाई?
1: बजाने वाले ने कहा, नर्मदा तीर झाड़ियों में पड़ी मिली, स्वामी चाहे ले ले। जैसे ही स्वामी ने उस वीणा को अपने अंक में लिया,
0: घोषवती, घोषवती, मैंने तुम्हें तो पाया, लेकिन वासवदत्ता, वासवदत्ता, वो कहाँ है?
1: आप सोचें, इस समय कैसे निवेदन करूं उनसे?
2: विजया, जा, निवेदन कर। ये संवाद मुझे उसी से संबंधित प्रतीत होता है।
1: जाती हूँ आर्य। स्वामी की जय हो। अवंतीराज महासेन के यहाँ से रैभ गोत्र कंचुकी और महारानी वासवदत्ता की धाय आर्या वसुधारा द्वारे उपस्थित हैं।
3: तो प्रतिहारी, पहले पद्मावती को बुलाओ।
1: जो आज्ञा प्रभु।
4: आदिपुत्र की जय हो। मैंने संवाद सुना, मैं अपने संबंधियों की कुशल वार्ता से प्रसन्न होंगी।
3: हाँ, वासवदत्ता के स्वजन आपके भी स्वजन हैं।
4: आप मेरे समीप बैठे ही उन लोगों से मिलेंगे, मुझे देख क्या वे उदास नहीं होंगे?
3: नहीं पद्मावती, नहीं, बैठो।
1: कंचुकी और धाय द्वार पर खड़े हैं महाराज,
3: उन्हें शीघ्र लिवा लाओ।
5: आर्य पुत्र की जय हो।
1: आर्य पुत्र की जय हो।
3: आर्य रैभ, मैंने जिनके साथ मैत्री कामना की, जो पृथ्वी के राजवंशों के उदयास्त के कारण हैं, वे अवंती राज महासेन सकुशल तो हैं?
6: सकुशल हैं, और आप सबके कुशलार्थी हैं।
3: उनकी मेरे लिए क्या आज्ञा है?
6: महाराज उदयन, शत्रुओं द्वारा अपहृत आपका राज्य सौभाग्य से लौट आया।
3: आर्य रैभ, ये सब महाराज महासेन के प्रभाव का ही परिणाम है। आज भी मैं स्मरण करता हूं, आरंभ में मैं उज्जैनी राज्य की सीमा के समीप उन्हीं की सैन्य से पराजित हुआ। बंदी बना तो उन्हीं महासेन ने मेरा पुत्रवत पालन किया। मैंने उनकी प्रिय कन्या वासवदत्ता का हरण कर लिया, लेकिन मैं उसकी रक्षा नहीं कर सका। उसका मृत्यु संवाद सुनकर भी मेरे प्रति उनका आदर पूर्ववत है। विजय प्राप्त कर पुनः मेरे वत्स राज्य में लौट आने का कारण भी वही है। मात वसुधारा, राजमाता अंगारवती कुशल पूर्वक तो हैं?
4: स्वस्थ ही, आपका कुशल पूछती हैं।
3: सभी कुशल हैं, यहां सब कुशल है मां, केवल केवल वासवदत्ता वो ही नहीं है।
4: राजन, संताप न करें।
6: स्वामी, धैर्य धरे, महासेन कन्या वासवदत्ता मरकर भी अमर है, क्योंकि आप उन्हें आज भी उसी स्नेह से स्मरण करते हैं।
3: वासवदत्ता को मैं कैसे भुला सकता हूँ?
4: राजन, राजमहिषि अंगारवती ने कहा है, वासवदत्ता अब नहीं रही, किंतु मेरे और महासेन के लिए आप पुत्र गोपालक और पालक की भांति ही प्रिय हैं। पहले से ही मनोनीत जामाता ही इसी विचार

0: से आप उज्जैनी लाए गए थे, फिर बिना शिक्षा के बहाने, बिना अग्नि साक्ष्य आपको वासुदत्ता दे दी गई थी, पर शीघ्रतावश आप बिना विवाह क्रिया के वासुदत्ता का हरण कर चले आए थे। तब हमने आपका और वासुदत्ता का चित्र बनवाकर विवाह मंगल संपन्न किया। उसी चित्र फलक को हम आपके पास भेज रहे हैं, जिसे देख आप सुखी हो।
1: देवी अंगारवती ने स्नेहपूर्ण और अनुकूल बात कही। उनका ये कथन 100 राज्यों की प्राप्ति से भी बढ़कर है। अपराधी होते हुए भी हम दोनों के प्रति वे अपना स्नेह नहीं भूली।
2: आर्यपुत्र, मैं चित्र देखना चाहती हूँ।
0: ये देखिए पद्मावती जी।
2: अरे
1: देवी, क्या बात है?
2: आर्यपुत्र, आश्चर्य, देवी वासुदत्ता की इस प्रतिकृति के समान ही कोई यहाँ रहता है।
1: यहाँ?
2: हाँ आर्यपुत्र।
1: तो इसे शीघ्र बुलाएं।
2: लेकिन विवाह पूर्व किसी ब्राह्मण ने उसे अपनी भगिनी बताकर मुझे सौंपा है। ये भी कहा है उसका पति विदेश गया है, वो प्रोषित पति का है, इस कारण पर पुरुष का दर्शन नहीं करती।
1: ओह, अगर वो ब्राह्मण की भगिनी है तो कोई और है। यूं तो रूप स्वामी मिल ही जाता है।
3: स्वामी की जय हो। उज्जैनी से एक ब्राह्मण आया है, कहता है देवी के आश्रय में मैंने अपनी बहन रखी थी, मैं उसे लेने आया हूँ।
1: पद्मावती, क्या ये वही ब्राह्मण तो नहीं?
2: संभव है वही हो।
1: प्रतिहारी, अंतपुर के आचरण का ध्यान रखते हुए बीच में यवनी का डाल ब्राह्मण को शीघ्र उपस्थित करो।
3: जो आज्ञा प्रभु।
1: पद्मावती, आप उस ब्राह्मण भगिनी को ले आए।
2: जी।
4: जय हो, आपकी जय हो।
1: ये स्वर परिचित सा प्रतीत होता है। ब्राह्मण, क्या आपने अपनी बहन को देवी पद्मावती के आश्रय में रखा था?
4: हाँ राजन।
1: तो शीघ्र ले आओ इनकी भगिनी को।
3: आर्य पुत्र की जय हो, धरोहर ये है।
1: धरोहर लौटा दो पद्मावती। वस्तुतः धरोहर साक्षियों के समक्ष लौटाना चाहिए। यहाँ ये रैभ्य और आर्या वसुधारा है, यही साक्षी होंगे।
0: ये क्या, ये ही तो महासेन पुत्री वासुदत्ता है।
1: मेरी प्रिया वासुदत्ता, सच अगर यही है तो देवी पद्मावती, आप वासुदत्ता को ले अंतपुर में प्रवेश करें।
4: नहीं देव, उसे अंतपुर प्रवेश नहीं कराऊं, वो मेरी भगिनी है। राजन, आप भरत कुलोत्पन्न है, विनीत है, ज्ञानवान, पवित्र राजधर्म के आचार्य है, इस तरह मेरी भगिनी का हरण न करें।
1: अच्छा, तब रूप सा दृश्य देखें। प्रतिहारी, ये बीच की यवनी का हटा दो।
4: स्वामी की जय।
1: महामात्य।
2: आर्यपुत्र की जय।
1: वासुदत्ता, अरे अरे, ये तो हमारे महाअमात्य यौगंध रायन ही है, और ये महासेन पुत्री वासुदत्ता, ये सत्य है या स्वप्न?
5: महाराज उदयन, देवी को हर लेने का अपराधी मैं हूं, स्वामी रक्षा करें।
1: आप रक्षित हैं महाअमात्य, आपके यत्नों से ही हम डूबतों की रक्षा हुई है।
2: तो ये अवंतिका ही आर्या वासुदत्ता है। आर्य, आपके साथ सखी भाव से व्यवहार करते, अगर शिष्टाचार का उल्लंघन हुआ हो तो क्षमा करें।
6: उठो सुहागिन पद्मावती, जो स्वयं दूसरों के हित सेवा में लगा रहा उससे भला अपराध कैसा।
1: मित्र यौखंधरायन, बताओ देवी वासुदत्ता को यूं हटा देने में तुम्हारा क्या प्रयोजन था?
5: कौशाम्बी की रक्षा कर सकूं, मित्र राज्यों की सहायता जुटा सकूं, ताकि आपको विजय लाभ हो सके। राजन,
1: और उसे पद्मावती के आश्रय में रखने का क्या तात्पर्य?
5: राजन, इसीलिए कि पुष्पक भद्र आदि भविष्य दृष्टाओं ने कहा था, देवी पद्मावती आपकी रानी होगी और उसी के साथ देवी वासुदत्ता भी आपको प्राप्त हो जाएगी।
1: क्या मंत्री रूमणवान भी इसे जानता था?
5: हाँ राजन, सभी जानते थे।
1: ओ
5: महाराज उदयन, रैभ्य और आर्या वसुधारा को आज ही देवी वासुदत्ता की कुशलता की सूचना के लिए उज्जैनी भेज दे।
1: नहीं, हम सभी देवी पद्मावती के साथ उज्जैनी चलेंगे और हमारे साथ वासुदत्ता भी होंगी।
5: हाँ स्वामी, आज आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई।
2: और मेरा स्वप्न।

ये था नाटक स्वप्नवासव दत्ता का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि भास के संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण था। रूपांतरकार थे कृष्णकांत दुबे, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा। आकाशवाणी इंदौर की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस और फिर

0: प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाँव
0: एक उत्तम जीवन की कहानी।

0: सिंह से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह जी। उत्तम जी, बहुत बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
1: नमस्कार यूनुस जी, नमस्कार टू ऑल जो उजाला सुन रहे हैं। आप उजाले में सुन रहे हो और हम अंधेरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं।
0: सर, आपकी जिंदगी की जो कहानी है वो बहुत उतार चढ़ाव और संघर्षों से भरी रही है। मुझे लगता है कि शुरू से शुरू करें और एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम आपकी जिंदगी को दोहराने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ पैदा हुए और आपके पिताजी क्या करते थे, यहाँ से बात शुरू करते हैं।
1: जी, बात तो यहीं से शुरू होनी चाहिए जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं। जिंदगानी बहुत लंबी है क्योंकि तो 4.5 साल की उम्र में हमारे दादाजी ने मेरे पिताजी को कहा कि भाई यहाँ तो म्यूजिक ले लो और यहाँ ये घर ले लो। तो पिताजी ने कहा ठीक है। तो अंदर गए, मम्मी को बुलाया, मुझे बुलाया, जो कपड़े पहने हुए थे उससे हम लोग बाहर निकल गए।
0: आप किस शहर में थे?
1: ये लखनऊ की बात है और आई वॉज बॉर्न इन देहरादून।
0: अच्छा, तो ये अलग अलग शहर क्यों थे?
1: देहरादून से सब पूरी फैमिली लखनऊ आ गई थी
0: जी,
1: और लखनऊ में भगवान की कृपा से बहुत बड़ी हवेली थी।
0: अच्छा अच्छा,
1: बहुत खूबसूरत हवेली थी। मुझे आज भी वो हवेली जो है मेरी आंखों में समाई है, ऐसी इतनी बड़ी हवेली थी। उस हवेली में हम लोग रहते थे। बस वहां से मैं 4.5 साल का था जब मुझे याद है, तो पिताजी ने बुलाया तो मम्मी और मेरा हाथ पकड़ा, हम तीनों बाहर निकल गए। और उसके बाद पिताजी, माताजी और हम तीनों, शायद हमारे

0: शायद हमारे मामा क्या घर गए, मुझे याद नहीं।
1: ये जो निकलने का सिलसिला है, इसकी बुनियाद ये थी कि संगीत को अपनाया और दौलत को ठुकराया।
0: दौलत को ठुकराया, मतलब संगीत चाहिए तो ये घर छोड़ दो, और संगीत नहीं चाहिए तो इस घर में रहो। लेकिन संगीत क्यों चाहिए, क्योंकि पिताजी चोरी चोरी जाते थे सितार सीखने।
1: अच्छा, ये लखनऊ की बात
0: है। ये लखनऊ की बात है, और लखनऊ में उस टाइम पे एक बहुत बड़े उस्ताद थे, उस्ताद इलियास खान साहब।
1: जी,
0: आपने नाम शायद सुना होगा।
1: जी,
0: डैडी हमारे उनके शागिर्द थे और उनके यहाँ सीखते थे, तो उनके अंदर म्यूजिक था, डैडी के अंदर म्यूजिक था, तो बाकी लोगों के म्यूजिक था, लेकिन ऐसा म्यूजिक नहीं था कि जो हमारे जैसे डैडी मतलब चोरी करके, पैसे चोरी करके भी सीख रहे हैं, वो और फैमिली में किसी के पास आया नहीं, तो वो चीज मुझ में भी आई। और मुझ में डैडी को कैसे पता चली, हमारे पिताजी को कैसे पता चली कि मैं स्कूल जाता था जब लखनऊ में, तो जब वापस आता था तो आई यूज टू सिंग, वो जो प्रेयर होती थी स्कूल की, मैं वो गाता था।
1: बाबा,
0: और जब मेरी किताबें देखते थे डैडी, तो उसमें सब लाल इंक से मार्क्स होते थे।
1: जी,
0: तो मुझे लगता था सबको ब्लू इंक है, मेरी को मार्क रेड इंक है, कुछ खास बात होगी, बच्चे को कहाँ पता चलता है। तो मैं मतलब फेल ही था, कोई मतलब नहीं था स्कूल जाने का। तो डैडी ने इसलिए वो उसने डिसीजन लिया और उन्होंने छोड़ दिया
1: एक झटके में हवेली से बाहर,
0: एक झटके में हवेली के बाहर, और सीधा उस रात मामा जी के घर में, या कौन सा घर था मुझे याद नहीं, वहां हम लोग शायद डेढ़ दो महीना रहे। उसके बाद चाहे डैडी ने किराए पर मकान लिया मुझे याद नहीं, बट इस दौरान में 4.5 साल की उम्र में मुझे उन्होंने सबसे पहले मटका सिखाया।
1: अच्छा
0: जी,
1: क्या बात है,
0: मेरा पहला इंस्ट्रूमेंट जो है लाइफ का वो मटका है।
1: तो पहले आपने मटका बजाया,
0: मटका सिखाया, फिर उन्होंने तबला सिखाया।
1: जी जी,
0: फिर उन्होंने मुझे 6 महीने के करीब कथक सिखाया।
1: जी,
0: कथक डांस। इस दौरान मुझे उन्होंने थोड़ा बहुत वोकल जो होता है, गाना होता है, थोड़ा बहुत वो भी सिखाया, लेकिन तबले पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। और यहां से हमारी एक यात्रा शुरू हुई,
1: बाकायदा यात्रा,
0: यात्रा गुरुद्वारों की यात्रा। मतलब डैडी सितार बजाते थे, मम्मी बाजा बजाती थी, मैं तबला बजाता था, हम लोग कीर्तन करते थे
1: गुरुद्वारों में, कीर्तन करते थे।
0: और इस
1: से शहरों में आप रहे उस दौरान,
0: याद नहीं लेकिन बहुत घूमे
1: जी,
0: एक साउथ छोड़ के और बंगाल छोड़ के बाकी बहुत जगह गए हम,
1: पूरे देश में घूमे,
0: आसाम गए, गुजरात गए, महाराष्ट्र में आए, काफी जगह घूमे हम लोग, हर जगह कीर्तन करते थे,
1: गुरुद्वारों में रहते थे, कीर्तन करते थे।
0: डैडी ने एक रायपुर में एक गुरुद्वारे में नौकरी की 1.5 साल।
1: जी,
0: 1.5 साल तक हम लोग रायपुर में थे, वहां मेरी बहुत विद्या चली। और आप सोचिए, जिस उम्र में बच्चों को खेलना, पहनना, खाना, बच्चों के शौक, उस उम्र में मेरे हाथ में तबला था।
1: क्या बात है,
0: और उस उम्र में 7-7 घंटे तबले का रियाज होता था।
1: मतलब जितना बच्चा स्कूल में पढ़ता उतना आप संगीत की तालीम ले रहे,
0: संगीत की तालीम दे रहे थे मुझे पिताजी।
1: बहुत सख्त थे, डांट मार वाला मामला था?
0: नहीं, प्यार से बहुत सिखाते थे, और टीचर बहुत अच्छे थे। हमारे डैडी म्यूजिशियन उतने अच्छे नहीं थे, बट टीचर तो कमाल थे
1: जी।
0: मतलब अगर समझो किसी को पता ही नहीं है कि म्यूजिक क्या होता है, उससे भी वो तबला बजवा देंगे।
1: वाह, क्या बात है,
0: ऐसे टीचर। अभी मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ।
1: अच्छा,
0: मैं सिखा नहीं सकता, मुझसे सिखाना नहीं होता, मैं म्यूजिशियन को सिखा दूंगा कि मेरा ये पीस है, मेरा ये गाना है, इसको कैसे बजाना है, वो मैं करवा लूंगा।
1: वो तो मैंने देखा है आपको,
0: लेकिन हाँ, लेकिन सिखाना जिसको होता है वो मेरे में पेशेंट नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट टीचर, टीचर इज ए डिफरेंट थिंग। तो हमारे फादर बहुत टीचर थे, हमारे बच्चे जितने भी हैं फादर के गोदी में बैठ के सीखे हुए हैं, कंधों पर बैठ के उन्होंने सीखा, हमारी प्रीति, हमारा जो बड़ा लड़का था अमर। तो जी, वहां से जो जर्नी शुरू हुई है, तो वो सीखते सिखाते, गाते बजाते, ट्रेनों में चलते, ट्रेनों में उतरते, बसों में चढ़ते, बसों में उतरते, 1960 में बॉम्बे पहुंच गए।

0: उत्तम जी, जब बंबई आप पहुंच रहे थे तो उससे पिछला वाला शहर कौन सा था?
1: वो मुझे याद है, वो अभी भी याद है मुझे
0: जी,
1: अहमदाबाद।
0: ओहो, गुजरात पहुंच गए थे घूमते हुए, मतलब कहां रायपुर फिर अहमदाबाद,
1: गुजरात पहुंच गए थे। गुजरात में शायद एक डेढ़ महीना हम लोग रहे किसी गुरुद्वारे में, और उसके बाद वहां से हम बॉम्बे आ गए थे, क्योंकि डैडी का अल्टीमेट जो टारगेट था वो बॉम्बे था
0: जी,
1: कि बॉम्बे पहुंचना है।
0: उसके पीछे इरादा क्या था?
1: वही तो, उत्तम को वायलिनिस्ट बनाना है।
0: तो पिताजी का मकसद था आपको एक वायलिनिस्ट बनवाना,
1: एक फिल्म इंडस्ट्री का म्यूजिशियन बनाना, क्योंकि डैडी इंडस्ट्री देख के गए थे और उनका ये मन में था, मुझे उन्होंने बोला, उनके मन में था कि इसको बच्चे को यहाँ डालना है इंडस्ट्री में। अब सोचिए कहाँ बिजनेस फैमिली, कहाँ उनकी सोच कि लड़के को यहाँ डालना है। तो आप हैरान होंगे, आप सुनने वालों भी सब हैरान होंगे कि हम 1960 में जनवरी में उतरे, हम लोग
0: जनवरी में
1: हम लोग 11 बजे के करीब ट्रेन से उतरे हैं, और डैडी के एक बहुत खास दोस्त थे, उनकी फैमिली ने जाके हमको छोड़ा, मुझे और मम्मी को छोड़ा, और छोड़ा, और उसके बाद वो कहाँ गए डैडी मुझे आज तक नहीं पता, और वो चले गए छोड़ के,
0: बम्बई छोड़ के चले
1: गए, नहीं घर में छोड़ के चले गए
0: जी जी।
1: और शाम को आए, शाम को वापस आए तो आके बोलते हैं कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो रही है वायलिन की। मैंने कहा डैडी कहाँ? बोलते एक टीचर है फेलिक्स हेरेडिया करके, एली एब्रियो की एक शॉप हुआ करती थी उन दिनों, म्यूजिकल शॉप थी जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स बिकते थे
0: जी जी।
1: तो ये ढूंढते ढूंढते सब वहां चले गए, वहां देखा उनको मिला एक फेलिक्स हेरेडिया करके, तो उनसे पूछा कि मेरा लड़का वायलिन सीखना चाहता है। बोले पहले बजाता? बोले हाँ क्लासिकल बजाता है, तबला वबला सब उसके अंदर, सुर बहुत है उसके पास। बोले ओके ले आ। तो दूसरे दिन डैडी मुझे लेके गए।
0: उस वक्त आपकी उम्र क्या रही?
1: 12
0: वर्ष। अच्छा, मम्मी और पापा दोनों का नाम क्या था, और मम्मी की कौन सी याद है उस वक्त की?
1: मम्मी के थे बहुत सी यादें हैं,
0: डैडी नाम,
1: डैडी के हमारे जो नाम था उनका नाम था ब्रिजपाल सिंह
0: जी जी।
1: तो ज्ञानी उन्होंने पास की थी, उन दोनों में ज्ञानी एक डेस्टिनेशन हुआ करता था
0: जी,
1: हिंदी में
0: जी,
1: जो ज्ञानी जो लोग पास करते थे, तो वो ज्ञानी जैसे आज बीए या एमए है, तो डैडी ने पास किया था ज्ञानी, ब्रिजपाल सिंह ज्ञानी।
0: अच्छा,
1: हमारी माताजी का नाम जसवंत कौर
0: जी जी,
1: और ये दोनों हमारे पिताजी थे सरगोधा से।
0: अच्छा,
1: आज जो पाकिस्तान में है।
0: हाँ,
1: और मदर थी कुजरावाला से, तो दोनों पाकिस्तान के थे उस टाइम पे, तो पाकिस्तान से 47 से पहले ही आ गए थे हम लोग यहाँ पे पार्टी
0: जी जी जी।
1: तो करते कराते यहाँ पहुंच गए, तो 60 में मेरी जनवरी में इस क्लासेस शुरू हो गए थे।
0: कितना मुश्किल था कि एक नया शहर और उस शहर में एक नए टीचर जिनसे सीख रहे हैं आप
1: जी। डैडी तो पहले आके गए थे बम्बई
0: जी,
1: तो ये जो उनके दोस्त थे बहुत खास, जैसे घर होता है अपने, तो हम लोग उनके यहाँ घर में 2-3 महीने रहे
0: जी।
1: 2-3 में नहीं, मैंने इमीडिएटली नेक्स्ट डे मुझे लेके गए, और वायलिन थी मेरे पास, उससे उन्होंने मुझे शुरू करवाया सिखाना। तो मैं उनसे शायद 1.5 से 2 साल सीखा हूं।
0: क्या बात है।
1: और उस 2 साल में उन्होंने एक मुझे पीस सिखाया जिसको पोलका बोलते हैं, पोलका, वायलिन में पोलका होता है
0: जी,
1: वो उन्होंने मुझे पीस बजाया। वो पीस मेरे आगे जाके बहुत काम में आएगा, मैं आपको बताऊं,
0: वो कहानी में आगे आएगा,
1: आगे आएगा। तो ये हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल में सीखता रहा। इन 2 सालों में यूनुस जी शायद 10 या 12 घर चेंज ही हुआ।
0: बाप रे, 10-12 घर
1: 2 साल में
0: जी,
1: कहीं 1 महीना, कहीं 2 महीने, कहीं 2.5 महीने, कहीं गुरुद्वारों में, बोरीबंद गुरुद्वारा था वहां रहे, दादर गुरुद्वारे रहे, माटुंगा गुरुद्वारे रहे, लेकिन मेरी प्रैक्टिस नहीं रुकी, वो चलती रही
0: जी।
1: और प्रैक्टिस भी 13.5 घंटे रोज की।
0: बाप रे बाप,
1: ये लोग सुन के बहुत हैरान होंगे।
0: 13.5 घंटे,
1: 13.5 घंटे मेरे फादर ने टाइम टेबल बनाया, वो भी सुबह 5:30-6 बजे से शुरू होता, 6 से लेकर शाम को 8-9 बजे तक।
0: ओहो,
1: 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे 15 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे खाना खाओ, 3 घंटे फिर 15 मिनट का, रात के लास्ट जो है वो 1.5 घंटे का ब्रेक, 1.5 घंटा प्रैक्टिस करो, उसके बाद खाना खाओ, सो जाओ, क्योंकि सुबह 4:30 बजे उठ के आपको कम से कम 6 किलोमीटर रन भाग के आना है।
0: अरे बाप रे,
1: 4:30-5 बजे।
0: कभी 12 साल के बच्चे कभी ऐसा

0: नहीं होता था कि नीचे खेलें,
1: नहीं
0: बच्चों के साथ खेलें,
1: कभी हुआ ही नहीं। क्योंकि यही जिंदगी थी, डैडी ने जिस जिंदगी में डाला बस उसी जिंदगी को एडॉप्ट, क्योंकि फादर ने कहा है ना खत्म होगी बात,
0: बस उसके आगे
1: माँ ने कहा है खत्म होगी बात
0: जी,
1: इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना। माँ बाप जो है वही तो भगवान है, तो भगवान का एक असूल होता है कि मैंने कह दिया तो तुमने उनको करना ही है।
0: कितनी सुंदर बात है,
1: कभी भी ये बात नहीं आई कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, व्हाई शुड आई डू दिस, व्हाई शुड आई डू दिस, ये वर्ड कभी माइंड में ही नहीं आया।

0: दो साल निकल गए मुंबई में। 62 में हमारे एक दोस्त हैं जो अभी दुनिया से चले गए हैं, सुरेंद्र राव करके, वायलिन बजाते थे, जिनका लड़का आज संजू राव करके बजाते, उनके फादर
1: अच्छा वायलिन बजाते हैं।
0: अच्छा वायलिन, हाँ मैं यहाँ बताऊँ, 62 में हम लोग पार्ला में आ गए थे, किराए पर, किराए के मकान में रह रहे थे, और वहां पे वो आया, कहते ये एक रिकॉर्डिंग आई है।
1: अच्छा,
0: रिकॉर्डिंग सुन के डैडी सुन के हैरान हो गए, रिकॉर्डिंग? बोले हाँ रिकॉर्डिंग। तो कहा ये? बोले बॉम्बे लैब में है, मोहम्मद शफी चाचा हैं जो बड़े डायरेक्टर हैं, नौशाद साहब के असिस्टेंट हैं
1: जी,
0: उनकी रिकॉर्डिंग। तो 9 बजे का टाइम, तो हम लोग तो 8 बजे पहुंच गए
1: जी, बिल्कुल
0: उसकी जो सुबह की जो प्रैक्टिस वैक्टिस सब करके पहुंच गए। 9 बजे शुरू हुआ यूनिस जी, 1 बजे के करीब लंच ब्रेक हुआ, हमने खाना खाया, फिर 2 बजे शुरू हुआ, फिर शाम को 6 बज गए, फिर चाय पिया, और रात को 9 बजे के करीब बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म हुआ।
1: 12 घंटे
0: उस टाइम पे बैकग्राउंड म्यूजिक 8 घंटे का हुआ करता था
1: जी, जी
0: 8 घंटे का बैकग्राउंड म्यूजिक विद ब्रेक, तो 13 घंटे हो गए,
1: हाँ
0: 4 घंटे और या 3.5 घंटे और, तो रात को 9 बज जाते थे आराम से। तो जैसे ही पूरा दिन बजाया, बड़ा अच्छा लगा, ये एक्सपीरियंस नया एक्सपीरियंस बिल्कुल,
1: सिनेमा का बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रहे हैं,
0: सिनेमा का, वो भी,
1: वो भी मोहम्मद शफी के साथ,
0: मोहम्मद शफी साहब का इतना बड़ा नाम, नौशाद साहब के असिस्टेंट, हम लोग कुछ वायलिनिस्ट थे, कुछ रिदम था, मुझे आज भी याद है बड़ा रिदम रिदम था उनके। और फिर हमने पूछा किसके लिए है, बोलते कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म है।
1: अच्छा,
0: उसके लिए था वो। तो उन्होंने बोला बच्चों एक काम करो, ये संडे को हमारे घर में आओ। तो संडे, समझो आज मंडे है या ट्यूसडे है, तो संडे हम लोग सब सुबह कितने बजे पहुंचे, बस सुबह 8 बजे पहुंच जाओ सब लोग
1: जी।
0: तुम सारे बच्चे 8 बजे पहुंच गए
1: मोहम्मद शफी के घर,
0: मोहम्मद शफी के माहिम में। और वहां जब पहुंचे सब जाके हम लोग हॉल में बैठ गए, अच्छा हॉल था, बिल्डिंग थी उनकी अपनी, अजमत करके नाम था बिल्डिंग था, या रहमत सब कुछ नाम था बिल्डिंग का, पूरी बिल्डिंग उनकी थी। ऊपर के फ्लोर में हम लोग पहुंचे, बाहर बैठे हुए थे, तो इतने में एक कोई इंसान आए
1: जी,
0: हमको पता नहीं कौन है, हम सब किसी को कोई पता नहीं, वो बच्चों को कि वो कौन है, तो आके कुर्सी में बैठ गए। तो सभी से बाहर आए, हाँ पीटर आजा, उनका नाम पीटर था, बहुत बड़े वायलिनिस्ट थे,
1: फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हस्ती,
0: बहुत बड़ी हस्ती
1: जी।
0: तो उन्होंने आया, पीटर आजा, ये बच्चे हैं सब बहुत अच्छा बजाते हैं, कल इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग बजाई। नाम तो सुना नहीं था, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये तो बहुत बड़े वायलिनिस्ट थे, तो हम सब ऐसे डर सा हो जाता है ना, डर से गए हम लोग। अब उन्होंने, चाचा ने क्या किया कि जो उस दिन बैकग्राउंड म्यूजिक बजाया था उसका एक पीस, हम 7-8 वायलिन वाले थे, सबके सामने वो पीस कहा, ये जो तुमने बजाई
1: नोटेशन रख दिया,
0: पीटर साहब को सुनाओ। तो 1, 2, 3, 4 में चौथे में था, 5, 6, 7, 8 हो गया या 9 हो गया, 8 हो गया, जो भी था याद नहीं। तो उसने अकेले ने बजाना शुरू किया, दूसरे ने बजाया, तीसरे ने बजाया, आप हैरान होंगे यूनुस जी, मेरे सामने अंधेरा था, मेरी आंखों के सामने कुछ नहीं था, ना नोटेशन, ना कोई बैठा हुआ है, कुछ मुझे नजर आया, और मैं इतना नर्वस हो गया, इतना डर गया मैं, चाचा समझ गया, उन्होंने बोला हाँ तू मेरे से फट से आए, तुम बजाओ, मैं नहीं बजा सका उससे।
1: अरे बाप रे,
0: आई कुड नॉट प्ले, मैं नहीं बजा सका उससे, मैं मुझे हुआ क्या, शाम को नीचे चले गए। फिर चाचा ने कहा कि तुम रोज आना है, यहाँ पीटर प्रैक्टिस कराएंगे। तो हम लोग आते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। फिर उन्होंने मुझे कहा, थोड़ी लंबी है स्टोरी,
1: बिल्कुल,
0: तो उन्होंने कहा कि पिताजी को लेके आना, तो मैं पिताजी को लेके, एक बड़ा अच्छा चैप्टर भूल गया
1: जी,
0: कि जब उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म किया तो उन्होंने 10-10 रुपए दिए,
1: उस जमाने के हिसाब से बड़ी रकम।

0: 10 रुपए पूरे दिन के, तो सबको 10-10 रुपए दिए, तो 10 रुपए देख के ही हम सब ऐसे हो गए, और मुझे किनारे थोड़ा कॉर्नर में बुला के 5 रुपए और दिए,
1: तो 15 हो गए।
0: मुझे 5 रुपए और दिए तो मुझे बोला, ये 5 रुपए जो दे रहा हूँ ना, ये अपने पिताजी को बोलना कि तुम्हें शर्ट ले देंगे।
1: ओ
0: शर्ट फटी होगी
1: जी, जो जी
0: जाने
1: जी जी।
0: तो मैंने घर में जाके बोला 15 रुपए, तो 15 रुपए की कमाई एक दिन में, मतलब आज का 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया एक दिन की कमाई हो गई, तो बहुत बड़ी बात।
1: इतनी बड़ी रकम
0: कहाँ 15 रुपए। तो डैडी को मैं, डैडी ऐसा ऐसा उन्होंने बोला है, तो मम्मी को 10 रुपए दिए, जो पैसे दिए, वाहेगुरु जी को माथा टेका कि आज बच्चे की पहली कमाई आई है
1: 12 बरस की उम्र में,
0: नहीं 14 बरस हो गया।
1: अच्छा
0: 62
1: जी जी
0: 14 बरस
1: जी।
0: लेकिन जो 2 साल जो मेहनत की उसकी ये कमाई थी, पहले दिन की कमाई थी। तो डैडी मुझे नेक्स्ट डे बोले, चलो उठो चलो चलते, कहा चलो ना, निकल पड़े। तो पार्ला में रहते थे, पार्ला से हमने ट्रेन पकड़ी दादर गए, दादर के ब्रिज के ऊपर आज भी कपड़े बिकते हैं।
1: हाँ।
0: तो डैडी ने 5 रुपए में 3 शर्टें खरीदी,
1: गजब,
0: 2 मेरे लिए 1 अपने लिए, और मुझे लगता है शायद हमने 2 या 3 साल पहनी वो शर्ट।
1: क्या बात है।
0: तो उसके बाद फिर चाचा ने कहा कि पिताजी को लेके आना, तो मैं डैडी को लेके गया, बोले इसको लड़के को आप बाबा जी क्या रामप्रसाद जी क्या डालो।
1: रामप्रसाद जी यानी आज के जमाने के बहुत बड़े संगीतकार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के, प्यारेलाल जी के पिताजी,
0: प्यारेलाल जी के पिता,
1: ट्रम्पेट बजाया करते थे
0: और इतने बड़े टीचर थे वो, इतने जैसे जो चीज आप सुना करते हो ना, वो हमने महसूस की है और हमने उसको सीखा है, हमने उसको जिया है हमने
1: जी। कोई उनका नाम नहीं लेता था, उनको बाबा जी बोलते थे,
0: बाबा जी बोलते। तो अदरवाइज पुराने जमानों में क्या होता था कि जो गुरु होता था वो खिलाता भी था, पिलाता भी था, रहायश भी रखता था और सिखाता भी था
1: जी।
0: ये बाबा जी थे हमारे,
1: और आप उनके सबसे महत्वपूर्ण शिष्य बने।
0: महत्वपूर्ण शिष्य था, और मैं बाबा जी से 6 महीने के करीब सीखा हूँ।
1: बहुत सख्त थे वो
0: दूसरों के लिए,
1: आपके लिए नहीं।
0: मेरे लिए
1: वो आपको अपना लाडला बच्चा कहते थे।
0: लाडला बच्चा भी कहते थे और मुझे राम सिंह कहते थे।
1: अच्छा।
0: ये कहते ये मेरा राम सिंह है।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: क्योंकि उस टाइम पे राम सिंह का बहुत बड़ा नाम था।
1: हाँ।
0: राम सिंह एक बहुत बड़े अरेंजर हुआ करते थे। राम सिंह जी सैक्सोफोन बजाते थे। इंडस्ट्री में सैक्सोफोन ऑब्लिगेटरों में कैसे बज सकता है, ये उनकी देन है,
1: राम सिंह जी की देन है जी।
0: और वो ऐसे थे कि आप समझो एक ऑर्केस्ट्रा बज रहा है और साथ साथ में लिख रहे हैं
1: नोटेशन
0: लिख रहे हैं।
1: गजब।
0: और वो तो आपका ऑर्केस्ट्रा खत्म होगा, उनकी नोटेशन खत्म हो जाएगी।
1: ये रफ्तार
0: थी, जैसे
1: टाइप कर रहे हैं,
0: टाइप करते ना, जैसे स्टेनो जो शॉर्ट फॉर्म ऐसा लिखते थे वो
1: जी।
0: तो बाबा मुझे हमेशा ये कहा करते थे, ये मेरा राम सिंह है।
1: वाह।
0: सबको कहते थे तुम लोग जो मर्जी बनो बट ये मेरा राम सिंह है।
1: तो आप उनकी आंखों के तारे बन गए थे
0: जो भी था
1: उस वक्त। प्यारेलाल जी,
0: प्यारे जी का बहुत बड़ा नाम था।
1: अच्छा।
0: बहुत बड़े वायलिनिस्ट, बहुत बड़े अरेंजर, और उनकी फिल्म भी आ गई थी परसमणि।
1: हाँ, 63 में आ गई थी।
0: तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बहुत बड़ा नाम था, और प्यारे भी वैसे भी बहुत बढ़िया लाजवाब वायलिनिस्ट थे। उनके जो वायलिनिस्ट के गुरु थे वो एंथोनी गोंसाल्विस थे
1: जी, एंथोनी गोंसाल्विस,
0: जिनसे 2-2.5 महीने मैं भी सीखा हूँ।
1: अरे वाह वाह।
0: मैं भी उनके पास गया था। तो बाबा जी से 6-6 महीने करते करते चाचा जी के साथ काम करता रहा, और सफी चाचा ने मुझे एक ऐसा मौका दिया जो आमतौर पर किसी को दिया नहीं जाता, आमतौर पर किसी को भी ये चीज नहीं मिलेगी। उन्होंने एक फिल्म आई थी जिसका वो बैकग्राउंड कर रहे थे, उस बैकग्राउंड म्यूजिक का पूरा कंडक्टिंग उससे करवाया, 90 म्यूजिशियन।
1: अरे बाप रे। और आपकी इतनी कम उम्र।
0: ये शायद 63-64 की बात है। मुख्तार करके कोई एक्टर थे बहुत बड़े
1: जी जी, शेख मुख्तार,
0: उनकी फिल्म थी वो।
1: वाह।
0: 6 फुट के थे,
1: हट्टे कट्टे,
0: उनकी फिल्म थी वो। इनका बैकग्राउंड म्यूजिक चाचा कर रहे थे। वो बैकग्राउंड में 7 दिन हमने लिखा, 7 दिन चाचा ने कंपोज किया, और एक हमारे साथ और भी थे वो लिखा हमने। 7 दिन के बाद हमने वो म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म सेंटर में मैंने कंडक्ट किया। आप सोचो कि इंडस्ट्री का टॉप नोच जो म्यूजिशियन है वो बैठा हुआ है,
1: और एक बच्चा कंडक्ट कर रहा है,
0: बाप, 15-16 साल की उम्र,
1: कमाल।
0: वहां से कंडक्टिंग चाचा ने मुझे दी। एट द सेम टाइम एक फिल्म का बैकग्राउंड कर रहे थे सभी चाचा नौशाद साहब का
1: जी।
0: तो हम सब बजा रहे थे, मैं सब 3rd रो में बैठा हुआ था, बजा रहा था, तो मुझे ऐसे बोला तो बाहर लेके गए, सोलो बजाएगा।
1: वाह वाह।

0: जाना, इतने बड़े बड़े म्यूजिशियन। मैंने कहा हाँ चाचा मैं जाऊंगा। तो 64 की कोई एक फिल्म है नौशाद सभी, जिसमें वो छोटा सा मेरा सोलो है।
1: कौन सी फिल्म है?
0: वो मुझे याद थी। क्योंकि क्या होता था कि नौशाद साहब और एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जिनके बैकग्राउंड म्यूजिक जो था फिल्म नहीं हुआ करते थे।
1: जी जी जी,
0: सब टाइमिंग पर फिल्म हुआ करते थे, टाइमिंग अच्छा। पर बैकग्राउंड म्यूजिक हुआ करता था। यस, आज जैसे हम फिल्म देख के म्यूजिक करते हैं ना,
1: हाँ वो ऐसा नहीं होता,
0: ऐसा नहीं होता था।
1: गजब। तो 64 में किसी फिल्म में आपने बजाया?
0: तो वो सोलो बजाया, वो मेरा पहला सोलो था।
1: वाह वाह।
0: आप देखिए, वो एक अंधेरा सामने छा गया।
1: हाँ।
0: मैं 8-10 लोगों में नहीं बजा सका, और ये 64 में इंडस्ट्री के सब बड़े बड़े नाम।
1: क्या बात है।
0: जेरी फर्नांडिस, ऑस्कर परेरा, पीटर साहब उसमें थे।
1: वाह।
0: पीटर साहब और डोराडो साहब, बड़े बड़े नाम, और बैठे उसके सामने मैं खड़ा होकर बजा रहा हूँ। वो जो सोलो बजाया यूनुस जी, वो आज तक बजा ही रहा हूँ।
1: गजब गजब, क्या बात है,
0: आज तक बज रहा है। और फिर उसके बाद मुझे बाहर जब बजा लिया तो मैं खेरसी, मुझे बोलते खेरसी।

0: जेरी फर्नांडिस, ऑस्कर परेरा, पीटर साहब भी उसमें थे।
1: वाह,
0: पीटर साहब और डोराडो साहब, बड़े बड़े नाम, और बैठे उसके सामने मैं खड़ा होकर बजा रहा हूँ। वो जो सोलो बजाया यूनुस जी, वो आज तक बजा ही रहा हूँ।
1: गजब गजब, क्या बात है,
0: आज तक बज रहा है। और फिर उसके बाद मुझे बाहर जब बजा लिया तो मैं केरसी, मुझे बोलते केरसी उत्तम तो ने बजाया तो ठीक है, फील नहीं है।
1: केरसी लॉर्ड बोल रहे हैं? ओहो,
0: ये 64 की बात है
1: जी। अब
0: फील ही फील है।
1: ये कहां से आया?
0: ये लग गई मेरे बात में, कहा फील क्यों नहीं है।
1: हाँ हाँ,
0: पहला सोलो था
1: जी,
0: फिर उसके बाद तो पंचम के यहाँ सारे सोलो मेरे हैं
1: जी,
0: मदन साहब के यहाँ, नौशाद साहब के यहाँ, पाकिजा, ये सब सोलो मेरे हैं
1: बिल्कुल।
0: फिर एक मतलब इंडस्ट्री में ऐसा हुआ कि आ गया है कोई,
1: एक वायलिनिस्ट की
0: Somebody's there.
1: एंट्री हो गई।
0: Somebody's
1: जी
0: there.
1: बहुत ही प्यारी यादें आप हमारे साथ बांट रहे हैं कि 12 बरस की, 14 बरस की उम्र और 90 म्यूजिशियंस को आप कंडक्ट करते हैं और ये तमाम चीजें हैं। हम 63-64 के जमाने में हैं तो मुझे लगता है यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, नौशाद साहब का कोई गाना सुना जाए। आप बताएंगे कौन सा गाना सुने?
0: 1960 में फिल्म आई थी मुगल-ए-आज़म, और उसका जो गाना है वो हम लोग जब फिल्म देखने गए तो क्या मतलब हमारा हाथ जो था छाती पर था, ये कैसे कर सकते हैं ऐसा काम
1: जी।
0: हम लोग सब यही कहते थे यार, ये ऐसा काम कैसे हो सकता है,
1: करिश्माई काम है,
0: करिश्माई काम। और वो गाना देखिए, 1960 का जो गाना है रिलीज हुआ, बना तो शायद 56-57 में बना होगा या 58 में बना होगा।
1: हाँ।
0: जब प्यार किया तो डरना क्या,
1: क्या बात है, क्या बात है। ये गाना सुनते हैं,
0: इस गाने को सुनते हैं।

0: कहानी को थोड़ा फॉरवर्ड करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आपने यहां मुगले आजम का जिक्र कर दिया है और मुझे ये पता है कि आपका एक मुगले आजम कनेक्शन है। मैं कहानी नहीं बताता, आप ही बताइए कि आपका एक मुगले आजम कनेक्शन है और वो बहुत शानदार है और बहुत कम लोगों को पता है।
1: देखिए जी, ये भी भाग्य की बात है कि एक टाइम तो हम मुगले आजम देख रहे थे और तरस रहे थे, वो सोच रहे थे कि ये काम कैसे कर सकते हैं, और वही मुगले आजम 2003 में
0: कलर होके आती है।
1: कलर होके आती है और पता चलता है कि उसकी रिकॉर्डिंग कोई और कर रहा है, तो नौशाद साहब के कानों में गया, तो ये कैसे हो सकता है, मैं तो हूँ अभी। नौशाद साहब बोल रहे हैं मैं तो हूँ और राइट्स भी मेरे पास है। तो फिर वो सब जो बातें हुई वो फिर हमारे पास आई, तो नौशाद साहब ने कहा कि उत्तम मुगले आजम आई है, कलर हो रही है और उनको स्टूडियो करना है,
0: पूरा म्यूजिक भी,
1: पूरा म्यूजिक
0: मतलब गाने भी और बैकग्राउंड
1: सब, सब सब सब सब सब कुछ स्टीरियोफोनिक करना है, तो मतलब वही
0: भव्यता
1: चाहिए, वो ट्रैक चाहिए। तो और हमारे पास मुगले आजम में सिर्फ एक ट्रैक,
0: जी बिल्कुल,
1: उस ट्रैक में डायलॉग भी, उस ट्रैक में गाने भी, उस ट्रैक में बैकग्राउंड म्यूजिक भी, उस ट्रैक में साउंड इफेक्ट भी
0: सारे हैं,
1: और उस ट्रैक में
0: हिसिंग भी है,
1: ये चल रही है।
0: अरे बाप रे,
1: 1960 की पिक्चर है, इसको कहां से निकालोगे। तो जो प्रोड्यूसर थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार ये साउंड कहते हैं, मैं आपको अमेरिका से ठीक करवा के निकालता हूं। तो उन्होंने अमेरिका भेजे सारे साउंड, साउंड ठीक हो क्या है, लेकिन जब हम बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे हैं तो देख रहे, तो वो साउंड चल रहा है। उन्होंने 50% कम कर दिया था,
0: जी जी
1: 50% अभी भी था, वो 50% कुछ 7 या 8 दिन बैठ के, मैंने अपने टेक्नीशियन के साथ बैठ के, उसका नाम है तनय गजर, जो आवाज स्टूडियो का मालिक था,
0: जी जी,
1: उसके साथ बैठ के वो साउंड पूरा क्लीन किया। पहले 7-8 दिन ये गए,
0: जी,
1: उसके बाद में क्योंकि उस टाइम पे सब लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, हमने सबका बैठ के एक एक गाने का क्लिक बनाया।
0: बाप रे,
1: आप सोचिए क्लिक बनाने में कितना टाइम गया होगा हमारा। पूरा जब क्लिक बना तब एक एक गाने का नोटेशन लिखा गया,
0: जी।
1: अच्छा, अब नोटेशन तो लिख लिया गाना, क्योंकि गाने हैं, पता चल रहा है गाने क्या है, सबको पता है गाने, लिख लिया। अब बैकग्राउंड म्यूजिक जब कुछ सुनने जाओ तो डायलॉग है, डायलॉग के पीछे क्या बज रहा है, ये बहुत बड़ा काम था। यहाँ पे आज का बहुत बड़ा वायलिनिस्ट है शो का, इसका नाम है प्रकाश वर्मा।
0: मैं जानता हूँ,
1: मैंने कहा प्रकाश आ जाओ, ये अपने को लिखना है। पूरा स्कोर लिखा गया,
0: बैकग्राउंड का पूरा
1: स्कोर लिखा गया है।
0: ओ गॉड,
1: उसको कम से कम मुझे लगता है 1.5-2 महीने लग गए।
0: और गानों के नोटेशंस करने में
1: वो भी
0: अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के नोटेशन होंगे, ये वायलिन के ये हुए, वायला के हुए।
1: अब हमने क्या किया कि नौशाद साहब ने उस टाइम पे अगर 120 म्यूजिशियन यूज किए तो हमने फिर से 120 म्यूजिशियन यूज किए।
0: इतने म्यूजिशियन किस स्टूडियो में समाए,
1: पार्ट बाय पार्ट।
0: अच्छा,
1: उस टाइम तो लाइव थे,
0: जी यहाँ तो
1: अभी थे। और इस मुगले आजम के दौरान हमने 12 वायलिन, 6 व्योला, 4 चेलो और 2 बेस, ये हमने मद्रास से मंगाए थे।
0: बाप रे,
1: ये हमने मद्रास से म्यूजिशियन आए, यहाँ रहे 7 दिन। सात दिन ये पूरा रिकॉर्डिंग बजाई उन्होंने अपने पार्ट्स,
0: गजब,
1: खाली वायलिन के पार्ट, वायलिन वो चले गए, फिर फ्लूट आया, फिर ये आया, फिर रिदम आई, फिर सितार आई, फिर तबला आया। ये करते करते करते हमको ऑलमोस्ट 4-5 महीने लग गए इसको।
0: तो मतलब साल भर का काम था ये कुल मिला के,
1: आराम से।
0: और पूरे गाने रिक्रिएट किए गए,
1: पूरे,
0: लेकिन गायक की आवाज सेम रखी गई,
1: गायक की आवाज, म्यूजिक भी वही, सब कुछ वही। आपको, आप अभी सुनो तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कहीं कुछ हमने ऐड किया है।
0: मैंने वो सीडी सुनी हुई है जो स्टीरियोफोनिक जो डॉल्बी आप लोगों ने किया था,
1: जी, जी।
0: उसकी जो भव्यता है, उसका जो साउंड है, गूस बम्स आ जाते हैं। मुझे याद है कि मोहे पनघट पे के पहले पूरे सितार के पीसेस है, बहुत लंबा पीस है, 2.5-3 मिनट का पीस
1: किए हुए,
0: जी,
1: सितार के ऊपर सितार बजी, तबले के ऊपर तबला बजा, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि दो सितारे बज रही हैं, वो रखा हुआ पहले का।
0: हाँ, उसी के ऊपर बजा दिया,
1: उसी के ऊपर बजा हुआ। आप सोचो क्या सिंक किया होगा, कितना सिंक होगा।

0: कितना माइन्यूट काम है,
1: जैसे, इस तरह से,
0: जैसे पेंटर माइन्यूट काम होता ना, ये उससे भी ज्यादा माइन्यूट है।
1: इस तरह से मुगले आजम का म्यूजिक रिक्रिएट हो गया,
0: रिक्रिएट हुआ। और अच्छा, मजे की बात ये है, देखिए मुगले आजम बनी थी 10 साल में, और उस टाइम पे मुगले आजम के ऊपर 1,60,00,000 रुपया खर्चा हुआ था
1: जी,
0: उस टाइम पे, मतलब आज का तो 2-3 हजार करोड़ हो गया वो।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए पिक्चर रिलीज हो गई, पिक्चर हिट हो गई, बहुत हो गया। अब जब बननी शुरू हुई तो फिर करोड़ों खर्चा हुआ। अभी ये जो मैं आपको म्यूजिक बता रहा हूँ, इसके ऊपर 1 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है।
1: जी जी,
0: बकायदा बिल्स हैं हर चीज के, 1 करोड़ रुपया पूरा म्यूजिक के ऊपर। और उसके बाद में जो उन्होंने कलर किया वो तो सब जो है सो है सो।
1: जी,
0: मतलब उस टाइम पे भी खर्चा हुआ था, आज भी खर्चा हुआ, उस टाइम भी कमाया था, आज भी कमाया उन्होंने।
1: ऐसी ऐसी लेजेंडरी फिल्म,
0: आज भी अगर 6-7-7-8 करोड़ खर्चा किया है तो उन्होंने 40 करोड़ कमाया वापस। और देखा कि उन्होंने यंगस्टर्स ने,
1: जी बिल्कुल अलग जनरेशन थी,
0: अलग जनरेशन ने पूरी फिल्म देखी और फिल्म को एंजॉय किया।
1: तो जब भी आप मुगले आजम का ये जो कलर वर्जन डॉल्बी डिजिटल देखें तो ये जरूर याद करें कि उत्तम जी ने ये सारा म्यूजिक रिक्रिएट किया है और ये साल भर की मेहनत का नतीजा है। एक और गाना मुगले आजम का हो जाए।
0: बिल्कुल हो जाए। वो जो लास्ट गाना रफी साहब का गाना बजाइए,
1: जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद।
0: क्योंकि क्या है, उसमें नौशाद साहब ने बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा यूज,
1: बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। वो जिस तरह से ऊपर जाता है, वाह वाह, कुमार साहब पर फिल्म आ गया।
0: ये सुनाइए,
1: सुनते हैं।

0: देखिए बातों को थोड़ा फ्लैश फॉरवर्ड इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये जो मुगले आजम का रिक्रिएशन है ये बहुत कम लोगों को पता है
1: जी जी।
0: कि ये संगीत आप
1: यहाँ मैं एक बात बता दूं, इस दौरान जो है ना मेरा जो लड़का है गुरमीत
0: जी
1: उसका 60% उसका हाथ है इसके अंदर
0: जी जी जी।
1: सारा जो इंस्ट्रूमेंट्स की डबिंग है वायलेंस की डबिंग है वो सब लिखना वो सब उसने किया हुआ है। बाकी जो काम तो फिर मैंने मिक्सिंग वगैरह करवाई
0: जी जी जी। क्या बात है। वापस चलते हैं 1964 के जमाने में जब आप कंडक्ट तो करने लगे थे और सोलो पीसेस भी बजा रहे थे। इस दौर में दो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स से आपकी मुलाकात का जिक्र हम सुनना चाहेंगे, एक तो नौशाद साहब और दूसरे मदन मोहन जी।
1: देखिए जी नौशाद साहब के यहाँ थे उनके घर में तो मैं घुस गया था क्योंकि मोहम्मद सभी साहब थे
0: जी,
1: लेकिन उनके साथ कभी ऐसे डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई। नौशाद साहब के साथ डायरेक्ट मुलाकात जो हुई है वो 72 की बात है।
0: इतना लंबा समय निकल गया
1: जी, क्योंकि सभी साहब काम करते थे हम लोग बजाते थे
0: जी।
1: जैसे मैं म्यूजिशियन था वैसे सब दुनिया के म्यूजिशियन सब बजाते थे हम लोग। 72 में चाचा ने मुझे कहा तुम घर आओ। मैं घर गया
0: जी,
1: चाय पीने चाय पीते हैं चलो मेरे साथ। तो उनकी गाड़ी में वो आए तो कार्टर रोड में नौशाद साहब के घर आ गए। मैं कहा ये तो नौशाद साहब का घर है
0: आशियाना
1: आशियाना। मैं कहा चाचा यहाँ क्या, चलो चलो बताता हूँ। अंदर चले गए रूम में बैठ गए। नौशाद साहब ऊपर से आए बोले आओ सभी मियाँ किसको ले आए, इसको किसको ले आए, ये कौन है। देखा तो हुआ इसको अपनी रिकॉर्डिंग बजाता है ना शायद वायलिन बजाता है। हाँ जी वायलिन बजाता है। तो क्यों लाए उसको यहाँ पे। मैं इसलिए लाया हूँ कि आज से ये आपके साथ काम करेगा।
0: गजब।
1: क्योंकि मैं अब मेरे से काम नहीं होगा, मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगा, आज से उत्तम आपका काम करेगा। तुमको इतना भरोसा है इस पर। बोले हाँ जी बिल्कुल भरोसा कर लेगा ये पूरा काम। बोले हाँ पर। वो पहली मुलाकात थी।
0: वाह वाह वाह। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही
1: है। नौशाद साहब सामने बैठे हुए, चाचा बैठे हुए, मैं बैठा हुआ। तो बोले ठीक है तो इसको कल सुबह भेजो। दूसरे दिन जब मैं गया तो उनकी एक जगह थी वो बैठते थे एक सामने कुर्सी थी
0: जी जी,
1: जैसे आप बैठे हैं ऐसे मैं बैठा हूँ। तो ऐसे वो कुर्सी मैं लास्ट तक बैठा उनके साथ।
0: आज भी है वो उसी जगह।
1: आज भी वो कुर्सी। और उस कुर्सी पर
0: रफी साहब भी बैठते थे,
1: बड़े बड़े सिंगर बैठे
0: जी,
1: गुलाम अली साहब से ले आमिर खान साहब से लेकर प्रसुल्ले साहब के रफी साहब लता जी आशा जी सब उस कुर्सी पर बैठते थे। वो कुर्सी मेरी सामने लिखते थे बैठा जी आओ उत्तम उत्तम साहब। ये बड़ी खूबसूरत वाक्य है
0: जी जी।
1: तहजीब और इज्जत
0: जी
1: ये अगर किसी से सीखनी है ना तो नौशाद साहब से।
0: क्या बात है।
1: मैंने उनको कभी तू बोलते नहीं सुना
0: जी,
1: कभी तुम बोलते नहीं सुना। तो मुझे उत्तम साहब तो मैं उनको जी नाम तो मैं उनको ले नहीं सकता था तो जी जी जी करके बात करता था या अंकल बोल देता था। कल सफी मियां आपको छोड़ के गए और कह गए कि आप मेरे साथ काम करेंगे। मैंने कहा जी अगर आप इस लायक समझते हैं तो। क्या लोगे रिकॉर्डिंग का। मैंने कहा जी आप जो दे देंगे। नहीं नहीं नहीं आप बताओ क्या लोगे। ये देखिए ये बात है 72 की
0: जी जी।
1: क्या उम्र होगी मेरी 48 58 68 24 साल की उम्र
0: जी जी
1: 23 24 के
0: जी।
1: तो मैंने कहा अंकल मैंने सुना है संगीतकारों में सबसे बड़े आप थे और सबसे ज्यादा पैसे भी आपने लिए
0: जी,
1: और आपने जो पैसे लिए वो तो किसी ने नहीं लिए। हंस पड़े बोले हाँ सही बात है। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि अरेंजरों में सबसे ज्यादा पैसे मैं लूं।
0: अरे बाप रे।
1: उनको ये नहीं लगा कि अपने ऊपर आ जाएगा लड़का।
0: हाँ।
1: तो मैंने कहा अंकल 750 रुपए रखेंगे आने का।
0: हाँ हाँ।
1: वैसे उस टाइम पे 200 250 300 रुपए में काम कर रहे थे लोग।
0: तो ये 3 गुना मांगा
1: 750 रुपए
0: जी।
1: बोले ठीक है
0: 750 रुपए एक गाने
1: एक गाने का।
0: गजब।
1: बोले ठीक है। और यूनुस साहब ये दिन आया कि प्रोड्यूसर को बोलते थे कि वो उत्तम से बात कर लो वो जो बोलेगा वही करना।
0: वाह।
1: और 35 साल मैंने उनके साथ काम किया।
0: बाप रे 35 साल नौशाद साहब के साथ काम करना मतलब एक पूरे युग को जीना।
1: पूरा युग को जीना। और आप सोचिए कि इन 35 सालों में हम कितना नजदीक आ गए होंगे, कितना समझते होंगे एक दूसरे को। जब मेरी लड़की प्रीति उनके यहाँ गई सीखने के लिए।
0: अच्छा।
1: हाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ा कनेक्टेड वाक्या है
0: जी।
1: तो प्रीति बोले डैडी मुझे अंकल के पास ले चलिए, अबू के पास
0: अबू
1: ले चलिए। मैं ले गया। वो इतना उनका आपस में प्यार हो गया कि इस प्यार की वजह से मैं उत्तम साहब नहीं रहा, मैं उत्तम हो गया।
0: वाह वाह वाह वाह, प्रीति की वजह से ये हुआ।
1: प्रीति की वजह से, मतलब अब तक वो मुझे उत्तम साहब बोल रहे थे, प्रीति आ गई, वो इतना प्यार हो गया इनमें, इतना वो मतलब अब्बू और प्रीति, अब्बू प्रीति। और उस दौरान मैंने एक दिन देखा कि मुझे उत्तम करके बुला रहे हैं। उत्तम कहाँ है? मैं कहा बड़ा अच्छा लगा। बुजुर्ग जब
0: नाम लेके पुकारते
1: हैं तो बहुत अच्छा लगता है।
0: जी जी,
1: क्योंकि मेरे डैडी भी मुझे उत्तम जी बोलते थे, मम्मी भी मुझे उत्तम जी बोलते थे।
0: हाँ।
1: पता नहीं क्या बात।
0: अरे
1: हाँ, पता नहीं, आई डोंट नो, उत्तम जी आ गए बेटा।
0: वाह।
1: तो उस दिन से मैं उनके लिए उत्तम हो गया और फिर उनके जनाजे तक मैं साथ में था।
0: जी, नौशाद साहब की और बहुत सारी बातें हम शेयर करेंगे, यहाँ पहले उनका एक गाना सुनते हैं। अभी मदन मोहन जी वाली बात बाकी है, उसको
1: नहीं, पहले नौशाद साहब का एक गाना सुना दीजिए जो मेरा उनके साथ पहला गाना है।
0: जी,
1: माय फ्रेंड का गाना है वो।
0: हाँ हाँ,
1: रफी साहब का गाया हुआ गाना है। मैया मेरी बहती जाए, ये मेरा पहला गाना उनके साथ।
0: वाह वाह वाह, ये सुनते हैं, उसके बाद
1: ये सुनिए, उसके बाद फिर हम मदन साहब के ऊपर चलते हैं।

0: नौशाद साहब की बातें तो और होंगी, ये गाना हमने सुना। एक बहुत दिलचस्प वाकया है मदन जी से मुलाकात का,
1: जी
0: जो वैसे हमारी आपकी मुलाकातों में आपने सुनाया, हमारे सुनने वालों को ये वाकया सुनाइए जिस किस्सा गोई के साथ आप सुनाते हैं।
1: जी जी, ये शायद 1963-64 की बात होगी
0: जी,
1: जब उनके यहाँ डैडी 2-3 दफा लेके गए, मुझे मिले नहीं।
0: हाँ, बहुत बिजी थे,
1: बिजी रहते थे, और उस टाइम पे म्यूजिशियंस जाते थे सुनाने तो मोस्टली लोग सुनते नहीं थे। तो एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चौथी बार चांस मिल गया, मदन साहब मिल गए। बाहर उनके असिस्टेंट थे सूरी साहब।

0: जी जी
1: वो बाहर बैठे हुए, तो डैडी ने कहा कि हम लोग आए हैं तो चाहते हैं कि लड़के को सुन ले। बोले ठीक है। तो सूर्य साहब अंदर गए तो 5 मिनट के बाद हमको बोला जाइए। तो मैं वायलिन लेके हम दोनों बाप बेटा अंदर चले गए। नमस्ते की उनको, हाँ जी आइए बैठी। बैठ गए हम लोग। आप कौन है? तो डैडी ने बोला मेरा नाम सो एंड सो है। ये कौन है? बोलते इज माय फादर। मेरे डैडी बोलते हैं उनको इज माय फादर। तो मदन साहब को अच्छा नहीं लगा। व्हाट डू यू मीन सर? वो कहते हैं ना चाइल्ड इज ए फादर ऑफ ए मैन।
0: ओ
1: यू मीन दैट? यस। हाँ क्या करते हैं? ये वायलिन बजाता है। अच्छा सुना। तो मैंने वायलिन खोली और वही पोल का बजाया जो मुझे टीचर ने सिखाया। तो फेलिक्स
0: की दास्तान आप पहले बता चुके हैं।
1: फेलिक्स हेरिडे सर ने वो पोल का सिखाया था
0: जी।
1: वो पोल का कुछ 9-10 मिनट का है और वो पोल का ऐसा है कि इसमें कंप्लीट वायलिन आ जाती है तो वो सुनते रहे
0: जी,
1: क्योंकि संगीतकार थे उन्होंने सब देखा हुआ था। सुनते रहे 10 मिनट के बाद में जब मैं ऐसे मुझे देखते रहे, मुझे वो उनकी आंखें मुझे आज भी याद है, मुझे देखते रहे। फिर डैडी ने कहा कि गाना सुनाओ। तो मदन साहब का कौन सा गाना है मुझे याद नहीं, बट मैंने मदन साहब का गाना बजाया।
0: गजब।
1: ये पोलका के बाद मैंने उनका गाना बजाया।
0: वाह।
1: और गाना बजाने के बाद हम लोग बाहर आए। यूनुस जी आप सोचो कि वो दिन गया और उनका लास्ट गाना दिल ढूंढता है आई वॉज कंडक्टिंग।
0: क्या बात है। मतलब 1964 में जब आप 16-17 बरस के रहे होंगे तब से लेकर आखिर 75 तक उनका साथ रहा।
1: सबसे पहला नाम उनकी लिस्ट में मेरा होता था
0: जी, क्योंकि दिल ढूंढता है मेरा ख्याल है 1975 में आई थी ये फिल्म।
1: तो
0: मौसम
1: इसी दौरान मैं एक रिकॉर्डिंग बजा रहा था उनकी। तो उस टाइम पे केसी ने भी छोड़ दिया था, मास्टर जी ने भी छोड़ दिया था।
0: मास्टर जी यानी सोनिक जी।
1: सोनिक साहब हाँ। इनका एक अरेंजर आ गए थे ज्ञान वर्मा
0: जी जी जी,
1: जो आज जो हमारा प्रकाश है वर्मा उसके बड़े भाई, जिन्होंने दिल ढूंढता है सब उन्होंने किया था।
0: ज्ञान वर्मा कभी उषा खन्ना के साथ भी हुआ करते थे।
1: उषा खन्ना के साथ वायलिन बजाया करते थे। अरेंजर मुझे याद नहीं
0: जी
1: जी। रवि साहब क्या उन्होंने बहुत काम
0: किया।
1: रवि साहब क्या बहुत काम किया। तो हम सब बजाते थे साथ में। ज्ञान अच्छा वायलिनिस्ट भी था, बजाता भी था। तो सुबह सुबह 9 बजे पहुंचे हम लोग। तो ज्ञान ने सारा इंट्रोडक्शन वगैरह सब पूरा रिहर्सल कराया, हम लोग करा के बैठ गए। तो मदन साहब आए 9:45 के करीब
0: जी।
1: आए तो सब चुप हो गए, शांत हो गए सब। हाँ ज्ञान सुनो। तो ज्ञान ने कुछ सुनाया, म्यूजिक बजाया हम लोगों ने। फिर उन्होंने बोला म्यूजिक वन सुनाया। तो वो बैठ गए। एक्चुअली खड़े हुए थे तो कुर्सी पे बैठ गए और उनका चेहरा मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है,
0: पसंद नहीं आ रहा है
1: कुछ, इनको म्यूजिक पसंद नहीं आया। तो वो गाना था हर तरफ अब यही अफसाने। तो ये गाना था और मैं बजाते चले गया।
0: हिंदुस्तान की कसम फिल्म का गाना।
1: की कसम और मैं ये गाना बजाता चले गया। 70 म्यूजिशियन चुप बैठा हुआ है और एक लड़का वायलिन बजा रहा है।
0: आपको पता था कि मदन जी गुस्से में हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा है,
1: उसके बावजूद भी वो गाना मैं बजाता रहा था।
0: ये किस धुन पे किया था
1: पता नहीं, आई डोंट नो
0: जी।
1: उस टाइम पे क्या हुआ मुझे पता नहीं,
0: क्योंकि मदन जी का गुस्सा बहुत मशहूर था।
1: लेकिन क्या था कि मदन जी का गाना बजा रहा था इसलिए उन्होंने मुझे शायद कुछ नहीं कहा
0: जी,
1: क्योंकि मैं कहीं और चीज नहीं बजा रहा था।
0: हाँ
1: मैं उनका ही गाना दारारी रारी यही बजा रहा था। बजाते बजाते मैंने कुछ बजा दिया
0: अपनी तरफ से
1: बज गया।
0: वाह।
1: मैंने जानबूझकर नहीं बजाया, बज गया। तो वहां से उठे और सीधा मेरे पास आके बोलते व्हाट डिड यू प्ले? मेरे तो पसीने छूट गए। एसी में मुझे पसीना आ गया। सर आई सेड सर नथिंग, व्हाट डिड यू प्ले जस्ट नाउ? एकदम उनका आवाज चेंज हो गई पूरी। मैंने मुझे थोड़ा सा कंट्रोल हुआ अपने में। सर या या आई प्लेड दिस तारारी री री तिरी री तारारी तरर तरी री री द द द त त। ये बजाया मैंने।
0: हाँ वो एक पीस आप वायलिन लाए हैं, हम चाहते हैं कि आप ये सुनाएं हमको।
1: लाया तो हूँ।

0: उत्तम बिल प्लेस ऑल ओवर।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: यहां से ड्यूरजी आई बिकेम ए सोलो वायलिनिस्ट फॉर हिम।
1: क्या बात है। और फिर बहुत गानों में वायलिन,
0: बहुत गानों में सोलो बजाया
1: जी। कुछ गानों का जिक्र हो जाए,
0: मुझे याद नहीं है लेकिन बहुत से गाने हैं
1: जी।
0: हाँ, ये गाना याद है मुझे।
1: जी
2: हर तरफ अब

की। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले रविवार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा छाया गीत। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

साथ ही ऐसा भी था जो ऐसा लगता था मानो जीवन की हर राह अब बस उसी तक जाकर खत्म होती है। लेकिन वक्त का अपना एक अलग हिसाब है, वो कभी एक सा नहीं रहता। लोग मिलते हैं, रास्ते बदलते हैं, दुनिया अपने छुपे हुए रंग दिखाती है, और फिर वही शख्स जो कभी ज्यादा और फिर वही शख्स जो कभी सबसे ज्यादा अपना होता था धीरे धीरे दूर होने लगता है।

सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब कोई छोड़कर चला जाए, बल्कि तब होता है जब कोई साथ रहते हुए भी अजनबी हो जाए। जब यादें तो वही रहें, मगर रिश्ते का एहसास बदल जाए। फिर भी कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जरूर जाते हैं, लेकिन हमारी रूह के किसी कोने में हमेशा बसे रहते हैं।

यादें बनकर हमारे जीवन को महकाते रहते हैं, जैसे समय कभी बीता ही ना हो, वो उन्हीं पलों में कहीं ठहर गया हो। क्योंकि दिल के कुछ मौसम वहीं ठहरे रह जाते हैं। मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यही है कि वो सिर्फ मिलने का नाम नहीं है, वो तो बिछड़ने के बाद भी उतनी ही सच्ची रहती है।

अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत। शायद इसलिए ही कहा जाता है कि सच्ची मोहब्बत का अंत नहीं होता, वो किसी रिश्ते के टूटने से मरती नहीं, बल्कि यादों में एक खूबसूरत कहानी बनकर हमेशा जिंदा रहती है। एक ऐसी कहानी जिसे दिल बार बार पढ़ना चाहता है, भले ही उसका आखिरी पन्ना अधूरा ही क्यों ना हो। कभी कभी कुछ रिश्ते अपनी मंजिल तक पहुंचकर नहीं, बल्कि अधूरी यादों में बसकर अमर हो जाते हैं।

मोहब्बत की किताब के कुछ पन्ने हंसी से भरे होते हैं तो वहीं कुछ आंसुओं से भीगे हुए, और कुछ ऐसे होते हैं जो कभी लिखे ही ना जा सके, मगर दिल को उन अधूरे पन्नों से भी शिकायत नहीं होती। दिल उन अनकहे अल्फाजों को भी सहेज कर रखता है जो कभी जुबान तक नहीं आ सके, उन ख्वाबों को भी संजो कर रखता है जो हकीकत नहीं बन सके। कभी कभी अधूरी कहानियां ही सबसे ज्यादा मुकम्मल लगती हैं।

यादें भी कितनी अजीब होती है ना। वो इंसान भले ही पास ना हो, मगर उसकी हंसी, उसकी बातें और उसके साथ बिताए पल, उसके होने का एहसास दिल से कभी जाने ही नहीं देती। दिल के किसी कोने में एक छोटी सी लौ हमेशा जलती रहती है, जो ये विश्वास दिलाती है कि शायद किसी दिन

अपनी दोस्त आरती श्रीवास्तव को छाया गीत समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी।

कार्यक्रम तराने नए पुराने में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गाने के साथ। इसे गाया है उदित नारायण ने, इसे लिखा जावेद अख्तर ने, धुन बनाई है राजेश रोशन ने। फिल्म का नाम है पापा कहते हैं।

0: अगर आप देखें कि ब्रेन स्ट्रोक ज्यादा कॉमन है या ब्रेन हेमरेज, 100 में से 85% अभी भी ऐसे हैं जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, 15% पेशेंट को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज होता है।
1: कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण?
0: ब्रेन के राइट साइड में ब्लड नहीं पहुंच पा रहे तो पेशेंट का धीरे धीरे बायां हाथ पैर जो है वो काम करना बंद कर देता है।
1: सिर दर्द कब बन जाता है जिंदगी का दर्द? इन तमाम सवालों से जुड़ी जानकारियां देंगे न्यूरो सर्जन डॉक्टर अजीत मिश्र।
0: ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा जो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो गया, तो जहाँ से पैर की नस ब्रेन में शुरू होने वाली है, अगर वो ब्रेन ही आपका श्रिंक होते जा रहे हैं तो उसमें से धीरे धीरे ट्रेमर्स आने लगते हैं।
1: सुनिए सेहतनामा 21 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है तराने नए पुराने। अगला गाना कुमार सानू की आवाज में है, फिल्म का नाम है संघर्ष।

0: 100%
1: ए जासंखा डायलॉग टे एक्टिंग वाह हम तो नंगनता तिनी तो पाइखन हिनी मानो दु माले निखै तामुखा बमासा छपलिया
2: सिदो मिया जाब्रु छोंगना सि फाइमन नबले मु फायोंग चला न दा चुकिलि होइ क्लांखा सिदो नना सि छाइ रहा बला बिन बु फानो बुजौ फाइदि हिनै बोंनो बा बोंनि बिसिङो दा गासि हसु खामजांनाय दंनु ता बिंगो जतम हिन ओ हिनिया कुस्ता हिनिया हियांगो जसालायो ता हिनि नंगम हि

0: शारीरिक चपलता और स्टेमिना के खेल टेक बॉल में हम ऐतिहासिक पदक के करीब पहुंचकर चूक गए। परिणाम के बारे में बता रही हैं कविता।
1: डेब्यू हुए टेक बॉल से पदक की उम्मीदें थी, लेकिन दिन की शुरुआत निराशा के साथ हुई। महिला सिंगल्स के कांस्य पदक मुकाबले में क्विंसी डिसूजा को जापान की विश्व नंबर 7 युएना साकामोटो के खिलाफ 2 सेटों में सीधे हार का सामना करना पड़ा। दोनों गेम बेहद करीबी रहे, लेकिन क्विंसी दोनों सेट 11-12 के अंतर से हार गयी। इसी के साथ टेक बॉल में अगला मुकाबला हुआ मिक्स डबल्स का, जहां एक और कांस्य पदक दांव पर था, लेकिन ये मुकाबला भी भारतीय टीम वियतनाम की जोड़ी से हार गई। मिक्स डबल्स में क्विंसी और मोहम्मद अनस इमराद बेग की जोड़ी वियतनाम से 12-9, 12-6 से हार कर बाहर हो गई। ये अभियान यहां जरूर समाप्त हुआ, लेकिन क्विंसी ने अपने मुकाबले जीतने के लिए पूरी मशक्कत की। क्विंसी लगातार मुकाबलों के बीच दर्द में दिखी, जहां मुकाबला कुछ मिनटों के लिए रोकना पड़ा। खेल के दौरान क्विंसी का दर्द साफ नजर आ रहा था, जिसका नतीजा उनकी परफॉर्मेंस पर भी देखने को मिला, और इस तरह से एशियन गेम्स में टेक बॉल में भारत का अभियान बिना पदक के समाप्त हो गया। पर भले ही ये खिलाड़ी मुकाबला हार गई हो, लेकिन खेलों के एक नए रूप टेक बॉल की पहचान जरूर बन गई।
0: तैराकी में इस बार भारतीय दल बड़ी उम्मीदों के साथ उतरा है। इस दल को न सिर्फ अपने पिछले प्रदर्शन को बेहतर करना है, बल्कि पदक जीत कर भी लाना है। हालांकि पहले दिन तैराकी में भारत की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। पुरुष 100 मीटर बैक स्ट्रोक में ऋषभ दास ने हीट में शुरुआत तो अच्छी की और कमाल का प्रदर्शन करते हुए 54.85 सेकंड का समय निकाला। वे अपनी हीट में तीसरे और ओवरऑल 5वें स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहे। हालांकि पदक की

0: दौड़ में वे चीनी और जापानी खिलाड़ियों की तगड़ी चुनौती के बीच पोडियम तक नहीं पहुंच सके। फाइनल में ऋषभ ने टाइमिंग के लिहाज से अपने प्रदर्शन को और निखारा, फिर भी वे 54.77 सेकंड का समय लेकर 9 खिलाड़ियों के मुकाबले में छठे स्थान पर रहे। इसी स्पर्धा के हीट में उत्कर्ष पाटिल ने 56.19 सेकंड का समय लिया और ओवरऑल 12वें स्थान पर रहे। इस तरह वे फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। पुरुष 100 मीटर फ्री स्टाइल में रोहित बेनेडिक्टन अपनी हीट में 50.25 सेकंड के समय के साथ 5वें स्थान पर रहे। वो ओवरऑल 12वें स्थान पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहे। इसी इवेंट में आकाश मणि ने 50.85 सेकंड का समय निकाला और अपनी हीट में 8वें स्थान पर रहे। इस प्रदर्शन से वे भी फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। अपने खिताब के बचाव के लिए उतरी महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश की टीम के साथ दो दो हाथ किया और जीत के साथ स्वर्ण पदक के और करीब पहुंच गई है। अमीषा की रिपोर्ट।
1: आज जापान के कुरुगी स्पोर्ट्स पार्क में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी जब बांग्लादेश के खिलाफ एशियन गेम्स के सेमीफाइनल मुकाबले में नाबाद शतक लगाकर शिफाली वर्मा ने क्रिकेट के इतिहास में एशियन गेम्स में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव हासिल किया। शिफाली ने मात्र 49 गेंदों में 100 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेली जिसमें 9 छक्के और 3 चौके शामिल थे। भारत ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 195 रनों का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। बल्लेबाजों के बाद अब बारी गेंदबाजों की थी। 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेशी टीम भारतीय गेंदबाजी और बड़े लक्ष्य के प्रेशर के आगे टिक नहीं पाई और महज 81 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से शानदार गेंदबाजी करते हुए दीप्ति शर्मा और नंदिनी शर्मा ने 3-3 विकेट चटकाए और भारत ने 114 रनों के विशाल अंतर से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ अब भारत अपना सिल्वर मेडल तो पक्का कर चुका है, पर अब उनका लक्ष्य अपना गोल्ड मेडल बचाने पर होगा।
0: वुशु में भारत के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही, बता रही है कविता।
2: भारतीय वुशु खिलाड़ियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहा। भारत के सूरज सिंह, मयांग लाम्बम, अपर्णा धैया और विक्रांत बालियान अपने अपने मुकाबलों में पदक की दौड़ से बाहर हो गए। दिन की शुरुआत पुरुषों के चांगक्वान फाइनल से हुई जहां भारत के सूरज सिंह, मयांग लाम्बम ने 21 खिलाड़ियों के बीच 9.683 अंक के साथ 11वां स्थान हासिल किया। सूरज ने क्वालिटी ऑफ मूवमेंट में 5.000 और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी में 2.000 अंक हासिल किए जबकि उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कोर 2.683 रहा। इसके बाद महिलाओं की 52 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में भारत की अपर्णा धैया का मुकाबला ईरान की सोगंध सिंकाई चेतान से हुआ। राउंड ऑफ 16 में अपर्णा को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। दोनों राउंड में उन्हें 5-0 के स्कोर से हार मिली और इसके साथ ही उनका एशियन गेम्स अभियान समाप्त हो गया। वहीं पुरुषों की 75 किलोग्राम सांडा में भारत के विक्रांत बालियान का सामना ईरान के सोहेल मौसवी से हुआ। विक्रांत को भी राउंड ऑफ 16 में 0-2 से हार मिली और वो प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इस तरह 20 सितंबर को भारतीय वुशु के तीनों मुकाबलों में भारत को जीत नहीं मिल पाई।
0: और अब बात कल के मुकाबलों की। सेपक टेकरा में भारतीय पुरुष रेगु टीम की भिड़ंत ग्रुप बी में जापान से होगी। सॉफ्ट टेनिस में मिक्स डबल्स में जय मीणा और आद्या तिवारी का सामना ग्रुप बी में कंबोडिया से होगा। फिर ये भारतीय जोड़ी मंगोलिया के साथ खेलेगी, इन्हें दक्षिण कोरिया से भी मैच खेलना है। वुशु में न्यमान वाक्सू महिला चेंगक्वान में चुनौती रखेंगी। पुरुषों के 56 किलोग्राम वर्ग में आर्यन राउंड ऑफ 16 में अफगानिस्तान के प्रतिद्वंदी का सामना करेंगे। शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल मेंस कैटेगरी के व्यक्तिगत मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन, पार्थ मान्य और रुद्रांश पाटिल निशाना साधेंगे। पुरुषों के स्कीट इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन टीम फाइनल के पहले दिन अनंतजीत सिंह नारूका, भवतेक सिंह गिल और महराज अहमद खान की चुनौती होगी। इसी इवेंट के महिला वर्ग में महेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल के साथ साथ रायजा ढिल्लन निशाने साधेंगी। महिला टेबल टेनिस में भारत का सामना ग्रुप एफ में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। तैराकी में पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक के हीट दो में ऋषभ दास और श्रीहरि नटराज स्विमिंग पूल में होंगे। पुरुष फ्री स्टाइल के हीट टू में आकाश मणि उतरेंगे। हीट फोर में गीतेश हीरशाह भारत की चुनौती रखेंगे। पुरुषों की ब्रेस्ट स्ट्रोक में हीट वन में दानुष सुरेश उतरेंगे। पुरुषों की 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले के हीट टू में वेदांत माधवन, दक्षिण शशि कुमार, अनीश गौड़ा और साजन प्रकाश की चौकड़ी होगी। एमएमए के महिला ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में सूचिका तरियाल ईरानी प्रतिद्वंदी से मुकाबला करेंगी। हॉकी में भारतीय महिला टीम का सामना इंडोनेशिया से

0: कबड्डी में पुरुष टीम का ग्रुप ए में जापान से मुकाबला होगा। महिला टीम ग्रुप ए में बांग्लादेश के साथ दो दो हाथ करेगी। वुशु में रोशिबीना देवी महिलाओं के 60 किलो वर्ग के राउंड ऑफ 16 में बांग्लादेश की खिलाड़ी का सामना करेंगी। बॉक्सिंग में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में पहले मैच में सुमित थाईलैंड के सिंसिरी का सामना करेंगे। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष टीम की टक्कर पाकिस्तान से होगी।
1: तो अब बात करते हैं मेडल्स टैली की। चाइना 11 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रोंज के साथ कुल 20 मेडल्स जीतकर टॉप पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पर जापान है, जिसके पास भी कुल 20 मेडल्स हैं, लेकिन 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 7 ब्रोंज के साथ वे चाइना से पीछे है। तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है, जिन्होंने 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रोंज के साथ कुल 14 मेडल्स अपने नाम किए हैं। वहीं अगर भारत के प्रदर्शन पर नजर डालें तो भारत फिलहाल 10वीं पोजीशन पर बना हुआ है, जहां भारत के खाते में अभी तक कुल 2 सिल्वर मेडल्स आए हैं और देश को अभी अपने पहले गोल्ड का इंतजार है।
0: तो भारतीय खिलाड़ियों की जीत की ये शुरुआत तो बस एक झांकी है, पूरी कहानी तो अभी बाकी है। हमारे पदक वीरों को आपकी दुआओं और चीयर्स की जरूरत है। अब जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ। कल सुबह 9:30 बजे हर घंटे हम आईची नागोया एशियन गेम्स की हर अपडेट के साथ हाजिर होंगे। फिर रात 10 बजे दिन भर की रिपोर्ट लेकर उपस्थित होंगे। अभी प्रोग्राम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश और अमिषा पटेल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।